0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 और 13 सेकेंड्स हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी रेनबो पर आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 6:03 पर आपके लिए लेकर आएंगे सुप्रभात गौतम गौर। 7 बजे का समय रहेगा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR का, जिसमें आपके साथ रहेंगे रविन्द्र सिंह और गौतम गौर, देंगे आपको जानकारी दिल्ली और NCR के बारे में। 9 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने रविन्द्र सिंह के साथ। पाश्चात्य संगीत के शौकीन अगर आप हैं तो आपके लिए समय रहेगा सुबह 10 बजे और फिर दोपहर में 12 बजे साथ रहेंगी विदुषी वत्स, लेकर आएंगी मैचलेस म्यूजिक आर्ट 10 बजे और प्ले इट कूल 12 बजे। 1 बजे का वक्त है मेरा वाला सॉन्ग का, जिसमें आपका साथ देंगी बबीता रावत।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

समय हो गया है आज के मुख्य समाचार का। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा में डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक भी पारित हुआ। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सार्डोन से मुलाकात की और भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने नई दिल्ली में अफ्रीका दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अफ्रीका के विकास में उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार सहयोग कर रहा है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई का आग्रह किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में आज कोयंबटूर में खेले जा रहे सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से होगा, वहीं झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

0: है प्रायोजक प्रोग्राम।
1: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय SR मीडिया Academy।
2: जी हाँ, अपने वादे के अनुसार फिर हाजिर है आपका दोस्त SR यानी संतोष राव आकाशवाणी FM रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम सत्य वचन। करिए स्वीकार हमारी नमस्ते सलाम और प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, अक्सर हमें अपनी जिंदगी से ढेर सारी शिकायतें रहती हैं। कभी ये न मिलने का मलाल, तो कभी मन मुताबिक न होने का शिकवा गिला। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि जब जब तुम्हारा मन व्याकुल हो या फिर किसी बात के लिए परेशान हो, तब तुम पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में तुमको तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, हर मुश्किलों का समाधान भी मिलेगा।

दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर तूफानों का रुख मोड़ने वाला और समुद्र के बीच से रास्ता बनाने वाला ऐसा सामर्थी परमेश्वर है जिसके सम्मुख कुछ भी असंभव नहीं। बस हमें दिल से उसको पुकारना है और उस पर भरोसा रखना है, तभी हम उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते देख पाएंगे।

0: जानते हैं।
1: जी हाँ, यही सत्य वचन है कि जब इंसान की सारी युक्तियां विफल हो जाती हैं और उसको कोई रास्ता नहीं सूझता, तब ईश्वर ही उसको संभालता है, उसको सही राह दिखलाता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु पर भरोसा रखने वालों के लिए अनहोनी बात भी होनी में बदल जाती है, बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान लगने लगती है।

जी हाँ, यही सच्चाई है कि हमारे आंसुओं को पोंछकर हमें शांति देने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। इसीलिए ना तो डरने की जरूरत है और ना ही घबराने की। इसी विश्वास के साथ कि आप सब प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे, हम लेते हैं आपसे विदा। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। मैसेज या फोन करने के लिए हमारा नंबर है 9693644224।

402। जी हाँ, 9693644242। और हमारा दूसरा नंबर है 7678438471। जी हाँ, 7678438471। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल यानी शुक्रवार सुबह 6:05 पर हम फिर हाजिर होंगे एक नए सत्य वचन के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी। और कहीं ना कहीं पढ़ा था मैंने कि हानि हुई है तो लाभ भी होगा और छल हुआ है तो हिसाब भी होगा। वल हिसाब छोड़िए और लाइफ में प्यार जो है वो बेहिसाब होना चाहिए, प्यार बांटते चलो। एंड बनी ने कहा था ना, कहीं तक पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है और समय पर निकल लेना चाहिए, नहीं तो गिले शिकवे होने लगते हैं। वेल, समय पर अपने घर से निकला हूं और स्टूडियो की तरफ आ चुका हूं। और कहते हैं कि भगवान के भेजे हुए इंसान ना तोहफों की तरह आते हैं, उनको तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद मिल जाएंगे। और जनाब, जहां जहां जाओगे वहीं हमें पाओगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम, आपकी खिदमत में हाजिर है सुप्रभात लेकर। और याद है शुरुआती दौर में मैंने आपसे कहा था कि हिसाब छोड़िए, लाइफ में प्यार बेहिसाब होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं, ये हर रोज होता है ना हमें भी, दिल से दिल तक। 102.6 FM।

जनाब जहां जहां जाओगे वही हमें पाओगे, और अक्सर कहा जाता है कि बहुत सी लहरें टकराएंगी तुमसे, लेकिन बहना उसी के साथ जिसमें दूर तक जाने का जुनून हो। जीत के लिए बस जुनून चाहिए, और जिसमें आग हो ऐसा खून चाहिए, आसमां भी आएगा जमीन पर, इरादों में जीत की गूंज चाहिए, और ये शंखनाद लेकर तो मैं आ ही चुका हूं। लाइफ में चलता रहेगा रोना धोना, लेकिन आपकी ये जो स्माइल है ना, ये है सबसे प्यारा गहना, तो इसे थोड़ा सा मेंटेन करके चलिएगा। और कहानी मैं आपको सुनाऊंगा मोटिवेशनल वाली, लेकिन एक बार ये कहानी तो सुन लीजिए। सुप्रभात, जाग जाइए,

बिल्कुल उस दीवाने लड़के को और उस दीवानी लड़की को अब जागना पड़ेगा, बिकॉज इससे पहले कि ऑफिस से बॉस का कॉल आ जाए और कोई झोल हो जाए, तो कोशिश यही करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा जागो मोहन प्यारे। पल कहते हैं कि अपनी लाइफ में ना आप जीरो से हीरो तक का सफर तय करते हैं, और कई बार ये सफर जो है ना, ये अंग्रेजी वाला सफर भी बन जाता है, यानी कि ये सफरिंग से बफरिंग तक, माफ कीजिएगा, बफरिंग ये जो होती है ना आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं और आपको लगता है कि अब लाइफ में आगे क्या होगा। तो जनाब रुकिए, सब्र करो, ऊपर वाला ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे बेहतरीन किरदार जो है ना वो एक अच्छे आर्टिस्ट को ही देता है, कि मुझे तुम कलाकार रहने दो, मेरे ख्वाबों को साकार रहने दो, जिम्मेदारियों का बोझ फिर कभी सही मेरी रूह को बेकरार रहने दो, मैं रोटियों से पहले तालियों के सपने देखता हूं, मुझे बस मंच का हकदार रहने दो, मैं हिसाब नहीं रख पाता बस जज्बात संभाल लेता हूं, मुझे बस मेरा किरदार रहने दो, मुझे बस कलाकार रहने दो। सुप्रभात 102.6 FM, आरजे गौतम के साथ।

0: वेल, मुझे पता है कि आप भी अपने घर पर ले रहे होंगे अंगड़ाई, है ना? बिकॉज फ्रेंड जोन से लेके कंफर्ट जोन तक यही तो सारा सफर है, और कहीं ना कहीं ये सफरिंग इसी का ही हिस्सा।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।

0: आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

वेल नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हो भाई सारे। दिखा दें आपको तारे। वेल तारे का क्या करें हम, जब आप जैसे सितारे हमारे पास हो और ऐसा मौसम हो ना, ऑसम हो। तो मैं बात कर रहा था फ्रेंड जोन से लेके कंफर्ट जोन तक की, लेकिन उस कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं त्यागना पड़ता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत जरूरी है। सुप्रभात 102.6 FM।

लाइफ में आप भी कभी ना कभी बेकाबू हो ही जाते होंगे ना। माना दिल दा ही सारा है कसूर और कोई इतना भी ना हो मजबूर। लेकिन एक बात कहूंगा आपसे कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर ले। अक्सर हमें ना दूसरे की थाली में लड्डू बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जनाब नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सबर और नजर, इन दोनों की धार काफी पैनी रखनी चाहिए। ये कहानी है कि अपना अपना नजरिया है जिंदगी को देखने का। शायद आपके पास जो है वो किसी और के लिए ड्रीम हो, या आपके जो सपने हैं वो किसी के लिए सच्चाई हो। कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो एक शिक्षक ने छात्रों से पूछा कि ये ग्लास देखो, ये ग्लास कैसा है। किसी ने कहा आधा भरा है, दूसरे ने कहा सर आधा खाली है। शिक्षक बोले गिलास वही है, फर्क केवल सोच का है। परिस्थितियां नहीं, उन्हें देखने का नजरिया जीवन बदलता है। मुश्किल हालातों में भी देखो कितना डटकर खड़ा हूं, ऐ मुसीबतों में तुमसे कितना बड़ा। वाह, कई बार मैं भी काफी अच्छी बात हूं।

well, लाइफ में ना बदला नहीं बदलाव लाना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं पता है किस लिए कह रहा हूं, बिकॉज वो बदलाव आपको थोड़ा टफ जरूर लगेगा कि मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं कामयाब हुआ या नहीं हुआ तो, अगर मिल गया तो, अगर ना मिला तो, मिल गया तो सोना और ना मिला तो फिर आपको बताइए। लेकिन चेंज लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति ने देखा कि तितली को कोकून से बाहर निकालने में खुद को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। उसने दया करके कोकून को थोड़ा काट दिया। तितली तो बाहर आ गई, लेकिन उसके पंख कभी मजबूत नहीं हुए और वो उड़ ना सकी। वास्तव में अगर आप खुद पर खर्च करेंगे तभी तो लोग आपको सर्च करेंगे। वास्तव में वही संघर्ष उसके पंखों में शक्ति भरने के लिए आवश्यक था। हर संघर्ष हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आता है, और यह बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ गॉड इज शेकिंग योर नेस्ट तो इसका मतलब है कि वो तैयार कर रहे हैं आपको एक बड़ी उड़ान के लिए। और देखना है उसकी उड़ान को तो जाओ और ऊंचा कर दो आसमान को।

और एक ही दिल है, कितनी बार इसको जीतेंगे, वो आ चुके हैं, दस्तक दे चुके हैं स्टूडियो में, ट्रिंग ट्रिंग आ चुके हैं रविंद्र सिंह, और मुझे जाना पड़ेगा। तो मुझे बता, आप कह रहे हो तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, लेकिन मैं जाऊंगा तभी तो वो आएंगे।

बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कही जाती हैं और सुनी जाती हैं। इस आवाज़ को आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में, क्योंकि अभी जो शख्स अभी अभी यहाँ से गया है वो बहुत कुछ बता कर गया है, बहुत कुछ सुना कर गया है, और इसी सुनने और सुनाने की कहानी में चलता है जीवन। तो कोई बात नहीं, जीवन तो चलेगा, लेकिन उससे पहले हो जाए सुर्खियाँ।

0: अब आप सुनेंगे मुख्य समाचार। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सैरंडोस से मुलाकात की। भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। हड़ताली डॉक्टर होम्योपैथ को 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। रेलवे ने आदर्श रियासत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह यह समझौता हो सकता है। भारत ने श्रीलंका से भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई का आग्रह किया है। भारत ने पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के कब्जे वाले क्षेत्र में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। अंत में जूनियर पुरुष हॉकी, राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार जी, स्वागत है आपका। कार्यक्रम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी श्रोताओं को जो इस वक्त उठ चुके हैं और प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्योंकि उनका सुप्रभात तो पहले ही हो चुका है। और ऐसे में हमने आपकी मॉर्निंग को और गुड गुड बनाने के लिए यहां पर कुछ जानकारियां जुटाई हैं। कुछ इतिहास के पन्नों से हैं तो कुछ मौसम का हाल है और कुछ बातें बेमिसाल हैं। सब कुछ तो है जिंदगी में, बस हमें क्या करना पड़ता है, हमें ढूंढना पड़ता है वो कोना जहां बैठकर उन यादों को हम याद कर सकें, उन यादों में जा सकें जहां पर हमारा दिल लगता है। और बस इसीलिए हम भी बातें करते हैं दिल से दिल तक। तो आप करना क्या है, बस जुड़े रहना है हमारे साथ 102.6 FM रेनबो पर, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे आपसे दिल से करेंगे और कायदे से करेंगे। और ये कायदा अगर आपको पसंद आए तो फिर नमस्कार कर दीजिएगा दिल से, है ना।

तो बातें तो जो भी होती हैं भाई साहब कायदे से होती हैं, और ये कायदे से बात करते करते कब आपसे दिल लग जाता है ये तो हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जिंदगी का सफर भी नहीं रुकने वाला और हम भी नहीं रुकने वाले, क्योंकि हमारे पास है बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी बातें इतिहास के पन्नों से, बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया है, उनकी भी बातें, उनकी कहानियां, उनके किस्से है ना। लेकिन उससे पहले बता देते भाई साहब क्या कह रहा है मौसम ये, राइट? मौसम तो बस बदलता रहता है, मिजाज अपने बदलता है, लेकिन हम नहीं बदलते। हम तो सिर्फ गीत बदलते हैं, जो गीत आपके दिलों की धड़कन में उतरते हैं। फिलहाल मौसम कहता है कि आज का जो अधिकतम तापमान है वो 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि बदलते मौसम के साथ खुद को भी बदल लेना है, क्योंकि ये मौसम सेहत बिगाड़ सकता है और आपकी सेहत बिगड़ी तो चेहरे की स्माइल भी थोड़ा सा डल हो जाएगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि आपके चेहरे की मुस्कुराहट या आपके चेहरे का रंग उतरे, क्योंकि हम सतरंगी और हम चाहते हैं कि आपके चेहरे पर जिंदगी के खूबसूरत रंग हमेशा बने रहें। तो मौसम का मिजाज बदले लेकिन आपका चेहरे का रंग ना बदले, बदले भी तो खुशनुमा हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, शीशे के सामने खड़े होकर आप देखें तो जिंदगी की और ईश्वर की सबसे खूबसूरत कृति आपके सामने नजर आए। जानते हैं कौन है? वो है आप। तो बदलते मौसम के साथ हवा भी बदलती है, बदलने दीजिए हवा, गीत भी हम बदलेंगे, तो कुछ ना कुछ तो मजा आना ही है ना। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

अरे आप ये मत सोचिए कि हम गीत बजाने जा रहे हैं, हम तो बस इतिहास के पन्नों से कुछ आपको याद कराने जा रहे हैं, और बस इसीलिए हमने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है कि भाई पीछे कुछ बचता रहे और एक खाली पन सा ना लगे, क्योंकि जब गीत संगीत का कार्यक्रम होता है तो थोड़ा सा जब हम इतिहास की बात करें तो इतिहास के पन्ने में बहुत सारी ऐसी बातें दर्ज होती हैं जिनके बारे में जानना हमें ज़रूरी हो जाता है। उन बातों से या तो हम सबक लिखते हैं लेते हैं, या फिर हमें ज्ञान मिलता है, या फिर हमें मिलती है प्रेरणा। तो चलिए जान लेते हैं कि इतिहास के पन्नों में आज की तारीख में वो कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो घटी थीं और दर्ज हैं आज भी इतिहास के पन्नों में। तो जब सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक इतिहास की बड़ी घटनाओं की, और 6 अगस्त को जो घटना हुई थी 1806 में, वो पवित्र रोमन साम्राज्य के अंत की थी। यहाँ पर ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस द्वितीय ने नेपोलियन से हारने के बाद पवित्र रोमन साम्राज्य को भंग कर दिया था। 6 अगस्त 1825 में बोलीविया की आज़ादी हुई थी, जहाँ पर पेरू से अपनी स्वतंत्रता की बोलीविया ने घोषणा की थी। और 6 अगस्त 1926 की बात करें तो अमेरिकी तैराक गर्टूर एडरले इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई थी। और 6 अगस्त 1945 की बात करें तो ये एक बड़ा दुखद दिन था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के B-29 बमवर्षक विमान इनोला गे ने जापान के औद्योगिक शहर पर एक ऐसा बम गिराया था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। 6 अगस्त 1962 में कैरेबियाई द्वीप देश जमैका ने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता हासिल की थी। 6 अगस्त 1965 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने वोटिंग राइट्स एक्ट पर हस्ताक्षर किए जिसने मतदान में होने वाले नस्लीय भेदभाव को अवैध बना दिया। और 6 अगस्त 2012 को नासा का क्यूरियोसिटी रोवर मंगल ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा था। और चलिए भारतीय इतिहास के पन्नों पर भी नजर डाल लेते हैं। 6 अगस्त 1862 में मद्रास उच्च न्यायालय, अब जो कि चेन्नई में है, इसकी स्थापना की गई थी। 6 अगस्त 1906 में स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास और बागी कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर राष्ट्रीय अखबार वंदे मातरम का प्रकाशन शुरू किया था। 6 अगस्त 1986 भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी हर्षा चावड़ा का जन्म मुंबई के KAM अस्पताल में हुआ था। 6 अगस्त 1986 तो उम्मीद है कि इतिहास के पन्नों से जो ये बातें हैं ये आपको समझ में आई होगी, और इसलिए कहते हैं कि इतिहास जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और जब हम इतिहास जानते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी पता लगती हैं जिसमें हम टाइम मशीन के जरिए नहीं जा सकते, लेकिन पुस्तकों में।

सब कुछ है। और जब उन पुस्तकों के शब्दों को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम उसी काल में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए कम से कम सुनिए तो। अब गीत भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें कहते हैं कि अगर आप नहीं सुन रहे तो हम बार बार आपको प्रेशराइज करते हैं, भाई साहब सुन लो, क्योंकि हो सकता है कि काम की बातें हो सकता है कुछ बातें ऐसी हों जिससे आपकी बात बन जाए, सुनना तो आपको पड़ेगा, है ना। तो पहले ये गीत सुनिए और इस सफर को और खूबसूरत बनाते हैं, एक पड़ाव और आगे जाते हैं और जो बताते हैं कि और क्या क्या दिन में है खास हमारे साथ, है ना। सुनिए प्यारे इस गीत को अभिजीत की आवाज़ में।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और किसी न किसी का तो साथ चाहिए, देश की मिट्टी का साथ हो, देश के अपनों का साथ हो। और ये तभी पता लगता है देश की अहमियत, जब हम किसी दूसरे देश में होते हो और वहाँ पर हमारे देश का कोई मिल जाए, वो चाहे किसी भी इलाके में क्यों ना रहता हो। इसी तरह इतिहास के पन्नों को भी जब हम पलटते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ ऐसे किस्से भी होते हैं जो हमारे देश के उन लोगों के होते हैं जिन्होंने देश की मिट्टी के लिए बहुत कुछ किया होता है। हम ऐसे एक शख्सियत की बात करने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि कभी कभी इतिहास में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि जागती हुई सोच बना देते हैं। एक नाम है उनमें से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी का, वो भी उन्हीं महान लोगों में से एक थे। 10 नवंबर 1848 को कलकत्ता में जन्मे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने जीवन की शुरुआत भारतीय सिविल सर्विस से की। एक भारतीय

होने के नाते उन्हें भेदभाव और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन जिंदगी में कभी भी वो पीछे नहीं हटे। शिक्षक बनकर युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाई। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां लोग जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर एक साथ खड़े हों। देश भर में घूम घूम कर उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया।

6 अगस्त 1925 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस दुनिया से चले गए। शायद उस समय उनका सपना पूरी तरह से साकार नहीं हुआ था, लेकिन जिस भारतीय राष्ट्रीय चेतना की नींव उन्होंने मजबूत की, उसी ने आगे चलकर भारत को आजादी दिलाई, भारत के आंदोलनों को ताकत दी, युवा शक्ति को दिशा दी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी हमें याद दिलाते हैं कि बदलाव सिर्फ ताकत और तलवार से नहीं आता, बदलाव तो विचारों, एकता और हिम्मत से आता है। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको शत शत नमन करते हैं और उनके बताए जो आदर्श हैं, उनकी बातें हैं, युवा शक्ति को अपनानी चाहिए। एक गीत आज भी ऐसा है जो किसी भी समय चुना जाए, किसी भी दशक में इसको सुना जाए, वो हमारे अंदर एक जज्बा जगाते हैं, हमें यह एहसास कराती है कि आजादी हमें यूं ही नहीं मिल गई। अपनी मां के लिए, भारत मां के लिए हमने कितने बलिदान दिए हैं, कितने लोगों ने अपनी अपनी आहुति दी है। आओ याद करते हैं उनको इस गीत के जरिए।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक जी। और जिंदगी के पड़ाव में बहुत सारी चीजें होती हैं और कार्यक्रम तो आपको पता ही है, उम्मीद करते हैं कि बेहतर लग रहा होगा। हमारी कोशिश ये है कि इतिहास के पन्नों के साथ साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज बहुत सारी ऐसी बातें हमने आपको बताई हैं, ऐसे शख्सियत के बारे में हमने आपको बताया जो हमें प्रेरणा देती है। लेकिन क्या आपको पता है, जिन शख्सियत की हम बात करते हैं, चाहे वो हमारे सीमा पर भाई हों या फिर कोई ऐसी शख्सियत जिसने देश का नाम किया हो, ये शख्सियत यूं ही शख्सियत नहीं बन जाते, क्योंकि इसमें कुछ खास मौजूद होता है जो इन्हें एक शख्सियत बना देते हैं। जानते हैं क्या वो है? माँ का स्पर्श। जी हाँ, बताते हैं, क्योंकि आज खास दिन है। ये पूरा सप्ताह खास तौर पर मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह के तौर पर। तो बात कुछ कर लेते हैं इसके भी। कहते हैं कि माँ का स्पर्श, एक बच्चे की मुस्कान और एक माँ के दूध की वो पहली बूंद जिसमें छिपा है बच्चे के स्वस्थ जीवन का आधार। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, ताकि माताओं और परिवारों को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। नवजात शिशु के लिए मां का दूध सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि प्रकृति का दिया हुआ सुरक्षा कवच है। इसमें मौजूद पोषक तत्व और प्रतिरोधक तत्व बच्चे को संक्रमण और कुपोषण जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। जन्म के बाद मिलने वाला पहला गाढ़ा पीला दूध यानी कोलोस्ट्रम बहुत खास होता है बच्चे के लिए। ये बच्चे को जरूरी पोषण देने के साथ ही उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करता है। विश्व स्तनपान सप्ताह, ये जो पूरा वीक है ना, इसका संदेश बिल्कुल साफ है। जन्म से 6 महीने तक शिशु को केवल मां का दूध दिया जाए। गर्मी या प्यास के समय भी अलग से पानी देने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, मां का दूध केवल बच्चे के लिए नहीं, बल्कि एक स्वस्थ भविष्य की नींव है। और जानते हैं, यही तो स्वस्थ बच्चा एक स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ देश के भविष्य बनता है। तो आइए, विश्व स्तनपान सप्ताह पर हर मां को सही जानकारी और हर नवजात को मां के दूध का अधिकार दिलाने के लिए जागरूकता फैलाएं। मां का दूध शिशु के स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है, ध्यान रखना है। इसीलिए मां से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। लम्हा कोई हो, मौका कोई हो,

किसको याद नहीं आती है वो माँ जिसने जीवन दिया, जिसने पहली बूंद दूध की मुंह में डाली, तब जाकर आज हम एक वृक्ष के रूप में तैयार हुए। लेकिन जानते हैं कभी कभी कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें याद करके दिल मुस्करा देता है, और कुछ यादें ऐसी होती हैं जो दिल को दहला देती हैं। 6 अगस्त का दिन, जहां हम इस स्तनपान दिवस की बात करें, उस मां की बात कर रहे हैं जो जन्म देती है, जो एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करती है। तो आज के दिन को हम, आज की इस तारीख को, 6 अगस्त को हम याद करते हैं एक ऐसे दिन के रूप में जो हमें, हमारे दिल को दहला देता है, हमारा रोम रोम से हर उठता है। ये इतिहास का वो दिन था जिसे दुनिया भी कभी नहीं भूल सकती। एक ऐसी दर्दनाक घटना थी जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को ले लिया था। 6 अगस्त 1945, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा शहर पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। जानते हैं, हजारों लोग पल भर में चले गए, लाखों जिंदगियों पर इसका असर पड़ा। और 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिरा। ये दो घटनाएं ऐसी हुई जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि युद्ध की कीमत आखिर इंसानियत को कितनी भारी चुकानी पड़ती है। इसीलिए हर साल 6 अगस्त को इसे मनाया जाता है, जो दुनिया को यह संदेश देता है कि शांति, मानवता और आपसी सहयोग ही दुनिया को सुरक्षित बना सकते हैं, परमाणु ताकत नहीं। इंसानियत की ताकत ही आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करती है। श्रोताओं, आज हिरोशिमा दिवस पर उन सभी निर्दोष लोगों को याद करते हैं जिन्होंने युद्ध की भयावहता को झेला है और एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि यह जीवन बहुत कीमती है। इस गीत के साथ आपको छोड़कर जाते हैं। याद कीजिए, समझिए कि हम सब एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं। आओ हाथ में हाथ डालें, एक साथ चलते हैं और दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाएं।

समय हो गया आज के मुख्य समाचार का। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरंडो से मुलाकात की और भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की संभावनाओं पर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चल रही पहलुओं पर समीक्षा दी गई। रेलवे ने आदर्श रियायत करार ने सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। हड़ताली डॉक्टर होम्योपैथ को 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। ईरान ने कहा कि हॉर्मोज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ समझौता अब अंतिम रूप समझौते को दिया जाएगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए जाने की आज बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार समाप्त हुए।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेल नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसा है सबका हालचाल? हालचाल एकदम बढ़िया होगा, बिकॉज शाखाओं से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधियों से कहना जरा अदब से पेश आए। लेकिन जब ऐसी थोड़ी थोड़ी बारिश दिल्ली में और आंधी आ जाती है ना, तो फिर काफी सारे लोगों की चांदी हो जाती है, पता कैसे? बिकॉज काफी सारे लोगों को मौका मिल जाता है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आपका होस्ट, आपका दोस्त हाजिर है। लेकिन ब्रेकफास्ट कर लिया है? नहीं, वेल नहीं किया है तो आई एम श्योर आपकी चॉइस क्या रहेगी ये हमें भी पता है।

याद करेगा ये जमाना हमारा ये तराना। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, नमस्कार आदाब। आई एम श्योर कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेल, इसीलिए कहा जाता है, अक्सर मैं ऐसा कहता हूं कि अब किसी का भी डर नहीं, तेरे जी में आया तो कर वही, जीना तेरे बिना जचे मुझे ऐसे जैसे बिना चीज के बर्गर नहीं। यानी यू एंड मी मिलके बने हम, आजू बाजू रहेगा ना कोई भी गम, है ये साथ आपका हमारे लिए। जैसा डिस्काउंट जितना मिले उतना कम है। वेल, डिस्काउंट का ये जमाना है, लेकिन ये जो प्यार है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा बहुत पुराना है और आपने दोबारा से कमाना है हर रोज। बिकॉज कहीं ना कहीं हर रोज आप उठते हैं और ये सोचते हैं कि आज क्या नया होगा। वेल, उस नएपन को तेरे प्यार लाने के लिए लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है।

प्यार में आप भीगे या ना भीगे, लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं तो आप भीग सकते हैं जी। प्यार में काफी सारे लोग नहीं भीग पाते बिकॉज ये लाइफ में वन साइडेड अफेयर हो जाता है। लेकिन एक चीज तय है, वो है कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जब ऐसे समय पे आपको गुड मॉर्निंग बोलना हो ना, आप बाहर जाकर देखें, ताका झाके थोड़ी सी करें और बारिश हो रही है। अच्छा, बॉस को जो है मैसेज कर देता हूँ, सर आज मैं थोड़ा सा लेट आऊँगा। बोल मैं आपको बता दूँ, दिल्ली में सावन के महीने के चलते मौसम सुहावना हो गया है, सावन का महीना। और शोर तो आप कर ही रहे होंगे घर पे बैठे बैठे ना, कहीं ना कहीं के बना दीजिए एक चाय पकौड़े हो जाए। और कई इलाकों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में बादल छाए रहने और हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है। अब ऐसे में दिल आप ही बताएं कि आपका दिल क्या चाहता है, क्या करें, ऑफिस जाए या ना जाए, या फिर घर पे ही कुछ ऑर्डर करके मंगाएं। दिल तू ही बता।

कितनी भी पुकार करो, कितनी भी मेल कर दो आप ऑफिस में, लेकिन फिर भी आ जाएगा वी विल गेट बैक टू यू, के कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ, मुश्किल में मंजिल लिख दूंगा। लेकिन लेकिन लेकिन क्या दूर है मंजिल और फार है किनारा? मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, और हौसला हो तो फिर ये फासला क्या है? लेकिन फासला आज थोड़ा सा बढ़ सकता है ट्रैफिक की वजह से ना, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां से यही कॉल आएगा, वल्ला हबीबी मिलो कभी। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। 102.6 एफएम दिल से दिल तक सुन रहे हैं आरजे गौतम के साथ, बताऊंगा ट्रैफिक का हाल भी, बस आपके दिल का ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: आए हाय,
4: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
6: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
7: अल्फा जेन,
6: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो, लेकिन अगर ट्रैफिक में फंसे हैं तो थोड़ा सा इंतजार करो। और अगर आप जा रहे हैं जी हाँ ऑफिस के लिए गुरुग्राम की तरफ, अगर आप प्रवेश करने के लिए तैयार हैं तो महिपालपुर पे आपको थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है। और कह सकते हैं आप भी अपने बॉस से HR से कि तुम तक आने में थोड़ा सा समय लगेगा, चला हूं तुम तक लेकिन ट्रैफिक है थोड़ा। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

ऐसे मौसम में ना ब्रेकफास्ट में डोसे में हो रवा और चलती रहे ठंडी ठंडी हवा। वैसे मैं आपको बता दूं, दिल्ली के लिए अच्छी खबर ये है कि मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली व आसपास के इलाकों में अभी मानसून की मेहरबानी बनी रहेगी, इसके चलते हल्के से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। बादल बरसो बिजोली, और दिल्ली के कई इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है। वहीं मौसम के कारकों के

चलते दिल्ली की हवा लगातार साफ सुथरी बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं, वेडनेसडे को दिल्ली का AQI 69 के अंक दर्ज किया गया। इसे संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है और अगले 2 दिन हवा के साफ सुथरा बने रहने का अनुमान है। तो बस यही है, एंजॉय कीजिए ऐसे मौसम को भी। ये मौसम का जादू है मित्रा।

जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो बदला नहीं बदलाव की ख्वाहिश रखते हैं। बदलाव बहुत जरूरी है एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा बदलाव भी होने जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे DME पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए 15 अगस्त से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देश में पहली बार किसी एक्सप्रेसवे पर वेरिएबल स्पीड लिमिट की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत दिन के अलग अलग समय में ट्रैफिक के दबाव के अनुसार वाहनों की अधिकतम गति सीमा बदलती रहेगी, लेकिन आप मत बदलिएगा। ये दिल का रास्ता जो है ना, दिल से दिल तक जाता है। 102.6 FM। गुड मॉर्निंग।

पहले घुंघरू टूटते हैं टूटने दो, और अगर आज के दिन ऑफिस वाले रूठते हैं तो रूठने दो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको पता है मौसम ही इतना हसीन है तो फिर क्या ही कहें, है ना। वेल, मौसम विभाग ने आज से दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। IMD ने दिल्ली में 7, 10 और 11 अगस्त को अधिकतम तापमान के होने यानी 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है। दिल्ली में 8 और 10 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, और इस हफ्ते बीच बीच में उमस भरी गर्मी भी लोगों को थोड़ी सी परेशान कर सकती है, लेकिन मौसम एकदम बढ़िया रहेगा। लवे सीरीज का मौसम है, बहुत मजा आ रहा है, जैसे आपको मजा आ रहा है ना ये शो सुनकर, वैसे ही मस्ती है तो हस्ती है, और मस्ती में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, सुन रहे हैं आप 102.6 FM दिल से।

अपने वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं मैं और अपने तजुर्बे से काफी बड़ा हूं मैं। ये बात नीरज चोपड़ा पे एकदम सटीक बैठती है, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीत चुके जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जीते सिल्वर मेडल को एक खास उपलब्धि बताया है। नीरज ने कहा कि यह मेडल उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने पिछले 10 महीनों में कई चोटों और मुश्किलों का सामना किया है।

एंड रिकवरी प्रक्रिया का सामना बहुत टफ होता है एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के लिए। नीरज ने जेवलिन थ्रो इवेंट में 85.83 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ सिल्वर जीता था, जबकि यशस्वीर सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ये भारत के लिए पोडियम पर यादगार, ये बहुत ही यादगार फिनिश है। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, इसीलिए मैं कहता हूं कि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं मैं और अपने तजुर्बे से काफी बड़ा हूं मैं। हिंदुस्तान की आन बान शान और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस चलता रहना चाहिए इंडिया का।

दोस्तों इसके अलावा वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी है, यानी कि 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाने वाला विश्व स्तनपान सप्ताह सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि माँ और शिशु के स्वस्थ भविष्य का संदेश है। माँ का दूध बच्चे का पहला और सबसे संपूर्ण आहार माना जाता है। यह न सिर्फ बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत करता है। वेल, अब समय हो गया है यहां से अलविदा लेने का मेरा, और आएंगे स्टूडियो में रविंद्र सिंह। वेल जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो उर्फ आरजे गौतम इज साइनिंग आउट। सुनते रहिए आप, जुड़े रहिए हमारे साथ 102.6 FM, दिल से दिल तक।

और ज़िंदगी तो यूँ ही चलती रहती है और चलने का नाम ज़िंदगी होता भी है। और जितना प्रोग्राम बढ़िया गौतम ने आपको सुनाया है इसमें कोई शक नहीं, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम था। और ये प्रोग्राम यूँ ही चलता रहे हमारी ऐसी भी उम्मीद रहती है, लेकिन जब गौतम मशगूल होते हैं किसी काम में तो बस भूल जाते हैं कि भाई हमें करना क्या। और वो करते करते लेकिन कहते हैं कि भाई वक्त जब कुछ जानकारी होगा हो तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। पढ़ते हैं समाचार की तरफ।

और अब पेश है इस वक्त के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। मेटा के सीईओ मार्क

जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चल रही पहलों की समीक्षा की गई। रेलवे ने आदर्श रियायत करार ने सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। हड़ताली डॉक्टर होम्योपैथ को 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए जाने की आज बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 1,40,000 लोग मारे गए थे। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू स्थल को लेकर ओमान के साथ समझौता मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह यह समझौता हो सकता है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया है। और अंत में खेल जगत से, जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल फाइनल में जगह बना ली है। तो ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: जी हाँ, चल रहा है दिल की तरह ने गाने नए पुराने। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविंद्र। और कहते हैं कि ये जो गीत का संगम है, नए और पुराने गीतों का संगम है, और मुझे पता कि इस वक्त आप बैठे होंगे ये सोच रहे होंगे कि कौन सा पुराना गीत हम बजाने वाले हैं। तो आज हम धूम धड़ाका करने वाले हैं। मौसम चूंकि सर्द है, तो सर्दी में गर्मी का एहसास कराते हुए, मतलब सर्दी नहीं है लेकिन मौसम कूल है, इसलिए सर्दी में गर्मी का एहसास कराते हुए हम फास्ट ट्रैक पे चलते हैं। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, क्योंकि बातें नहीं होंगी, होंगे क्या, सिर्फ गीत। तो हो जाइए तैयार थिरकने के लिए, क्योंकि रविंद्र लेकर आए हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: तो उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। मैं हूं आपके साथ रविन सिंह। कार्यक्रम चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने, और ये जो गीतों का संगम जो होता है, बस मन तो करता है सुनते रहें। और आज हमने कुछ ऐसा ही किया है कि बस ऐसे गीत बजाएं जिससे आप रखने पर मजबूर हो जाओ, और जहां पर भी हैं वहां कम से कम हमें याद तो रखें, क्योंकि बातें हमारे और आपके बीच हो रही है दिल से दिल तक, और दिल से दिल तक की बातों के बीच चल रहा है संगीत का ये प्यारा सा रेट्रो म्यूजिक से भरा हुआ प्रोग्राम, जिसमें नए पुराने गीतों का संगम है और बातचीत तो बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग इस बात का एहसास करते हैं कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ गीत सुनने हैं, वो सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, है ना।
4: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: तो सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल के दराने गाने नए पुराने। फिलहाल उम्मीद करते हैं प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह और इस प्रोग्राम के लिए हमने कोशिश पूरी की इसको चलाने की, नए और पुराने की तो के साथ। तो फिलहाल वक्त वक्त की बात है, वक्त ये कह रहा है कि अब जरा सुन लेते हैं एक प्रायोजित कार्यक्रम जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। आपसे कुछ ही देर में
1: We bring you a talk on senior citizens, care, system, vulnerability to abuse, welfare, awareness and strengthening access to justice by Dr. Abha Chaudhary, Founder Secretary and Chairperson, Anugraha RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Senior citizens care ka, chahe wo gaon mein ho, chahe wo shahron mein ho, uske prati jagrukta karni ho ya पॉलिसी मेकर्स, एनजीओ, सिविल सोसाइटी या वाइडर सोसाइटी को इसमें इंटीग्रेट करना हो, एक ब्रॉड पिक्चर कि भारत धीरे से ही सही पर एजिंग सुनामी की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बेहतर मेडिकल सुविधाएं और जो लॉन्जिविटी है उसकी वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ रही है और धीरे धीरे ये जो संख्या है ये चिंता का कारण मेरे विचार से नहीं है। यदि हम सही प्रकार के केयर सिस्टम्स,

0: मैकेनिज्म्स और जो हमारी मल्टीपल पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका क्रियान्वयन सही रूप से करें तो ये चैलेंज नहीं पर बल्कि हमारे लिए कि ये बोन बनकर आ सकता है। हमारी संस्कृति में और हमारे समाज में प्राचीन काल से ही जो एक संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली सिस्टम रहा है और सीनियर सिटीजन्स के प्रति केयर और रिस्पेक्ट की एक भावना रही है, उसमें कुछ हल्की दरारें या कुछ हल्के स्ट्रेन्स हम जरूर देख रहे हैं। 80% लोग हैं वरिष्ठ नागरिक, वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और एक सोच का विषय ये है कि उसमें से एक बहुत बड़ा तबका इलिटरेट है, कम पढ़ा लिखा है और सिर्फ फिजिकल लेबर में ही वो एंगेज रहते हैं। 58% से ज़्यादा महिलाएं जो 60 साल के ऊपर हैं कि उनकी जो आर्थिक दशा है या सोशल सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है, उसके प्रति ज़्यादा हमें काम करने की आवश्यकता है। ब्रॉडली जो चैलेंजेस वृद्धावस्था अपने साथ लेकर आती है वो भावनात्मक स्तर पर ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी बहुत ज़्यादा डॉन्टिंग होते हैं। वृद्धावस्था के साथ साथ बीमारियों का घेरना, अकेलापन और बच्चों का बाहर शहरों में चले जाना, बाहर काम करना, और क्योंकि शरीर क्षीण है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से आप उतने सक्षम नहीं हैं तो घर से ज़्यादा बाहर निकलकर आप काम काम भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाते, इसलिए आजीविका संबंधी परेशानियां भी वृद्धावस्था के साथ एक चैलेंज के रूप में उभर रही हैं। कुछ साल पहले अखबारों ने ये भी पढ़ा था जो बेगरी करते हैं काफी सारी वरिष्ठ नागरिक महिलाएं वो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन तक का वो शिकार हुई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन या फाइनेंशियल अब्यूज ज़्यादा चर्चा में रहता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी से संबंधित है। उनको डरा के, धमका के या बहला फुसला के उनके चेक साइन करवा लेना, प्रॉपर्टी के कागज़ अपने नाम करवा लेना, फिर उनको घर से बाहर निकाल देना, ये अक्सर आप समय समय पर मीडिया में चर्चा में पढ़ते रहे हैं। जैसे जैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं, पारिवारिक ढांचा एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ से जा रहा है, तो पहले जो एक साइलेंट प्रॉब्लम हुआ करती थी या घर के बंद दरवाजों के पीछे ये बात होती थी, अब धीरे धीरे मीडिया और बाकी अवेयरनेस या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन एंड इवन एनजीओस इस चीज को बाहर अब ला के खुले में बात कर रही हैं। अब ये प्रश्न आता है जब ये सर्वे हुआ पिछले 7 साल से कि ये एल्डर अब्यूज करते कौन हैं, तो बहुत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए कि कम से कम जो सर्वेक्षण ने शो किया पूरे इंडिया में 82% एडल्ट जो उनके बच्चे हैं सन्स और डॉटर्स वही इसको और डॉटर इन लॉ के बाद जो उनके देखभाल करता है, चाहे वो फॉर्मल देखभाल करता है या इनफॉर्मल देखभाल करता है, जो बेड रिडन लोग हैं वो इसके शिकार पाए गए। तो ये सवाल उठता है कि अब्यूज तो बच्चों का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, तो वरिष्ठ नागरिकों के प्रति ज्यादा हम क्यों वल्नरेबल होते हैं, क्यों ससेप्टेबल होते हैं एल्डर अब्यूज के? तो उसके कुछ कारण हैं। आपने सभी ने ये शब्द जरूर सुना होगा, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया। तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज काफी ज्यादा अब प्रोनाउंस होते जा रहे हैं और यदि व्यक्ति को अपने बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने खान पान के बारे में सुदबुद्ध ही नहीं है, भूलने की समस्या आ रही है, तो वो अब्यूज के प्रति ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरा, खासकर शहरी इलाकों में अकेलापन या बच्चे बाहर चले गए, सोशल आइसोलेशन, अपने हम उम्र लोगों के साथ मिलना जुलना कम कर देना, बाहर निकलना कम कर देना, उससे भी एक वल्नरेबिलिटी अब्यूज के प्रति बढ़ती है। और एक और जो सर्वेक्षण में बात सामने आई, जो केयर गिवर्स का स्ट्रेस है उसमें भी जो उनकी देखभाल करते हैं लोग, कई बार वो प्रेशर नहीं झेल पाते और उस फ्रस्ट्रेशन में उन लोगों के प्रति, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अत्याचार या दुर्भावना उनके प्रति आती है। इसमें एक चीज और देखी गई है कि वो वरिष्ठ नागरिक जो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, जिनकी रेगुलर इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं है, या अपने अधिकारों या जो स्कीम्स हैं सरकार की या कानून हैं उनके प्रति बिल्कुल कम जानकारी है, वो ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली वल्नरेबल रहते हैं एल्डर अब्यूज के प्रति। और जो डिपेंडेंस भी, जो एक निर्भरता है केयर गिवर के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं उनकी इस वल्नरेबिलिटी को बढ़ाती है। एक अब्यूज है वो जो उनके केयर गिवर समाज या परिवार के लोग करते हैं, एक वो प्रकार का अब्यूज है जो सेल्फ निग्लेक्ट है। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा निराश हो जाता है या समाज के प्रति या परिवार के प्रति उदासीन हो जाता है तो वो स्वयं अपने प्रति भी उदासीन हो जाता है, और ऐसे में सही समय पे दवाई लेना, खाना लेना, अपनी हाइजीन मेंटेन करना, अपने लिए भजन पूजन, बाहर जाना, वो सब चीजें जो स्टॉप कर देते हैं वो अपने प्रति भी निग्लेक्ट या अब्यूज माना जाता है। जो एक ब्रॉड साइंस हम सब जानते हैं फिजिकल अब्यूज के, निग्लेक्ट के, वो चोट के निशान हो सकते हैं, बर्न्स के निशान हो सकते हैं, या किसी भी वरिष्ठ नागरिक जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं पर एकदम से वो विड्रॉ कर गए, बातचीत उन्होंने बंद कर दी, बाहर निकलना, दोस्तों से मिलना या रोज की जो एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल बंद कर दी, और उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मान लीजिए अचानक से आप कोई बहुत ज्यादा बदलाव देखते हैं कि पहले वो ठीक ठाक थे और अब बिल्कुल ही उनके लिए कोई खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, या वो घर में से आपको उनके मारपीट की या उनके आर्ग्यूमेंट्स की अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनके देखभालकर्ता और वरिष्ठ नागरिक के प्रति उनका हाइजीन, उनकी डेली ज़रूरतें, उनकी दवाई, ये सब, और अनएक्सप्लेन्ड अगर उनकी तबीयत खराब बहुत लंबे समय तक चल रही है तो ये कुछ सिम्टम्स या साइंस होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि वरिष्ठ नागरिक के साथ सब कुछ सही नहीं हो रहा है। इंटिमिडेशन, किसी भी बात पे उनको साइडलाइन करना, उनको उनके बारे में चर्चा नहीं करना। फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है और अब काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हमारी जो मंत्रालय की नेशनल हेल्पलाइन है 14567 एल्डर लाइन जो है उस पर इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जिसमें या तो बरगला के या प्यार से या उनको बहला फुसला के, चाहे वो उनके घर में काम करने वाली डोमेस्टिक हेल्प हों, चाहे परिवार के लोग हों, देखभाल करता हों, तो एक बार अपने नाम कर लेते हैं तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस प्रकार की जागरूकता वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो समय पर अपनी वसीयत बनाएं, अपने नाम पर सेविंग्स रखें और चीज़ों को सभी के सामने उजागर या डिस्क्लोज ना करें।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर, अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस फ्रॉम द वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वी कंटिन्यू विद द टॉक ऑन सीनियर सिटीजंस केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस।
2: हम किस प्रकार से न्याय उन तक पहुंचाएं, तो ये केवल एक ही वर्ग का दायित्व नहीं है, एक ही वर्ग की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं तीन लेवल्स आपके सामने जरूर बात करना चाहूंगी। एक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सीनियर सिटीजन्स देमसेल्व्स, स्वयं की जिम्मेदारी लेना समय पे, जब वो 40s में है या 50s में है या अर्ली 60s में है, तो अपनी सेहत की जिम्मेदारी, समय पे खान पान की जिम्मेदारी, अपनी सेविंग्स, बचत, इन सब का ध्यान रखना, सारे पैसे बच्ची की शादी में या घर बनाने में व्यय नहीं कर देना, ये हम लोगों की रिटायरमेंट काउंसलिंग, ये हमारे मेन मुख्य दायित्व है। दूसरा, जो उनके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए या फाइनेंशियल वर्कर्स हुए, उनके लिए जागरूकता प्रसार करना, जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, लॉ मेकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस हो गई, एनजीओज हो गई, पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, उनके प्रति एल्डर अब्यूज क्या है, मेंटेनेंस एक्ट क्या है, इस प्रकार की जानकारियाँ उन्हें देना। और जो ग्रासरूट स्तर पे जो एजेंसीज हैं, चाहे वो पंचायत है, चाहे वो RWAs हैं, चाहे वो बाकी एसोसिएशंस हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इस प्रकार का सुविधा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बदलते परिवेश में केवल ओल्ड एज होम होना हमारे लिए एक जवाब नहीं है आने वाले समय में। डे केयर सेंटर्स, मल्टी सर्विस सेंटर्स या ऐसी जगह, इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग, कुछ स्कूल्स या कॉलेजेस में इस प्रकार का उनके लिए स्थान निर्धारित हो। एक क्रिटिकल भूमिका जो नोडल मंत्रालय है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उसकी रही है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के प्रति, और सन 2010 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी, रीजनल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन एजिंग। और हमारा इसमें मुख्य रोल जो रहता है वो ये रहता है कि टेक्निकल सपोर्ट और इनपुट्स हम मंत्रालय को प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे अंडर हमें स्टेट्स आवंटित किए जाते हैं, उन एजेंसीज को हम ट्रेन

0: करते हैं, और मल्टीपल एजेंसीज, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पंचायतें हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर वो विभाग जो वरिष्ठ नागरिकों से डील करता है, हम उन्हें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग और अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं। वाइड स्केल पे कैंपेन्स रन की जाते हैं। हर वर्ष जब 1 अक्टूबर आता है वरिष्ठ नागरिक दिवस, तो उसमें थीम्स डिसाइड की जाती हैं, कभी फाइनेंशियल, कभी लीगल, कभी हेल्थ, और एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था हमारा मुख्य ध्येय है। सो दिस इज अ ब्रॉड मैंडेट, फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टू रिसर्च टू एडवोकेसी टू डेटा बैंक जनरेशन। और उसमें एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एंश्योरिंग मॉडल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स। मंत्रालय के अंडर जितने ओल्ड एज होम्स आते हैं, उनमें किस प्रकार की सुविधाएं हैं, सीसीटीवी या जितने वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इनमेट्स हैं, उनकी सुपरविजन और हैंड होल्डिंग भी हमारा एक कार्यक्षेत्र में आता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मास अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें हजारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को आता है, कृपया आप सभी इसको नोट कर लीजिए, और जितने आपके सर्कल है उसमें ज़रूर इसका ऑब्जर्व होना चाहिए। इसमें हम रैलीज निकालते हैं, रोड शोज करते हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स करते हैं, और मंत्रालय एक बहुत अहम भूमिका जो निर्वहन करते हैं, एक ओथ एडमिनिस्टर की जाती है, एक शपथ ग्रहण किया जाता है यंग जनरेशन के थ्रू कि हम अपने वरिष्ठ नागरिकों का जीवन पर्यंत ध्यान रखेंगे, और वो हमारे नॉर्मली मंत्री जी और बाकी वरिष्ठ लोग इसका संचालन करते हैं। स्वच्छता दिवस, योग दिवस और एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन्स, जैसे मैंने कहा, इसके अलावा एक एक दिन के अलग अलग पॉलिसीज पे हम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं। एल्डर्स मंथ होता है अक्टूबर में, पूरा महीना अलग अलग एक्टिविटीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं भारत के ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाके। इसमें महिलाओं का कार्यक्रम में हम खासकर तवज्जो देते हैं, जो मातृशक्ति कार्यक्रम है सीनियर सिटीजन्स वुमेन के ऊपर। जम्मू कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख और दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूथ, नुक्कड़ नाटक, हर प्रकार के जेल्स में, एक और वो जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो अलग अलग जेलों में वरिष्ठ नागरिक 70 साल के, 80 साल के, 90 साल तक के हैं, उनकी किस प्रकार से कंडीशन है, उसके ऊपर भी काम हो रहा है स्टेट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। और ये एजिंग विद डिग्निटी कैंपेन अब पैन इंडिया कैंपेन है। दिल्ली में हमारी संस्था अनुग्रह, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, दिल्ली हाई कोर्ट के साथ मिलकर भारत का एक एकमात्र यूनिक सेंटर हम रन करते हैं, स्वाभिमान परिसर। इस प्रकार की जो जागरूकता प्रसार कार्यक्रम है, जो उनके दरवाजे तक उनके पास जाए, दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग टू। सो इट बेसिकली फोकसेस लीगल एड, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड होलिस्टिक केयर, इंडियाज फर्स्ट मॉडल वेलफेयर सेंटर फॉर सीनियर सिटीजन। जैसे मैंने आप सबसे कहा, वी हैव टू वर्क कलेक्टिवली टूवर्ड्स अ सोसाइटी विच इज एन एज फ्रेंडली इंडिया एंड एज फ्रेंडली सोसाइटी, एंड स्पेशली आई वुड से यूथ हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट ऑल द स्टेक होल्डर्स इन दिस।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन सीनियर सिटीजन्स केयर सिस्टम, वल्नरेबिलिटी टू अब्यूज, वेलफेयर अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस बाय डॉक्टर आभा चौधरी, फाउंडर सेक्रेटरी एंड चेयरपर्सन अनुग्रह RRTC. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.

0: That was I Get Around by the Beach Boys, and now it's time for a short break, but stay tuned because we have an amazing playlist lined up for you.
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: साथ 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: Welcome back to the Matchless Music Hour on 102.6 MHz. And now it's time to wonder a little.

0: There's a very affirmative declaration of love with the sign sealed and delivered by Stevie Wonder. Now it's time for a short break, but we will be back here at the Matchless Music Hour.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.

0: That was The Power of Love, and now it's time for a short break, but don't go anywhere because we have amazing tracks lined up for you.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है, जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर कंटेंट क्रिएशन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथ और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चल रही पहलों की समीक्षा की गई। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है, जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। हड़ताली डॉक्टर होम्योपैथ को 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दिए जाने का

विरोध कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए जाने की आज बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 140,000 लोग मारे गए थे। ईरान ने कहा है कि होमुर्ज जल डमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ समझौता मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह इस समझौते को मसौदा दिया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया है और जूनियर पुरुष हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम शुरू हो चुका है बॉलीवुड रील्स, और बॉलीवुड रील्स में मैं हूं बबीता रावत। आज आपके साथ बहुत सारी बातें हैं बॉलीवुड जगत की और बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोगों की, और साथ ही साथ बॉलीवुड सरताज का क्विज भी होगा आपके लिए। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारी बातों में छुपा हुआ है बॉलीवुड सरताज के क्विज का राज, यहाँ आंसर। तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर। बॉलीवुड रील्स बबीता रावत के साथ चल रहा है, जुड़े रहिए, एंजॉय कीजिए।

0: होता नहीं प्यार।
1: हाँ जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बॉलीवुड ट्रेल चल रहा है। मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ, और बॉलीवुड की बातें हो रही हैं यहाँ पे। और बॉलीवुड की बातें शुरू करने से पहले हम बता दें कि आज बॉलीवुड में किनका है जन्मदिन। जिन यहाँ जानने है आप भी कि कौन मना रहा है आज अपना बर्थडे। आज है 6 अगस्त और आज है आदित्य नारायण का बर्थडे। आदित्य नारायण को कौन नहीं जानता, उदित नारायण के पापा और दीपा नारायण इनकी मम्मी, दोनों ही सिंगर हैं और इन दोनों की खूबी इनके अंदर आई है। और उसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां इनके अंदर है। जी हाँ, सिंगिंग के साथ साथ एक्टिंग भी इन्होंने बहुत की है, और बचपन से ही गाने का शौक रखने वाले बाल कलाकार के रूप में सिंगिंग और एक्टिंग करने वाले आदित्य नारायण। और होस्टिंग भी बहुत अच्छी करते हैं ये। शापित फिल्म से 2010 में इन्होंने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था, और एक बहुत फेमस गाना है वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इनकी आवाज़ में, और ज़बरदस्त है। थिरकिए और नाचिए और गाइए आदित्य नारायण को हैप्पी बर्थडे बोलिए।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
6: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ बॉलीवुड की बातें लेकर के। वैसे बॉलीवुड में नए नए ट्रेंड्स चलते रहते हैं और इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है वो है सुपर नेचुरल पावर वाली मूवीज का। जी हाँ, सुपर नेचुरल वाली जो मूवीज होती हैं हॉरर तड़के के साथ साथ कॉमेडी भी बटोर कर लेकर आती हैं, यानी कि डराने के साथ साथ दर्शकों को हंसाती भी हैं, और ऐसे में हमें बड़ा इंतजार रहता है ऐसी एंटरटेनिंग मूवीज का। और कई समय से कुछ एक अलग तरह की मूवी बनने को तैयार हो रही है। नाग जिला के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। जी हाँ, इच्छाधारी नाग, जिसमें कार्तिक आर्यन डेब्यू कर रहे हैं। जी हाँ, कार्तिक आर्यन की बात की जाए तो इसी तरीके की एक फिल्म और बनने वाली है, और कौन होंगे उसमें, कौन है और कैसे बन रही है सब बताएंगे। पहले आप इस गाने से मिलिए और फिर बताते हैं आपको अगली फिल्म नागिन किसके ऊपर बन रही है।

गीली गीली हा। और ऐसे ही करते हुए इच्छाधारी नाग या नागिन प्रकट हो जाते हैं ना, ऐसे ही होता ना कुछ। और इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कुछ नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, नाग नागिन इच्छाधारी अब पहले पर्दे पर आपको दिखाई देने वाले हैं। फर्स्ट कार्तिक आर्यन नाग जिला लेकर आ रहे हैं और एक ऐसी फिल्म लेकर आ रही हैं हमारी गिली गिली या मिलेगी मिलेगी स्त्री वाली। जी हाँ, श्रद्धा कपूर ये फिल्म लेकर आने वाली हैं, जो कि बनने वाली है इच्छाधारी नागिन। और हालांकि इस फिल्म को बनाने की जो योजना थी वो 6 सालों से चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन की वजह से लोगों को ये लगा, मतलब सभी को ये लगा कि ये फिल्म अब नहीं बनेगी। लेकिन कई अटकनों के बाद अब ये उम्मीद जागी है और निर्माता निखिल द्विवेदी ने कहा है कि ये फिल्म अब हम इस फिल्म पर काम करने वाले हैं। और श्रद्धा कपूर भी काफ़ी एक्साइटेड हैं क्योंकि अब इस रोल में वो दिखाई देंगी इच्छाधारी नागिन के रूप में। हॉरर कॉमेडी स्त्री में अपना धमाल कमाल मचा चुकी श्रद्धा, अब देखते हैं कब इच्छाधारी नागिन बनेगी। लेकिन इससे पहले उनकी एक ईथा फिल्म आ रही है जो सिनेमाघरों में जल्दी रिलीज होगी और ये एक महाराष्ट्र की मशहूर लोक कलाकार नृत्यांगना विट्ठाबाई भाऊ मांग नारायण गावकर का किरदार इसमें नजर आएंगी इस किरदार में। और फिलहाल जब भी वक्त होगा ये आने वाली जो फिल्म है इनकी नागिन कब आने वाली है, कैसे आने वाली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आप सुनते रहिए बॉलीवुड ट्रेल्स, और क्योंकि यहाँ पर आपको हर लेटेस्ट बात पता चलती है बॉलीवुड की। तो अभी तू झूठी मैं मक्कार का ये गाना।

वैसे हमारे व्यूवर्स जो हैं अपने प्यारे स्टार्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार लुटाते हैं, और उनकी फिल्में जब भी रिलीज होती हैं तो उनके जितने भी दर्शक हैं वो सिनेमा हॉल की तरफ जाते हैं। ख़ास तौर से कुछ कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर डेज में अपनी फिल्मों को रिलीज़ करते हैं, ख़ास तौर से त्योहारों के मौके पर, फेस्टिवल सीजन में जहाँ बाज़ारों में रौनकें होती हैं, वहीं पर सिनेमा हॉल्स में भी बहुत ज़बरदस्त रौनक होती है, क्योंकि कोई ना कोई बड़े स्टार की फिल्म ज़रूर रिलीज़ होती है। और ईद के मौके पर सलमान खान की फिल्म ना रिलीज़ हो, ऐसा कभी हो सकता है? क्योंकि सलमान खान ज़्यादातर अपनी फिल्मों को ईद के मौके पर या दिवाली के मौके पर रिलीज़ करते हैं, और अब सुनने में आ रहा है कि उनका कोलैबोरेशन वामसी पेडीपल्ली से हुआ है। जी हाँ, वामसी पेडीपल्ली साउथ के एक अच्छे खासे डायरेक्टर हैं, और अब सुपरस्टार सलमान खान के साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं। जी हाँ, शूटिंग आज से शुरू होने वाली है, और उनके साथ ऑपोजिट में नयनतारा होंगी। नयनतारा, जी हाँ, फिल्म का नाम वैसे तो टेम्परेरी तौर पर SVC 63 रखा गया है, लेकिन अभी जब रिवीलिंग होगा नाम तो हम ज़रूर आपको बताएंगे। इस फिल्म में सलमान खान, नयनतारा के अलावा राहुल देव भी आपको दिखाई देंगे, और खलनायक के तौर पर दिखाई देंगे। एक्शन फिल्म है, निर्माता इसमें दिलराजू हैं, और जल्द ही ये फिल्म कब रिलीज़ होगी बताते हैं आपको। ईद के मौके पर 2027 में ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, ऐसा अनुमान है। अभी फिलहाल इस फिल्म का शेड्यूल शुरू हो गया है 6 हफ्तों का शूटिंग का, और जल्द ही ये फिल्म की कुछ और अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। बॉलीवुड ट्रेल सुनते रहिए हमारे साथ।

0: दीप मनी और नेहा भसीन की आवाज में सुन रहे थे आप रेस फ्री से ये गाना। और भाई तबाह बर्बाद हो जाते हैं हम जब आपकी आवाज सुनते हैं, और ऐसे में क्या है अब राज क्या भाई, आपको बता दें कि इस वक्त तो राज यही है कि हमारे पास है बॉलीवुड सरताज के क्विज का राज। जी हाँ, बॉलीवुड सरताज का क्विज हम आपसे पूछने वाले हैं, और बातें हमारी बहुत सी हो गई हैं, आपने बिल्कुल ध्यान से सुना होगा, और इसमें ही हम आपको बताने वाले हैं कि आज का बॉलीवुड सरताज का क्विज क्या है। चलिए सुनिए बहुत ध्यान से और जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। बॉलीवुड सरताज का आज का जो क्विज है उसमें हम बहुत आसान सा सवाल पूछा है। आदित्य नारायण की बात करी है हमने, सिंगर के तौर पे आप उन्हें जानते हैं और एज अ होस्ट के तौर पर जानते हैं आप उन्हें, लेकिन उन्होंने एक फिल्म भी करी है जिसमें उन्होंने डेब्यू किया था। उस फिल्म का नाम हमें लिख कर भेज दीजिए 9868107070 पर। जी हाँ, आदित्य नारायण की डेब्यू फिल्म का नाम हमें लिख कर भेज दीजिए 9868107070। व्हाट्सएप कीजिए, अपना नाम अपने शहर के नाम के साथ भेजिए, और कोई एक लकी होगा जो हमारा आज का बॉलीवुड सरताज बनेगा। अभी फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारी

0: संकल्प।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और मैं हूँ बबीता रावत। आपके साथ प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड ट्रेल्स में बहुत सारी बातें हो रही हैं आपके साथ, बॉलीवुड जगत की और बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोगों की।

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनकी अगर हम झलक देखते हैं या जिनको हम देखते हैं तो वो रूह तक उतर जाती हैं। कुछ ऐसी फिल्में होती हैं, क्यों संजय लीला भंसाली जी कुछ ऐसी ही फिल्में बनाते हैं और जिनका जो सेट है वो इतना भव्य होता है कि बस हमारे इमेजिनेशन में कहीं ना कहीं वो जो छाप है वो बस जाती है और बस हमारे दिमाग में उनकी जो फिल्में हैं वो छा जाती हैं। देवदास भी उन्हीं में से एक मूवी थी और आज भी कल्ट मूवीज़ में से एक मानी जाती है ये फिल्म। और जब देवदास की बात की जाती है तो इस फिल्म में पारो का कैरेक्टर निभाने वाली ऐश्वर्या राय थी और ऐश्वर्या राय का ज़बरदस्त यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी उनकी। लेकिन आपको पता है कि ऐश्वर्या राय के अलावा यानी कि ऐश्वर्या राय से पहले किसी और को भी इस रोल के लिए साइन कर लिया गया था? जी हाँ, करीना कपूर को इस फिल्म में पारो के कैरेक्टर के लिए साइन कर लिया गया था। उनकी स्क्रीनिंग हो चुकी थी लेकिन एंड टाइम पे पता नहीं क्या हुआ कि अचानक से संजय लीला भंसाली जी का मन बदल गया और उन्होंने पारो के रोल को ऐश्वर्या को दे दिया और करीना कपूर का नाम जहाँ इस फिल्म के लिए बहुत चर्चाओं में था अचानक से उनका नाम इस फिल्म से हट गया। कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक संजय लीला भंसाली ने करीना कपूर के साथ काम नहीं किया लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ये जो बीच की दूरियां थी वो कम हो गई हैं। जी हाँ, 24 साल की बाद अब संजय लीला भंसाली करीना कपूर के साथ एक फिल्म करने वाले हैं और ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल फिल्म होगी। इसमें एज अ एक्टर धनुष भी दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए ना, दोनों का रोल जबरदस्त होने वाला है और क्या होगी इस फिल्म की स्टोरी आगे भी पता चलता रहेगा। सुनते रहिए बॉलीवुड रील्स। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ अभी सांवरिया फिल्म से ये गाना।

बॉलीवुड ट्रेल सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ और बॉलीवुड की बहुत सारी बातें आपके लिए। वैसे कई ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी खोज एक बार निकली, यानी कि जैसे आपने देखा सांवरिया फिल्म ने हालांकि बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं करी, लेकिन रणबीर कपूर का जो करियर था इसी फिल्म से चमकना शुरू हुआ। ऐसे ही बहुत सारे हमारे डायरेक्टर या फिर कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एक्टर या एक्ट्रेसेस को लाते हैं और उसके बाद उनकी किस्मत चमकना शुरू होती है। ऐसी ही एक खोज अनुराग कश्यप की भी है। जी हाँ, अनुराग कश्यप ने भी एक ऐसा ही हीरा खोजा है और जिसने अब धीरे धीरे करके फिल्म इंडस्ट्री में अपना परवान चढ़ाना शुरू किया है। अनुराग कश्यप को कौन नहीं जानता, ब्लैक फ्राइडे, देव डी गुलाल, गैंग्स ऑफ वसेपुर, अगली और रमन राघव जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, सत्या क्वीन जैसी फिल्म को प्रोड्यूस कर चुके हैं और एक्टिंग का कमाल धमाल भी बहुत से फिल्मों में दिखा चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कई लोगों को लॉन्च भी किया है। चलिए मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अभी अकीरा फिल्म से ये गाना सुनिए और इन्जॉय कीजिए।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
5: म्यूजिक मस्ती।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: आकाशवाणी आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स। और बॉलीवुड में जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे लोग आते हैं और उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उनकी किस्मत चमकने लगती है। ऐसे ही भाई सैयारा स्टारर आप आहान पांडे को तो जानते ही हैं, और आहान पांडे के साथ अब यश राज बैनर भी जुड़ चुके हैं और उनकी अगली फिल्म में शर्वरी बाग के साथ अपोजिट काम कर रहे हैं। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि बॉबी देओल इस फिल्म में विलेन का किरदार निभा रहे हैं। भाई ये भी खबर नहीं है, खबर यह है कि बॉबी देओल के किरदार के साथ साथ एक और किरदार है जो इस फिल्म में एक अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं, और वो हैं ऐश्वर्या ठाकरे, जो कि बॉबी देओल के बेटे के रूप में आपको नजर आने वाले हैं। देखिए, बॉबी देओल इसमें विलन और उनके बेटे ऐश्वर्या ठाकरे बनेंगे, वो भी विलन के अवतार में दिखेंगे या नहीं दिखेंगे ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपके लिए यही एक्साइटेड न्यूज थी कि अब जल्द ही आपको बॉबी देओल के साथ ऐश्वर्या ठाकरे दिखाई देंगे। और ऐश्वर्या ठाकरे अनुराग कश्यप की खोज है, निशांची फिल्म से उन्होंने शुरुआत की थी और ओटीटी प्लेटफॉर्म से उन्होंने अपनी शुरुआत की, और अब दिखेंगे वो बॉबी देओल और आहान पांडे और शबरी वाक के साथ एक नई फिल्म में। अभी एनिमल का ये गाना और उसके बाद अनाउंस करेंगे हम आज के बॉलीवुड सरताज का नाम।

वैसे बहुत बेखबर हो गए हैं हमारे आज के बॉलीवुड ट्रेल्स के बॉलीवुड सरताज, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी फोन मिलाने की, लेकिन उनका फोन तो भाई उठाया ही नहीं। शिव मेरठ से उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया, शापित थी फिल्म किसकी, जी हाँ आदित्य नारायण की फर्स्ट डेब्यू एक्टिंग मूवी। और

ये बिल्कुल करेक्ट जवाब था। बहुत सारे लोगों ने हमें बिल्कुल करेक्ट करेक्ट जवाब दिया है, और कौन है वो चलिए हम बताते हैं आपको। जैनन त्यागी जी मोदी नगर से, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और प्रदेश सलीम सलीम ने दिया है, लेकिन इन्होंने गलत जवाब दिया है। और इसके अलावा यहाँ पर और किसका जवाब सही आया, कंचन सोनिया बिहार से बिल्कुल सही जवाब देती हैं। और इसके अलावा बताते चलते हैं आपको, बलराम गेट चौराहा कासगंज से अनूप साहू जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और यहाँ से धर्मशाला से भी सही जवाब आया है ईशा का। और इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा है निकिता पारेकर जी का जवाब, जब प्यार किसी से होता है, बिल्कुल गलत जवाब। और हाँ, अमरावती महाराष्ट्र से पंकज जी का बिल्कुल सही जवाब आता है। इसके अलावा हरीश गौर मेरठ से बिल्कुल सही सही जवाब देते हैं। और राजकुमार संतानी जी बिल्कुल सही जवाब देते हैं महाराष्ट्र से। और इसके अलावा और कौन है जिन्होंने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है, रोहतक से धर्म भाटिया जी, आपका जवाब गलत है। जी हाँ। और इसके अलावा कौन है भाई, बहुत सारे जवाब यहाँ पर आज गलत आए हैं, यानी कि आप बहुत कंफ्यूज हो गए आज हमारे बॉलीवुड सरताज का क्विज। फिलहाल अभी मुझे दीजिए इजाजत, मेरे जाने का वक्त हो चला है। और आपके लिए फिलहाल अब आऊंगी मैं मेरा वाला सॉन्ग में, अभी के लिए लेंगे एक छोटा सा न्यूज ब्रेक।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है।

0: जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़। वी आर बैक विद अ सॉन्ग दैट इज टेकन द आइडिया ऑफ अ ट्रॉपिकल एस्केप एंड टर्न्ड इनटू 3 मिनट्स ऑफ इजी लिसनिंग। इट इज रिप टाइड बाय द चेन स्मोकर्स।

0: impossible. Invincible, the best soundtrack for getting through the day is, you know, simply something with a little momentum. Now we're halfway through the musical hour and it's time for another short break. Don't go anywhere. Play It Cool returns in just a moment.
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त ये चाय बड़ी है मस्त
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
6: ये है आकाशवाणी।

0: और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एंड नाउ समथिंग लिटिल मोर रिफ्लेक्टिव फ्रॉम इमेजिन ड्रैगन्स।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
3: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
4: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
7: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एंड नाउ वी प्रेजेंट सेलेना गोमेज़ विद अ सॉन्ग दैट प्रैक्टिकली राइट्स इट्स ओन कोरस।

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्यवाही सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। रेलवे ने आदर्श रियायत करार ने सुविधा को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। हड़ताली डॉक्टर होम्योपैथ को 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए जाने की आज बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना के 1,40,000 लोग मारे गए थे। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ समझौते मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह यह समझौता हो सकता है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है मेरा वाला सॉन्ग और मेरा वाला सॉन्ग में आपकी रिक्वेस्ट हम यहाँ पर प्ले करते हैं तो सुनते रहिए मेरे साथ और साथ ही साथ भेजते रहिए अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भी 9868107070 पर और जैसे ही मैंने कहा यहाँ पर तुरंत के तुरंत सॉन्ग रिक्वेस्ट की झड़ी लग गई। जी हाँ, आज मौसम बहुत सुहावना हो रखा है, पानी बरस रहा है और ऐसे में किसी को सुनने का मन है आज चांदनी फिल्म का ये गाना। तो चलिए आपको सुनवाते हैं और कौन है रिक्वेस्ट करने वाले, उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल जी, सचिन खोरवाल जी और अमन खोरवाल जी इनकी पसंद का और साथ ही साथ दीपांशु भी हैं इनके साथ। तो चलिए सुनते हैं इस गाने को और इंजॉय कीजिए और साथ ही साथ अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजिए 9868107070 पर। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग।

और अगली रिक्वेस्ट जो हमें भेजी है असम से आई है हैफलोंग डिमांशाहो से, और नाम इनका जॉय हैग्जर और साजन फिल्म का ये गाना।

0: बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: एन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग, और मेरा वाला सॉन्ग में अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट जिनकी हम प्ले करने वाले हैं, उनका नाम है अमरदीप कुमार, कुप्पमपट्टी जलकंडापुरम सेलम जिला तमिलनाडु से। इनकी रिक्वेस्ट पर सलामी फिल्म का ये गाना आप सभी लोगों के लिए, और सुनिए और एंजॉय कीजिए इसे।

और अगली रिक्वेस्ट पंकज अमरावती महाराष्ट्र से करने वाले हैं। जी हाँ, पालकी पे हो के सवार चली रे खलनायक 1993 में अलका याग्निक की आवाज में सुनना चाहते हैं और लीजिए आपका मेरा वाला सॉन्ग हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं।

और अब इंतजार खत्म। पुष्पेंद्र कुमार राजपूत और विनय कुमार, अमित कुमार, रवि कुमार, चित्रा राजपूत, लकी राजपूत, मुबारकपुर माफी कासगंज उत्तर प्रदेश से, इन्होंने जिस गाने की फरमाइश की है वो अब आ चुका है।

0: मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
2: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
3: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है आपका पसंदीदा मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। और अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट जो हम प्ले करने वाले हैं वो है मलकापुर डिस्ट्रिक्ट बल्ढाणा महाराष्ट्र से अशोक कुमार आहूजा की रिक्वेस्ट है और ये रिक्वेस्ट हम प्ले करने वाले हैं, तो बहुत बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट को।

0: कमल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम में। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ और अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट जिनकी हम प्ले करने वाले हैं, मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली से 1942 लव स्टोरी से ये प्यारा सा गीत।

वैसे सावन की बात की जाए तो रिमझिम रिमझुम फुहार तो भरती ही है, आसमान के रंगों को धरती पर लेके आती है। जी हाँ, अगर कहें तो हरा जो हरियाली होती है वो इस मौसम में साफ दिखाई देती है, लेकिन अगर मन के भावों की बात की जाए तो अलग अलग भावों को भी ये दर्शाती है। भाई सावन के महीने में कई लोग तो मिलन की और कई लोग विरह की, दोनों ही आग में तपते हैं। क्यों? जहाँ इस गाने में कितना प्यारे से मीठे से बोल है कि रिम झिम तेरी भीगी भीगी रुत में तुम और हम तुम, उसी तरीके से किशोर कुमार की एक बहुत प्यारे प्यारा सा जो गीत है मेरे नैना सावन भादो। हाँ देखिए ना, इस गाने में आंसुओं को ही बोला गया है लेकिन फिर भी सावन को इससे जोड़ा गया है। इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट किसने की है ये भी हम देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर राजेश कुमार चौहान जालंधर से इन्होंने इस गीत की रिक्वेस्ट की है। किशोर कुमार की आवाज़ है इस गीत में और साफ बयां करती है कि जहाँ सावन प्यार का और मिलन का प्रतीक है वहीं कहीं ना कहीं विछोह भी इससे रिलेट करता है। तो चलिए सुनते हैं इस गाने को।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबिता रावत। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट जो हम प्ले करने वाले हैं शमी गुलेरिया फ्रॉम चंडीगढ़ और दीवाना फिल्म का ये गीत है।

सोचेंगे। भाई सोचना, लिखना, पढ़ना सब कुछ हमारे साथ करिए, क्योंकि अगले प्रोग्राम का आपको रहा है इंतजार, जो है आशियाना, और वो बिल्कुल लाने वाला है आपके लिए, लेकर आएंगे मुनीश जौली। और लास्ट रिक्वेस्ट जो हम प्ले करने वाले हैं यहाँ पर, अनूप शाहू बिल राव गेट चौराहा कासगंज जनपद कासगंज उत्तर प्रदेश से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। अभी फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।

दो बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। भाजपा सांसद और संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग की माफी को भारत के कानूनों, संविधान और संसद की जीत बताया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। बंबई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। रचनात्मक अर्थव्यवस्था से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच ब्रिक्स वेव्स बाजार का आज मुंबई में शुभारंभ हुआ। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों का जलस्तर घटा है। जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए जाने की आज बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 1,40,000 लोग मारे गए थे। और पुरुष जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बृहस्पतिवार का दिन आशियाना होता है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए।
2: It's not about a coffee।
1: आज ये प्रोग्राम 2:30 बजे तक होगा, यानी 2:30 तक, और उसके बाद एक प्रायोजित कार्यक्रम आएगा। इस दौरान हम किसी खास मेहमान से बात करने की कोशिश करेंगे। आशियाना आपका हमारा।

0: योजना जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
4: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
3: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
4: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
5: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना और मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आरती मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, नोएडा में आप रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आशियाना में।
1: थैंक यू।
0: जैसा आप जानते हो कि आशियाना एक प्रोग्राम है जहां हम सीनियर सिटीजन्स पे फोकस करते हैं हफ्ते में एक बार। आप हमारी उस सोसाइटी के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, उसका एक हिस्सा हैं। क्या चैलेंजेस होते हैं और क्या आसान हो जाता है जब हम उस लाइफ के उस मोड़ पे पहुंचते हैं, उस दौर में पहुंचते हैं जब हम सीनियर सिटीजन कहलाते हैं?
1: देखिए, पहले तो बहुत अच्छा लगता था। अभी भी बैठ के बालकनी में हम यही देखते रहते हैं, बारिश हो रही है, तेज हो रही है, कम हो रही है, लेकिन भीगने का जो मजा बचपन में था या उसमें था, अब वो चीज नहीं है। अब भीगने से डर ही लगता है कि कहीं बीमार पड़ गए तो, लेकिन देखना बहुत अच्छा लगता है बारिश का। उस वक्त होता था कि चलो पकौड़े बना दो, बच्चे कहते थे मम्मी मालपुए बना दो, बारिश हो रही है, वो बना लेते थे, खाते थे। अब तो वो भी नहीं खाते हम, लेकिन बारिश का मजा हम जरूर लेते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है बारिश को देखना। जैसी बरसात शुरू होती है हम बालकनी में आके बैठ जाते हैं और देखते हैं, अच्छा लगता है सब कुछ देखना।
0: क्या आसान हो जाता है जब हम सीनियर सिटीजन बन जाते हैं? कुछ अच्छी अच्छी बातें बताइए कि मैं समझ सकता हूँ चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन क्या अच्छा हो जाता है?
1: आसान और अच्छा ये होता है कि अब हम बैठे बैठे बरसात का लुत्फ उठा सकते हैं। दूसरी बात है, बच्चों को अब हम कहते हैं चलो पकौड़े तलो वो तो एक हमें भी दे देना, और क्या कर सकते हैं।
0: ये तो बारिश के जो सीजन अभी शुरू हुआ है आप उसको लेकर कह रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी क्यों सीनियर सिटीजन बनने के बाद डर ज्यादा बैठता क्यों है? क्यों डर ज्यादा लगता है, ऐसी बात है क्या?
1: हाँ, डर इसलिए लगता है कि कहीं भीग गए, बीमार ना पड़ जाएं और जुकाम ना हो जाए। पहले इन सब चीजों का डर नहीं होता था, पहले मजे में रहते थे, हो गया जुकाम हो जाएगा जी, और अगर भीग गए तो अच्छा लगता था। अब भीगने से डर लगता है।
0: सीनियर सिटीजन की जब लाइफ, हम जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि जब हम यंग थे, जैसे आपने कहा कि बारिश में भीग सकते थे, शायद एक वो दौर भी था जहां पेड़ों पे झूले लगते थे, लोग झूले झूलते थे। आज तो खैर आज की जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि झूला कहाँ होगा, तो आई थिंक किसी
1: नहीं, हमारे टाइम में झूले पेड़ों में लगते थे और हम जरूर झूला झूलते थे। सावन जैसे ही आता था तो हमें लगता था कि भैया अब झूले भी झूलेंगे और भीगेंगे भी, ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी। अब इन सब चीजों से डर लगता है। झूले तो खैर है ही नहीं, इसके लिए हमें पार्क में जाना पड़ेगा झूला झूलने के लिए, उसके लिए फिर वही भीगना पड़ेगा, सब कुछ होता है, तो इसलिए थोड़ा सा यही डर लगता है कि बीमार ना पड़ जाए।
0: अच्छा, ऐसे टाइम पे जब जिन बच्चों को आपने पाल पोस के बड़ा किया, जब छोटे थे तो बड़े क्यूट से लिटिल बेबी लगते थे और बड़ा अच्छा लगता था, जब आप एक वृद्धावस्था में आ गई और बच्चे जो हैं उनका सपोर्ट आपकी तरफ?
1: अभी भी बच्चे बोलेंगे मम्मी आज बारिश हो रही है ना, मालपुए बना दो, तो अभी भी वो चीजें हैं। बच्चे उन सब चीजों को याद रखते हैं क्योंकि हमने वो सब चीजें करके दी हैं उनको, तो इसलिए उनको अच्छा लगता है। अभी भी वो हमें ही बोलते हैं कि भाई आप वो बनाओ और हम खाएंगे। लाइन फिर बैठ जाते हैं सबके सब, उनके बच्चे भी बैठ जाते हैं, चलो ठीक है खा लिया बना लिया, अच्छा लगता है ये सब करना।
0: ओके। एक अगर बात आपसे मैं ये पूछूं कि आप हमारे जो सुनने वाले हैं सीनियर सिटीजन बनने के बाद, अगर आप उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहोगे, प्रोत्साहित करना चाहोगी, तो क्या कहोगे?
1: मैं तो यही बोलूंगी, बरसात का आनंद लो, सावन आया है, सावन में ठीक है हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं ज्यादा, और बालकनी में बैठ के बरसात का पूरा पूरा आनंद लेते हैं बच्चों के साथ। बच्चे हमारे साथ रहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि मम्मी ये करो वो करो, बच्चे बारिश में भीगते हैं, हम देखते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है।
0: ऑलराइट। बहुत बहुत शुक्रिया. मैं भूल गया था कि सावन का महीना शुरू हो गया, तो सारी कॉन्वर्सेशन सावन स्पेशल ही होगी. लेकिन समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू, धन्यवाद.
0: कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कही जाती हैं ढेर सारे भाव के साथ, वो भाव पकड़ना आना चाहिए. आशियाना सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर.

NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: NCRPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी।

0: ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से कुशल देव पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, शरीर ईश्वर की दी हुई सबसे अनमोल संपत्ति है, इसकी रक्षा धन से भी अधिक जरूरी है, क्योंकि बिगड़ी सेहत के आगे दौलत भी हार मान लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम चरौदा बार नवापारा अभारण्य जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। केंद्रपाड़ा ओडिशा से हमारे चिरपरिचित श्रोता देशदीप दास जी का संदेश हमें मिला है। और उसके साथ साथ संदेश भेजने वाले हैं कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आगे चलते हैं, अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी का। श्रोताओं, आप सबके संदेशों के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आज की चर्चा में। तो एक बहुत ही रोचक हमारी चर्चा होने वाली है, आइए करते हैं शुरुआत। श्रोताओं, एक प्रश्न कभी किसी ने मुझसे पूछा था कि बताइए अजीत जी, आखिरी बार आपने बिना काम के किस दोस्त से कब मुलाकात की? तो मैंने हंसते हुए उत्तर दिया था कि इतना कठिन सवाल ना पूछिए, बड़ी व्यस्त जिंदगी है, बिना काम के भला किसी से मिलने का समय कहां। जी हाँ श्रोताओ, यही तो समस्या है। लेकिन एक बात और है, लोग अक्सर कहते हैं हम तो हमेशा जुड़े रहते हैं। जी हाँ, लोगों का कहना भी ठीक है कि वो हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अब लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, वास्तविक जिंदगी में शायद नहीं के बराबर। तो श्रोताओ, आइए चलते हैं एक घर पर और देखते हैं एक दृश्य। दृश्य कुछ इस प्रकार से है, आप कल्पना करें, पिताजी मोबाइल पर अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी शॉपिंग ऐप देख रही हैं, बेटा गेम खेल रहा है,

0: बेटी रील बना रही है और बेचारे बुजुर्ग दादाजी सबको देख रहे हैं कि कोई कम से कम उनसे दो मिनट बात तो कर ले। श्रोताओं, ये काल्पनिक दृश्य था, लेकिन क्या आपने खास बात पर गौर किया कि माता पिता, बेटा, बेटी और दादाजी सब एक साथ एक ही घर में हैं, लेकिन उनके बीच में संवाद नहीं हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि भाई समय ही नहीं मिलता। तो श्रोताओं, एक सवाल मैं अपने आप से पूछना चाहूंगा और आपसे भी कि 3 घंटे सोशल मीडिया के लिए हमें समय कैसे मिल जाता है? अब क्रिकेट का मैच तो पूरा पूरा देख ही लेते हैं, लेकिन आपस में 10 मिनट भी बात करने का हमारे पास समय नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज समाज में तनाव भी है और बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हो गई हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है श्रोताओं कि क्या किया जा सकता है। तो चलिए श्रोताओं, आज से ही एक प्रयोग करते हैं। आप पूछेंगे भला वो क्या? तो श्रोताओं, वो प्रयोग कुछ इस प्रकार से होगा कि चलिए आज ही समय निकालकर मोबाइल को आधे घंटे के लिए बंद कर देते हैं या साइलेंट कर देते हैं। आप पूछेंगे फिर क्या करें? तो मैं कहूंगा कि तो शुरुआत करते हैं अपने ही घर से। अपने माता पिता, दादा दादी या बच्चों के साथ बैठकर थोड़ा समय निकालते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कम से कम आधे घंटे से शुरुआत तो हो ही सकती है। फिर फोन को ऑन करते हैं। आप कहेंगे श्रोताओ, अभी आपने कहा फोन ऑफ करो और अब कहते हैं कि ऑन करते हैं, ये भला कैसी बात है? यही तो बात है श्रोताओ, फोन ऑन करके किसी ऐसे मित्र या रिश्तेदार या प्रियजन को फोन मिलाते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। ध्यान रहे, इस समय आपको उनसे बात करनी है जिनसे लंबे समय से बात ही नहीं हुई। आप अपने घर के बुजुर्गों से भी बात कर सकते हैं जिनके शायद कई बार आपको या मुझे समय नहीं मिलता। खासतौर से श्रोताओ, मैं अपने विद्यार्थी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि अपने बड़ों से बातचीत का समय जरूर निकालिए, उनके अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। विश्वास करें श्रोताओं, जब आप फोन करेंगे तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आएगी ना और आपको जो खुशी मिलेगी, उसकी तुलना किसी और बात से हो ही नहीं सकती। तो आइए 5 आसान उपाय जानते हैं कि कैसे हम मोबाइल का सदुपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, रोज कम से कम 20 मिनट परिवार के साथ। दूसरी बात, भोजन के समय मोबाइल को दूर रखें। अक्सर होता यह है कि खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में मोबाइल भी चल रहा होता है। नहीं, ऐसा ना करें, मोबाइल को खाने के समय बिल्कुल दूर रखें। तीसरी बात यह हो सकती है कि सप्ताह में एक दिन किसी रिश्तेदार या मित्र से मिलें या उससे बातचीत करें। और चौथी बात है, महीने में एक बार पूरे परिवार के साथ छोटी सी सैर या भोजन करने का कार्यक्रम बनाइए। याद रखिए, रिश्ते अपने आप नहीं चलते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसे हम रोज मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं ना, उसी तरह जी उसी प्रकार रिश्तों की बैटरी को भी प्यार, समय और अपनेपन से चार्ज करना पड़ता है। तो एक काम करें, आज ही अपने किसी को समय दीजिए। डिजिटल दुनिया में रहते हुए भी मानवीय रिश्तों को जिंदा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तो श्रोताओं, हमें आशा है कि आपको हमारी बातचीत जरूर पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ करने को, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी सी कविता लिखें। विषय एक बार फिर से सुन लें, आज के व्यस्त जीवन में हम एक दूसरे को समय कैसे दे सकते हैं, इस विषय पर 3 से 4 पंक्तियों में एक लघु लेख या छोटी कविता लिखें। भेज दीजिए अपना लघु लेख या कविता हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और जी, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं। श्रोताओं, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहां सर्च के लिए विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पुस्तकों को डाउनलोड कीजिए। एक और जरूरी सूचना आपको दे दें श्रोताओं, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां भी अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं जी। और इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। श्रोताओं, अब समय है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों का, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम, असम का प्रकृति पर्व बिहू। कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में असम के उल्लास पर्व बिहू के बारे में रोचक जानकारी दी गई है और इसे मनाए जाने के तरीकों और इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि के बारे भी बताया गया है।
1: May I come in, Mr. Henry?
2: Yes, sure. अंदर आइए, आपका स्वागत।

0: थे।
1: आपने बुलाया था सर?
0: जी, मैंने आपको बुलाया था। आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। आपने असम के डांस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए लंदन की ब्रिटिश अकादमी को जो ग्रांट की रिक्वेस्ट भेजी थी वह मंजूर हो गई है। ये रहे पेपर्स।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।
0: ऑल द बेस्ट, असम जाने की तैयारी कीजिए।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: एंजेला का परिवार दिल्ली से था, लेकिन अब बहुत समय पहले से वो सभी लंदन में ही बस गए थे। एंजेला डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्मात्री थीं और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर वहाँ की संस्कृतियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना उनका काम था।
1: सबसे ज्यादा खुशी उनकी बेटी कोमल को हुई, क्योंकि वो भी अपनी माँ के साथ भारत जा रही थी। कोमल इंग्लैंड में ही पैदा हुई थी। वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी धारा प्रवाह बोल लेती है। और आखिर आ ही गया वो दिन असम जाने का। लंदन से दिल्ली होते हुए वे गुवाहाटी पहुंचे। शाम को डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निर्धारित कैमरा टीम भी आ चुकी थी। एंजेला ने उन्हें आलेख पढ़कर सुनाया और शूटिंग से संबंधित आवश्यक निर्देश भी दिए।
2: दूसरे दिन वो गुवाहाटी शहर के आसपास कुछ ग्रामीण इलाकों में भी घूमने गए। बाजार हाट फुल्लम गामोसा और भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों से पटे हुए थे।
1: फुल्लम गामोसा एक प्रकार का हाथ का बुना हुआ सूती गमछा है, जिसकी किनारी लाल रंग की होती है। असमिया लोग इसे पारंपरिक रूप से सम्मान और आदर के प्रतीक के रूप में बड़ों को भेंट करते हैं।
2: आज कोमल बहुत उत्साहित है। बिहू का त्योहार जो है, ब्रिटिश दूतावास के सौजन्य से एंजेला को आज असम की जानी मानी सांस्कृतिक आयोजन समिति की ओर से विशेष निमंत्रण भेजा गया है। आज के विशेष बिहू कार्यक्रम के दौरान वो विशेष अतिथि भी होंगी और डॉक्यूमेंट्री की निर्मात्री भी। उत्सव चल रहा था।
3: नमस्कार, मैं हूं मृगेन बरुआ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और खास स्वागत है हमारी खास अतिथि एंजेला जी और उनकी बेटी कोमल का। तो सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं बिहू पर्व का एक खास नाटक।
4: आज महाराज ने कुछ खास आदिवासी समूहों को बुलाया है।
5: सुना है वो बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
4: भाई जो भी हो, हमारे महाराज हैं बड़े कला प्रेमी।
6: बिल्कुल सही कहा आपने।
5: चलो देखते हैं क्या क्या होता है।
6: जी जी, चलो चलो देखते हैं।
5: चलो चलो चलो चलो, चलो, चलो जल्दी चलो।
7: अहोम के महाराज की जय हो।
8: जय हो, जय हो।
7: जैसा कि महाराज ने इच्छा व्यक्त की थी, आज हमारे बीच दिमासा कछारी आदिवासियों का समूह पधारा है अपने पारंपरिक कृषि नृत्य बीशु के साथ।
9: नृत्य प्रस्तुत किया जाए।

0: अद्भुत, अति सुंदर। हम इस नृत्य प्रस्तुति के साक्षी होकर धन्य हुए। महामंत्री
1: जी, आज्ञा महाराज।
0: मेरी आज्ञा से प्रजा में यह संदेश भेज दिया जाए कि आज के बाद से फसलों की कटनी के बाद प्रकृति माता को आभार प्रकट करने के लिए समस्त अहोम राज्य में विशु नृत्य विधिवत किया जाएगा।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
2: महाराज की
3: जय हो।
4: तो साथियों, कैसा लगा आपको ये नाटक? अब दीजिए अपने साथी मृगेन को आज्ञा, लेकिन जाने से पहले एक दूसरे से मिलना जुलना मत भूलिएगा। आपके लिए हमने खास तौर से रखा है बिहू मिलन कार्यक्रम।
5: बिहू मिलन समारोह चल रहा था और साथ ही साथ एंजेला की टीम शूटिंग में भी लगी हुई थी। अब बारी थी रेडियो साक्षात्कार की। आइए सुनते हैं एंजेला, कोमल और मृगेन का ये वार्ता।

0: ओम राज्य के बारे में बताया, इस पर थोड़ी जानकारी और दीजिए ना।
1: जी अंजला जी, अहोम राज्य का काल 1200 सामान्य संवत से 1700 सामान्य संवत तक रहा।
0: अच्छा।
1: माना जाता है कि यही अहोम नाम आगे चलकर असोम कहलाया और कालांतर में असम हो गया। प्राचीन शास्त्रों में असम का उल्लेख प्राग ज्योतिषपुर नाम से किया गया है।
0: मृगेन जी, इस त्योहार का नाम बिहू क्यों पड़ा?
1: बहुत अच्छा सवाल। देखिए, शुरू में इस आदिवासी नृत्य को बिशु नृत्य कहते थे। बाद में यही बिशु नाम बिहू के नाम से जाना जाने लगा।
0: सर, मैंने सुना है कि बिहू साल में 3 बार मनाते हैं।
1: सही सुना है कोमल बिटिया। बिहू खेती से संबंधित त्योहार है।
0: ओह।
1: ये असमिया नए साल में वसंत ऋतु के आगमन से शुरू होता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। इन्हें सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वो धान रोपते हैं और फिर जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। यानी ये त्योहार फसल लगने से लेकर वसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
0: अरे वाह। सर, मैंने सुना है कि इन तीनों अवसरों पर त्योहार के अलग अलग नाम हैं।
1: बिल्कुल ठीक कोमल। ये हैं रोंगाली बिहू, जिसे बोहाग बिहू या बैसाख बिहू भी कहते हैं।
0: ओह।
1: ये वसंत की शुरुआत और नव वर्ष का जश्न है, जिसमें नृत्य और संगीत शामिल होते हैं। दूसरा बिहू है कोंगाली बिहू। ये एक अधिक गंभीर अवसर है, जहां भरपूर फसल के लिए खेतों में दिया जलाकर प्रार्थना की जाती है।
0: अच्छा।
1: तीसरा बिहू भोगाली बिहू कहलाता है, जिसमें खान पान और उत्सव होते हैं।
0: मृगेन जी, आपने तो कोमल के सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत अच्छे से दिया। अब मेरा भी एक सवाल है।
2: जी।
0: मैं जानना चाहती हूँ कि बिहू शब्द कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है?
1: अंजला जी, बिहू शब्द की उत्पत्ति विशु से हुई है।
0: जी।
1: जिसका अर्थ है फसल के मौसम में ईश्वर से आशीर्वाद और समृद्धि मांगना।
0: बहुत सुंदर। मृगेन जी, इतनी रोचक जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आज एंजला और कोमल लंदन वापस जा रहे हैं। कोमल को अपनी माँ के काम पर गर्व है। उसने ठान लिया है कि वो भी मीडिया कार्यक्रम निर्मात्री बनेगी। जहाज जब बादलों को चीरता हुआ आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा, तो कोमल ने आंखें बंद कर ली और खो गई बिहू की सुखद स्मृति में। उसके मस्तिष्क में अब भी थी बिहू के सुंदर गीतों की गूंज।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम असम का प्रकृति पर्व बिहू।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की संरक्षा में ही हमारी सुरक्षा और खुशहाल जीवन का आधार है।
2: खुशी, खुशी जब पैदा हुई तो उसने अपने सारे घर में खुशियां बिखेर दी।

वो बचपन में इतना हंसती और इतना खुश रहती कि घर वालों ने उसका नाम ही खुशी रख दिया। उसको खेलने के लिए खिलौनों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उसके खिलौने थे चिड़ियों की चहचहाट, नदियों की कलकल कर बहने की आवाज। उसका खिलौना मानो पूरी प्रकृति थी।

बाग है, कितने सुंदर फूल हैं और पेड़ भी तो देखो कितने अच्छे हैं। देखो कितनी सारी तितलियां उड़ रही हैं, मुझे तो इन्हें देख के बहुत मजा आ रहा है। अरे चिड़िया तो अपने बच्चों को दाना खिला रही है।

0: जैसे जैसे खुशी बड़ी हो रही थी और समय निकल रहा था, खुशी की खुशी कहीं खो सी गई थी। आइए हम सब मिलकर खुशी की खुशी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। आखिर कहां गई खुशी की खुशी?
1: खुशी के पापा, पता ही नहीं क्या हो गया है हमारी खुशी बिटिया को। पता नहीं किसकी नजर लग गई है, आजकल बहुत परेशान सी रहती है।
2: कमजोर भी हो गई है,
1: कुछ खाती पीती भी तो नहीं है, कमजोर तो लगेगी ही।
2: ठीक कह रही हो तुम, पहले तो खुशी हरदम चहचहाती रहती थी, लेकिन अब तो, कल मैं बाजार से उसके लिए गुड़िया भी लाया था, मिठाई भी लाया था, लेकिन वो अब किसी भी सामान से खुश नहीं है।
1: समझ ही नहीं आता है क्या हो गया इसे।
2: सही कहती हो तुम, जरूर किसी की नजर लगी है मेरी खुशी को।

0: अरे हमारी बिटिया कहाँ है? अरे खुशी बिटिया कहाँ है भाई?
1: अरे भैया
2: नमस्ते नमस्ते मोहन।
0: अरे भाई हमारी खुशी बिटिया दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई?
2: खुशी बेटे
1: खुशी इधर आओ।
3: नमस्ते मामा जी।
0: अरे जीते रहो बेटे जीते रहो, शाबाश।
2: बेटा मामा जी आए हैं, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाए हैं।
0: हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया।
2: हाँ।
0: देखोगी एक मिनट कहाँ गया मेरा डब्बा, ये रहा। देखो बेटा ये तुम्हारी मनपसंद रेलगाड़ी है,
2: चुक चुक चुक
0: आई पसंद। और देखो ये भालू ये डमरू बजाता है, देखो देखो कैसे बजाता है। अरे ये तो भूल ही गया था, कितनी प्यारी सी गुड़िया है, परी की तरह लगती है ना। शाबाश। अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम तो बिल्कुल खुश नहीं हो। अरे जीजी आखिर हो क्या गया ऐसे, पहले तो ये ऐसी नहीं थी।
1: पता नहीं भैया, हम तो खुद ही बहुत परेशान हैं इसको लेकर, पता नहीं इसे क्या होता जा रहा है, हमेशा गुमसुम रहती है, परेशान रहती है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है।
0: जीजा जी पिछली बार जब मैं आया तो काफी खुश नजर आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ऐसे, इतनी कमजोर हो गई है।
2: मोहन जी हम खुद कुछ नहीं समझ पा रहे हैं।
0: तो आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाते इसे?
2: दिखाया था
0: तो फिर
2: वो कहते हैं कि नॉर्मल है।
0: हैं? कमाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। खैर कोई बात नहीं, इसके बारे में भी सोचेंगे। कोई बात नहीं बेटा। बेटा खुशी बेटा देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने, तुम एक काम करो इसे ले लो और अपने कमरे में जाओ।
3: नहीं चाहिए मुझे खिलौने विलौने, मगर मैं जा रही हूं।
0: अरे मगर बेटा ये खिलौने तो ले जाओ। अरे खुशी बेटा ओफो, चली गई बिना खिलौने लिए।
3: आंटी आंटी नमस्ते।
1: नमस्ते बेटा।
3: अंकल नमस्ते।
2: नमस्ते बेटा।
1: खुशी खुशी देखो ताशु आई है तुमसे मिलने।
3: क्या है मामा?
1: देखो ना ताशु आई है।
3: खुशी खेलोगे मेरे साथ?
4: नहीं ताशु आज मेरा खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
3: क्या हो गया, तुम तो मेरे साथ खेलते भी नहीं हो।
4: नहीं ताशु मेरा खेलने का मन नहीं है।
3: खेल लो प्लीज।
4: प्लीज ताशु मुझे नहीं खेलना है।
3: प्लीज
4: नहीं।
3: ठीक है फिर मैं मोनू के साथ खेल लूंगी।
4: ठीक है जाओ।
5: कुछ दिनों के बाद खुशी के पिता का तबादला हो जाता है और वो शहर छोड़कर वहां से दूसरे शहर चले जाते हैं जहां शांति थी। अगले दिन खुशी की आंखें नए शहर में खुलती हैं। सुबह सुबह जैसे ही खुशी के कानों में कोयल की आवाज आती है वो खुश हो जाती है। कोयल की आवाज सुनने भर से ही खुशी का चेहरा खिल उठता है।
6: वाह चिड़िया कितनी अच्छी है, तितलियां भी, ये भी बहुत अच्छी हैं, फूल फूल फिर से, वाह तोते तितलियां रंग बिरंगी लाल पीली हरी, वाह कितना अच्छा है नजारा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मम्मी मम्मी
1: क्या बात है, क्या हुआ खुशी?
6: मैं तो बाहर जा रही हूँ।
1: अरे
6: वहाँ देखो चिड़िया तोते कितने सुंदर हैं।
1: अरे सुन तो
6: नहीं, मैं तो जा रही हूँ।
1: अरे रुक तो सही, कहाँ जा रही है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
2: एक बात देखी तुमने?
1: हाँ।
2: यहाँ हम जब से आए हैं खुशी की खुशी वापस आ गई है, तो वो बहुत खुश रहती है।
1: सही कहते हो आप।
2: हे ईश्वर हे भगवान तुमने हमारी खुशी वापस लौटा दी।
5: अब खुशी के मम्मी पापा को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि खुशी की खुशी कहाँ चली गई थी। जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पर हर रोज पेड़ों की कटाई हो रही थी, नई कंपनियां लग रही थी, प्रकृति

0: ये खूबसूरती जाने कहां चली गई थी। सो खुशी की खुशी भी चली गई थी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशी बनी रहे तो खूब पेड़ लगाइए, वातावरण में खुशी रहेगी तो आपकी खुशी भी बनी रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम लौट आई खुशी की खुशी। अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, रेडियो डॉक्टर के नए अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल, स्वीकार करिए मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज का अंक फिर एक बहुत बेहद खास अंक हम लेकर आ गए हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन, बहुत ही महत्वपूर्ण पर आम समस्या है जिस पर हम आज बात करेंगे, और वो है किडनी स्टोन, यानी जो हमारे गुर्दे में जो पथरी होती है। वो बहुत आम हम सुनते हैं और उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग बोलते हैं। हम आमतौर पर जब एक दूसरे से बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे को बताते हैं कि अरे भाई ज्यादा पानी पी लो तो ठीक हो जाएगा, या ये मत खाओ वो मत खाओ, पर क्या हम सही एडवाइस एक दूसरे को देते हैं ये कई बार हम खुद भी नहीं जान पाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज एक स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए स्टूडियो में, उनसे हम सही तरह से जानें कि ये पथरी जो होती है, किडनी स्टोन होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसका कारण क्या है, बचाव क्या है, उपचार क्या है, और इससे जुड़े हुए जो मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं वो क्या है, ये भी बहुत जरूरी है जानना कि क्या मिथक हैं और क्या इसके तथ्य हैं। ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, आप प्रोफेसर एंड हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर RML हॉस्पिटल में। नमस्कार और स्वागत डॉक्टर हेमंत आपका।
2: धन्यवाद मैम, नमस्ते।
1: और जैसा मैंने बताया कि आज का विषय आप पुनः एक बार सुन लें, किडनी स्टोन्स मिथ्स एंड फैक्ट्स, गुर्दे की पथरी, इससे जुड़े हुए मिथक और इससे जुड़े हुए तथ्य, ये बात करेंगे हम आज डॉक्टर हेमंत गोयल से। और अगर आप इससे संबंधित कुछ पूछना चाहें बिल्कुल आपका स्वागत है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म रेडियो डॉक्टर का ये आप सबके लिए है। अगर आपके मन में घर बैठे कोई सवाल आ रहा है इस विषय पर तो बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, आप जुड़ जाइए हमारे साथ। और जुड़ने का तरीका जैसा हर बार हर दिन आप करते हैं, हमारी फोन लाइंस खुली हैं, हमारा मैसेज बॉक्स खुला है, मैं बस एक बार रिपीट कर देती हूं, हमारा फोन नंबर है 011-2342-1080 और दूसरा नंबर है 2342-1082। व्हाट्सएप करने के लिए हमारा नंबर है 9868107070। तो आप भी पूछें डॉक्टर साहब से, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम डॉक्टर साहब से बहुत सवाल करेंगे। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, किडनी स्टोन्स हम सुनते बहुत हैं, पर ये होता क्या है और क्यों हो जाता है, ये दोनों कारण में जानना चाह रहे थे।
2: देखिए, किडनी स्टोन ये होता क्या है, जैसे कि कोई, ये बेसिकली पथरी है, है ना। किडनी का काम है कि हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं दो तरीके से निकलते हैं मेनली, एक हमारे मोशंस में और एक यूरिन के थ्रू। तो हमारे काफ़ी वेस्ट प्रोडक्ट को जो बॉडी रेस्पिरेशन के थ्रू, या हम ईटिंग के थ्रू, या मिल, या हम लिक्विड के थ्रू जो हम लेते हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी किडनी निकालती है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो, अगर हमारी बॉडी का हाइड्रेशन ठीक है, अगर हमारी बॉडी में कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है कि वो पानी को निकालने में असमर्थ हो, तो वो पानी की तरह वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट निकल जाता है। अदरवाइज़ क्या होगा कि उसके अंदर, जैसे आप देखेंगे किसी भी नाले में, अगर वो पानी साफ़ है, नदी में पानी बहता है, तो उसमें पत्थर नहीं जमते। नाले में धीरे धीरे धीरे धीरे वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो जुड़ जाती हैं, पहले छोटी छोटी पथरी बनाती हैं, उसके बाद वो पथरी को बढ़ा देते हैं, धीरे धीरे सारी पथरियाँ जुड़ के एक बड़ी पथरी बन जाती है, और फिर जो यही यूरिन है उसको रुकावट कर देती है, तो किडनी का काम करने में रुकावट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है।
1: तो ये पता लगता है कि जिसको पथरी होती है कि मुझे इस तरह के कुछ, उनको लक्षण पता लगते हैं क्या डॉक्टर साहब?
2: देखिए, ये बहुत ही, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि लक्षण दो टाइम पे होंगे। एक होगा शुरुआत में, जब वो पथरी हमारी अटक रही है, ठीक है, तो उस टाइम पे लक्षण आते हैं ज़रूर कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है, ये सबसे कॉमन लक्षण है, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगा जब वो किडनी पथरी इतनी बड़ी हो गई है और उसने पूरी तरीके से यूरिन को रोक दिया है, तब आएंगे किडनी फेलियर के लक्षण। तो बीच में जनरली ये किडनी स्टोन साइलेंट होते हैं, तो ये डैमेज भी कर रहे हैं मगर पेशेंट को कोई लक्षण नहीं है। तो इसके लिए जब पेशेंट, जब परेशानी होती है, तो ये कर देना कि हाँ अब तो मेरा दर्द खत्म हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि दर्द खत्म हो गया मतलब स्टोन निकल गया, ऐसा नहीं है। तो आपको ये जरूरी देखनी है, अगर आपको पथरी है तो आप उसका फॉलोअप कराइए, नहीं तो बिना दर्द के ही आपकी किडनी को खराब कर देगी, तब पता चलेगा।
1: ओके, तो ये काफी सीरियस टर्न भी ले सकती है अगर ऐसा होता है, तो आप बिल्कुल जाएं, ऐसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं। पर जैसा आपने कहा कि बहुत छोटी जब होती है, जब शुरुआत होती है, क्या तब भी कुछ ऐसा अंदेशा हो सकता है कि इस तरह का हो रहा है मेरे साथ, कि बिल्कुल जब पेन के लेवल पर पहुंच जाता है तभी पता चलता है?
2: वही बात मैं आपको बता रहा था कि जो छोटी पथरी है उसमें सिम्टम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि छोटी पथरी हमारी किडनी से जो आगे एक नली होती है पतली सी, यूरेटर जिसे हम बोलते हैं, उसमें गिरने के चांसेस हैं। जब पथरी एक बार बड़ी हो जाएगी तो वो आगे नहीं गिरेगी, क्योंकि आगे की पाइप छोटी है, तो किडनी में फंस जाएगी। तो जब वो छोटी पथरी होती है शुरुआत में तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे ही वो यूरेटर में गिरेगी पेशेंट को पेन होगा, तो उसमें तो सिम्टम आ जाएंगे, मगर एक बार पथरी बड़ी हो गई
1: तो
2: फिर सिम्टम नहीं आएंगे, क्योंकि अब वो किडनी में ही बैठी है और किडनी में पेशाब रोक रही है और उसकी वजह से वो किडनी फूलती जा रही है और किडनी डैमेज हो सकती है। तो इनिशियल सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर ना करें। जिसको पेशेंट को पता होता है उसकी इसको दो साल पहले पथरी का दर्द हुआ था, बट फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं कि दो साल पहले हुआ था, फिर तो मैं ठीक हो गया था, मैंने कोई आयुर्वेदिक दवाई खा ली जिससे मैं ठीक हो गया। फिर वो दो साल बाद आता है कि जब पथरी बड़ी हो गई किडनी खराब हो गई। ये हमारे पास बहुत पेशेंट रहते ऐसे आते हैं, तो वो दो साल पहले के दर्द को इग्नोर ना करें, उसके बाद अल्ट्रासाउंड करके देखें निकली है नहीं निकली है, वो बहुत जरूरी है।
1: चलिए और भी बात करेंगे, बहुत सारे सवाल इस समय मेरे जहन में आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता भी कुछ जो उनके मन में चल रहा है वो जरूर आपके साथ शेयर करें और जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आज हम किडनी स्टोन्स पर विस्तार से बात करना चाहते हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ हैं, समय निकालकर डॉक्टर साहब यहाँ आए हैं, तो फायदा उठाइए और जरूर पूछिए आपके जो सवाल हैं। हम खास तौर पर इससे जुड़े हुए जो मिथ्स और फैक्ट्स हैं उस पर भी डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे, पर पहले एक सुंदर सा गीत सुन लें। चलिए ये गीत सुनते हैं, लौट कर आते हैं, आप सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर।

0: आप है रेडियो डॉक्टर में, बिल्कुल होश हवास में रहिए, लापता मत रहिए और हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आपके लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा लेके आता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक होता है। और आज इसी तारतम्य में हम आज किडनी स्टोन्स पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ हैं, आपके मैसेजेस मिलने शुरू हो गए हैं, कॉल्स पर भी हम वेट कर रहे हैं आपकी, अगर आप हमसे पूछना चाहें तो जुड़ जाएं। पर डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि आपने लक्षण थोड़े से बताए कि किस तरह किडनी स्टोन के लक्षण दिख सकते हैं या उसको पहचाना जा सकता है और किस तरह से उसको सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये सिर्फ उम्र दराज लोगों या वयस्कों में ही देखी जाती है समस्या, क्योंकि आमतौर पर जब हम बात करते हैं स्टोन्स की तो बड़े बुजुर्ग या मिडिल एजेड लोगों को मैंने ज्यादा सुना है बोलते हुए, क्या बच्चों को भी किडनी स्टोन हो सकता है?
1: तो अगेन ये सवाल, ये भी एक मिथ है कि ये बड़े लोगों को ही होती है, तो ऐसा नहीं है। जो हमारे पास सबसे कॉमन एज ग्रुप है जिसमें ये स्टोन के पेशेंट आते हैं वो 20 से 50 साल के बीच में आते हैं। तो ये किसी भी उम्र में हो सकते हैं, बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं स्टोन, मिडिल एज में भी दिखाई दिए जाते हैं और एल्डरली एज में भी देखे जाते हैं, पर सबसे कॉमन एज है 20 साल से 50 साल के बीच की उम्र की। तो सबसे कॉमन कारण तो यही है कि आदमी पानी कम पीते हैं या किसी प्रकार का फ्लूइड कम लेते हैं तो वो स्टोन्स बन जाते हैं किडनी के अंदर। तो बच्चों में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पानी नहीं पीते, तो या फिर वो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि पसीने बहुत आ रहे हैं बट पानी का इंटेक कम है। जैसे अगर आप राजस्थान देख लीजिए तो वो एक स्टोन बेल्ट बोली जाती है, क्योंकि गर्मी इतनी है, पसीने इतने आते हैं बट पानी का इंटेक उतना नहीं है, तो वहां पर जनरली स्टोन, बड़े बड़े स्टोन पाए जाते हैं। ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर पानी की हमारा पसीने इतने नहीं निकलते, ठंडे इलाके, तो वहां स्टोन कम पाए जाते हैं। तो मौसम के हिसाब से भी स्टोन की इंसिडेंस बढ़ जाते हैं, मगर सबसे कॉमन 20 से 50 साल की उम्र में होते हैं और वो किसी भी उम्र में पाए जाते हैं, पाए जा सकते हैं।
0: पर इसका कोई जेनेटिक रीजन भी हो सकता है कि पेरेंट्स को है तो चांसेस बढ़ते हैं कि बच्चों को हो जाए?
1: देखिए, जेनेटिक नहीं होता इसमें जनरली, इसमें मगर फैमिलियल बोलेंगे, जिस जो जो जो हेरिडिटरी फैक्टर इसमें है वो डाइट रिलेटेड है। जनरली देखिए, एक फैमिली में एक तरीके की डाइट ही फॉलो की जाती है। अगर आप गुजराती लोगों में देखेंगे तो वो कॉमन डाइट है, अब राजस्थानी में देखेंगे वो एक डाइट है, साउथ इंडियन होंगे तो उनकी डाइट सेम है। तो इट्स मोर रिलेटेड टू डाइट, की डाइट से कि वो डाइट तो वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, पानी का इंटेक भी वो वैसे ही लिया जाएगा, है ना। किसी की डाइट में जैसे हम जब जैसे इसमें बोलते हैं कि नमक का इंटेक, है ना, सोडियम अगर हमारी डाइट में ज़्यादा है तो ज़्यादा चांसेस हैं स्टोन बनने के। तो हम जो प्रिकॉशन पेशेंट को बोलते हैं कि पानी ज़्यादा पीजिए, सोडियम थोड़ा सा कम लीजिए, जैसे हम मसाले हो गए, चटनी हो गई, अचार हो गए, इसका इंटेक हम थोड़ा सा कम करें, ठीक है। उसके बाद आप कैल्शियम बंद मत करिए, कैल्शियम मॉडरेट कैल्शियम ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेंगे कैल्शियम इंटेक तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऑक्सेलेट कम करें, आप पेशेंट बोलते हैं ऑक्सेलेट क्या होता है, ऑक्सेलेट जैसे चोको पाउडर है, कोको पाउडर है, इन सब चीज़ों में ऑक्सेलेट लेवल ज़्यादा होते हैं। आजकल हर जगह AI आ गया है।

0: भी आप ये चीजें डालेंगे कि मुझे कैसी डाइट लेनी चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे से बता देंगे। तो वो डाइट में चेंज करने में बहुत समय लग जाता है, मगर
1: जी
0: मगर आप इनिशियली अगर हम आज भी ट्राई करेंगे 2-3 महीने में हम उसको अपनी हैबिट में लेके
1: बहुत अच्छे से मजबूत इरादा करना पड़ता है कि ये खाना है ये नहीं खाना है।
0: ये अगर मैं बचपन से मेरे घर में सब लोग अचार खा रहे हैं तो उसको छोड़ना भी 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में बहुत आसान चीज नहीं है। तो मगर जब आपको रिकरेंट आपको पता है कि ये इतना सीरियस ले सकती है मूड, तो फिर आपको जब उसकी अवेयरनेस आ जाएगी तो वो चीज़ छूट जाएगी।
1: जी, तो बेसिकली खान पान और पानी, ये दो चीज़ें इसके मेजर फैक्टर हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं।
0: साथ ही साथ अगर डायबिटीज़ भी एक बहुत मेजर फैक्टर है, वो भी फैमिली में चलता है। तो डिजीजेस जो फैमिली में चलते हैं उनमें इंसिडेंस स्टोन के ज़्यादा होंगे, पर से स्टोन जेनेटिक नहीं होता।
1: तो डायबिटीज़ अगर किसी को है तो क्या उसको पथरी भी होने के चांसेस?
0: बिल्कुल, ये बहुत कॉमन है और खासकर यंग एज में बहुत कॉमन है। हमारे पास जितने भी 20-30-40 साल के लोग आते हैं स्टोन के साथ, फर्स्ट टाइम स्टोन फॉर्मर, तो डायबिटीज़ बहुत कॉमन है, क्योंकि डायबिटीज़ में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस बॉडी में ऐसे होते हैं कि उसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। जैसे उसमें यूरिक एसिड स्टोन्स या कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन्स भी कॉमन, थोड़े इंसिडेंस ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ का कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये फैमिलियल होता है। तो आपको जिसको डायबिटीज़ है उसको स्टोन के चांसेस भी ज़्यादा है और उसको स्टोन की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा है।
1: तो उन्हें थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा,
0: ज़्यादा ध्यान देना
1: जी। और डॉक्टर साहब, जैसे आपने खान पान की बात बताई, कैल्शियम और ऑक्सलेट की बात बताई, जो ज़्यादातर सुना जाता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि जिन भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में बीज हों तो उसको नहीं खाना चाहिए, ये तो कितना ये मिथ है कि ये फैक्ट है?
0: ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, कि ये भी हमारे से पेशेंट बहुत कॉमनली पूछते हैं कि जिस भी चीज़ में बीज है तो उससे स्टोन बन जाते हैं। ये बिल्कुल मिथ है, कोई भी बीज हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होकर यूरिन में नहीं जाता।
1: ओके,
0: है ना, तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली मिथ है। और वो सब हमारा जो GI सिस्टम है, जो हमारा ओरल सिस्टम है, वो इतना अच्छा है कि जो भी यूजलेस चीज़ होगी उसको वो मोशन में निकाल देगा। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेनली इसमें जो आप क्या चीज़ खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब बहुत सारे यंग लड़के होते हैं जो जिम जा रहे हैं, उनको नहीं पता वो सप्लीमेंट में क्या ले रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं कि नहीं, हैवी मिनरल्स ज़्यादा ले रहे हैं कि नहीं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं कि हमारी बॉडी बन जाएगी, हमारी बोन स्ट्रांग हो जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे पानी ज़्यादा लेना है, कैल्शियम मॉडरेट इनटेक लेना है, नॉनवेज बहुत ज़्यादा नहीं लेना, मॉडरेट लेना है, एनिमल प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं। तो एनिमल प्रोटीन अगर ज़्यादा लेंगे तो उसमें फिर क्रिएटिनिन और ये सब चीज़ें ज़्यादा होंगी जिससे स्टोन बनने की टेंडेंसी होगी, मिनरल्स भी ज़्यादा होते हैं। तो आपको नॉर्मल एनिमल प्रोटीन लेना है। तो ये सारी ऑक्सलेट आपको नॉर्मल ऑक्सलेट लेना है या ऑक्सलेट रिस्ट्रिक्शन करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको डाइट में देखोगे कि मेरी डाइट में ये किस चीज़ में ज़्यादा है, और तब आप कम कर पाओगे। जो नॉनवेज खाता ही नहीं उसे मैं बोलूँगा नॉनवेज कम खाओ, तो खाता ही नहीं है, तो ये तो उसको खुद ही अवेयरनेस करनी पड़ेगी।
1: जी, और बहुत मुश्किल है जैसा आप बता रहे हैं, तो ईजी तो नहीं है कि ये सोचना कि मैं ये मॉडरेट खा रहा हूँ या मेरा एक्सेस हो रहा है, तो क्या कोई टेस्ट करा कर फिर आदमी उस हिसाब से करे? क्योंकि कई बहुत आम बात है आजकल लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेना, आयरन सप्लीमेंट लेना, कि अब चले 50+ हो गए हैं तो ये लेना शुरू कर दीजिए, ये कमी ही होगी, B12 ले लिया, विटामिन डी ले लिया, इट्स सो कॉमन, तो क्या ये भी नुकसानदायक हो सकते हैं?
0: तो देखिए मैम, क्या होता है कि हम अपनी डाइट में हम तोल के या ग्राम से तो खा नहीं सकते
1: जी।
0: तो डाइट तो हम वही लें जो हम ले रहे हैं, जिसकी हमें हैबिट है, हम उसमें माइनर चेंजेस कर सकते हैं। कि मैं अगर कोई हमें, जैसे एक बहुत बड़ी मिथ है कि दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, वो कहते हैं कैल्शियम होता है दूध में, दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध पीने से स्टोन हो जाते हैं, दूध में बहुत अच्छा लिक्विड कंटेंट है, इट इज़ वो बहुत न्यूट्रिशियस है, उसको पीने से कहीं से भी स्टोन नहीं होते। तो हमको पता होना चाहिए कि किस चीज़ से हो सकते हैं। अगर मैं कैल्शियम की टैबलेट ले रहा हूँ, तो अगर हमारी मेरी रिक्वायरमेंट डॉक्टर ने 2 दी है तो मैं 1 ले लूँ, मैं मॉडरेट अमाउंट लूँ, तो मुझे हमें पता है। अगर मैं कोई सप्लीमेंट ले रहा हूँ, बहुत हाई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहा हूँ, या मैं जिम जा रहा हूँ, तो मैं प्रॉब्लम यह है कि स्टोन हो गया, तो हम ये बनाते हैं कि हम प्रोटीन ले रहे हैं इस वजह से स्टोन हो गया, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हम इतना पसीना वहाँ पर बहा रहे हैं, उतना फ्लूइड इनटेक नहीं ले रहे, जिसकी वजह से स्टोन है। तो हर इंडिविजुअल को अपना ना खुद ही बॉडी लाइफ स्टाइल देखना पड़ेगा कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं, और फिर इसमें जो हेल्प कर सकते हैं डाइटिशियन हेल्प कर सकते हैं, कि डाइटिशियन बता सकते हैं कि आपकी आपका जो आप जो खा रहे हैं, आप 3 दिन का उन्होंने बोला कि आप क्या क्या खा रहे हैं आप बताइए, तो वो उसमें देख लेंगे क्या इसमें थोड़ा कैल्शियम कम कर दीजिए इसमें, तो वो डाइट का मॉडिफिकेशन बता सकते हैं। तो डाइटिशियन
1: आपको तरह से कस्टमाइज होना चाहिए,
0: कस्टमाइज होना चाहिए, आप जनरल नहीं बोल सकते, मगर हम मोटी मोटी ओपिनियन तो दे देते हैं पेशेंट को। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है और देखना चाहे तो वो डाइटिशियन को बता सकते हैं ये मेरी डाइट है, इसमें मुझे डॉक्टर ने बोला कि मॉडरेट कैल्शियम ऑक्सलेट कम होना चाहिए, और एनिमल प्रोटीन मॉडरेट होना चाहिए, मेरा फ्लूइड इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, तो वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट एक इंटेलिजेंट पेशेंट समझ जाता है कि सोडियम कैसे कम करना है, कैल्शियम मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लेना, मुझे एनिमल प्रोटीन ज़्यादा नहीं लेना, मुझे फ्लूइड इंटेक ज़्यादा लेना है।

0: बट घूम घुमा के सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लूइड इनटेक है. फ्लूइड इनटेक अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा है, हाइड्रेशन इतना कि आपका यूरिन साफ आ रहा है, आपका क्लियर यूरिन आ रहा है, मतलब आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा है, तो आपको स्टोन होने के चांसेस भी कम है. और अगर स्टोन हो जाते हैं तो वॉश आउट होने के चांसेस भी ज्यादा है.
1: तो कितना यूरिन इनटेक होना चाहिए?
0: यूरिन का देखिए, आपका फ्लूइड इनटेक जो है वो मौसम के हिसाब से है. आप किस किस जगह पे रह रहे हो,
1: मतलब वाटर इनटेक भी मौसम के हिसाब से,
0: मौसम के हिसाब से, क्योंकि जितना आपका आपका पसीना बहेगा, जितना वाटर लॉस हो रहा है उसके उसी हिसाब से होगा. अगर आप बहुत हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट में रह रहे हैं, या गर्मियों में हम बोलते हैं पेशेंट कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पिए, मगर यही सर्दियों में हम बोलते हैं 2.5 से 3 लीटर या 2.5 से 3.5 लीटर पानी एडिक्वेट है. इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब पानी पी रहे हैं, जब आप कम पानी पियेंगे तो यूरिन थोड़ा येलोइश आएगा. तो ज्यादा येलोइश आ रहा है मतलब आप पानी कम पी रहे हैं. अगर यूरिन आपका पानी की तरह आ रहा है मतलब आप पानी ठीक पी रहे हैं. उसके ओवर एंड अबव ज्यादा पानी पीने का कोई फायदा नहीं है.
1: अच्छा, तो ये अब सेल्फ चेक किया?
0: हाँ, ये सेल्फ चेक कर सकते हैं. यूरिन का कलर देख सकते हैं, वो पानी की तरह, तो आपका हाइड्रेशन अच्छा है.
1: ओके, हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं. हेलो.
2: हेलो, नमस्ते मैम.
1: जी नमस्कार.
2: नमस्ते डॉक्टर साहब.
0: नमस्ते जी.
2: हेलो.
1: हाँ, अपना नाम बताइए, आपकी आवाज हम तक आ रही है. अपना नाम बताइए, क्या पूछना चाहते हैं, फिर पूछिए.
2: मैम, मेरा नाम महेश है. मैम, मेरा भाई है, उनके पति है. मैम, तो कभी दर्द होता है तो इतना दर्द होता है कि उस टाइम हम खुद होपलेस से हो जाते हैं. उस टाइम मतलब क्या करना चाहिए कि दर्द थोड़ा राहत हो जाए, जैसे हॉस्पिटल दूर है तो फिर वहाँ तक थोड़ा राहत मिल जाए.
0: देखिए, ये बिल्कुल कॉमन गलती जो सब करते हैं वही आप कर रहे हैं. जब आपको पता है स्टोन है तो आप दर्द होने का वेट कर रहे हैं कि जब वो दर्द हो तो हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं. आज जब दर्द नहीं हो रहा तो आप इलाज क्यों नहीं करा रहे. तो यही गलती जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से जब आदमी का किडनी फेलियर हो जाती है तब उनको लगता है कि डॉक्टर ने नहीं बताया कि भाई हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए. आपको पता है आपके मरीज को स्टोन की प्रॉब्लम है, अब आप दर्द होने का वेट कर रहे हैं. तो यही तो वेट नहीं करना आपको. अब आज दिखाइए डॉक्टर को, वो अल्ट्रासाउंड कराएगा, सीटी स्कैन कराएंगे, बताएंगे आपके मरीज को इलाज की जरूरत है नहीं है.
1: जी, तो आपको समझ में आ गया, आपको लेके जाना है फौरन, है ना डॉक्टर साहब, और उनके फर्दर चेकअप्स कराने हैं, और जैसा डॉक्टर साहब बताएं उनको फर्दर ट्रीटमेंट कराना है. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए महेश जी. और ये एक हमें मैसेज आया है, ओम प्रकाश खंडेलवाल जी ने लिखा है उज्जैन से, कि यूरिन करने के बाद तुरंत क्या पानी पिया जा सकता है?
0: देखिए खंडेलवाल जी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. आप पानी और यूरिन मतलब को कोई रिलेशन नहीं है. आपको जब पानी पीना है तब पानी पीजिए. तो यूरिन की तो जब फ्रीक्वेंसी आएगी तो आपको जाना ही पड़ेगा, तो उसमें उसको आप टाइम नहीं कर सकते. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका यूरिन का कलर क्लियर होना चाहिए, तो आप पानी ठीक पी रहे हैं.
1: जी, देवदत्त पारसोलिया जी लिख रहे हैं प्रताप विहार गाजियाबाद से. नमस्कार. और डॉक्टर साहब, अच्छा लग रहा है कार्यक्रम, आपके द्वारा बताई हुई जानकारी हमें अच्छी लग रही है, तो बहुत धन्यवाद. यही बात हमें लिखकर भेज रहे हैं हितेंद्र दास जी आसाम से. कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप सही जगह पर मैसेज कर रहे हैं. अगर कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमें भेजिए. और जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें निरंतर सुनती हैं और लगभग प्रतिदिन प्रश्न पूछती भी हैं. धन्यवाद जोया जी. ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर बिकॉज I feel thirsty and then go to pass urine frequently. Do that impact kidney? एक ही उनका क्वेश्चन है. और when I'm unable to go to toilet as stuck in traffic jam, do give a bit of pain in my right kidney. Is that alarming?
0: देखिए जोया जी, इसमें ना दो सवाल हैं. एक तो है कि आपको प्यास बहुत लगती है और आप यूरिन बहुत भर जाते हैं.
1: जी.
0: तो देखिए सीधी सी बात है, जब हम पानी ज्यादा पियेंगे तो यूरिन भी ज्यादा जाएंगे. तो वो तो डायरेक्टली रिलेशन है. अगर 10 लीटर पानी पीऊंगा तो 8 या 9 लीटर यूरिन आएगा, है ना. 8-9 लीटर के लिए मतलब हर आधे घंटे में जाना पड़ेगा अगर आप टाइम के हिसाब से लगाएं तो. तो अब आपको थोड़ा सा इसमें एक कंसर्न ये है कि प्यास इतनी क्यों लगती है. उसके दो कारण होते हैं. या तो किसी को आदत हो गई है ज्यादा पीने की, जिसको हम साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, कि अब आदत हो गई है कि मुझे ज्यादा पानी पीना है ना. दूसरी चीज होती है कि कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें प्यास बहुत लगती है. सबसे कॉमन बीमारी डायबिटीज है. डायबिटीज में प्यास भी ज्यादा लगती है और यूरिन भी ज्यादा आता है. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेकअप करा सकते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है कि डायबिटिक हैं आप या प्री डायबिटिक हैं जिसकी वजह से आपको प्यास ज़्यादा लगती है. दूसरी बात जो आपने बोला कि अगर आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं और आपको उस टाइम पे आप यूरिन नहीं जा पा रहे किसी वजह से, तो आपकी किडनी में तो नहीं मगर ब्लैडर में जरूर पेन होगा, क्योंकि वो ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ जाएगी. तो ये बड़ा अनलाइकली है कि किडनी में पेन हो, मगर आपका जो नाभि का एरिया उसके नीचे आपको पेन हो सकता है, क्योंकि आपका पेशाब की थैली ब्लैडर जिसे हम बोलते हैं वो यूरिन से भर गई है. तो उस वहाँ पर पेन हो सकता है. तो उसका तो यही है कि अगर यूरिन पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो यूरिन ज़्यादा बन रहा है. ब्लैडर जो हमारा स्टोरेज है उसमें स्टोर हो रहा है, उसकी कैपेसिटी है. उस कैपेसिटी से जब वो भर जाएगा ज़्यादा तो पेन होगा.
1: पर इन्होंने ये भी लिखा है डॉक्टर साहब कि कभी ज़्यादा देर हो जाती है तो राइट साइड में किडनी में पेन होता है.

0: ऐसा बड़ा अनलाइकली है, कभी कभी ब्लैडर का पेन रेफर कर सकता है राइट साइड में, बट थोड़ा सा सुपरा पिबिक पेन ज्यादा कॉमन है ऐसी कंडीशन में।
1: अच्छा, फिर भी एक बार दिखाएं तो,
0: एक बार दिखाना तो चाहिए, क्योंकि पानी ज्यादा पीना और यूरिन ज्यादा, पानी ज्यादा पीने के साथ तो यूरिन ज्यादा आ सकता है, बट पानी ज्यादा क्यों पी रहे हैं उसके लिए चेकअप कराना चाहिए
1: जी। और एक ये हमारे पास प्रश्न है दिनेश शर्मा जी का, शिमला झुंझुनू राजस्थान से, कि मेरी पुत्रवधु के कुछ साल पहले पथरी का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि वापस पथरी बन जाती है, क्या हर साल अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, और अगर हम हर साल कराएं तो इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है अल्ट्रासाउंड का?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। ये भी एक मिथ है कि एक बार पथरी निकल जाती है तो फिर वो वापस नहीं आती। देखिए, कम से कम जिसको पथरी बन रही है उसको 50% चांस है कि उसको लाइफ में फिर से पथरी बनेगी।
1: अच्छा, क्यों, तो ऐसा क्यों है?
0: क्योंकि उनकी ना डाइट चेंज होती है,
1: अच्छा,
0: ना उनका पानी पीने का ये चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है, और जो उनको टेंडेंसी,
1: बॉडी टेंडेंसी,
0: जो टेंडेंसी से उनको बना था वो तो करेक्ट नहीं किया, वो वैसे ही जी रहे हैं, वैसे ही खा रहे हैं, वैसे ही पी रहे हैं, तो इसलिए देखा गया जिनको पथरी बनती है उनको 50% फिर से लाइफ टाइम में पथरी बनेगी। तो इसके लिए जिनको पथरी बनी है कम से कम उन लोगों को हर साल अल्ट्रासाउंड का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो हर साल कम से कम अल्ट्रासाउंड करा लें तो पता चल जाएगा पथरी जब बनी, इनिशियल फेज में पता चल जाएगी पथरी बन गई। तो जिनको स्टोन का ट्रीटमेंट हुआ उनको पक्का कराना है। प्लस मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो पेशेंट हमारे पास, बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भाई मैंने तो आयुर्वेदिक दवाई ले ली और उससे मेरी पथरी निकल गई, है ना, तो ठीक है आपको डॉक्टर ने बोला बिना अल्ट्रासाउंड किए कि पथरी निकल गई, ये बहुत गलत है। कि आपको कोई भी दवाई दे, हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में बिलीव करते हैं हम भी, तो आपको दवाई दी आपकी, उन्होंने बोला पथरी निकल गई, फिर भी अल्ट्रासाउंड करा के उस चीज़ को आप वेरीफाई कराइए पथरी निकली या नहीं निकली। 90% केसेस में पथरी नहीं निकली होती और पेशेंट को बाद में पता चलता है जब वो बहुत लेट हो चुका होता है
1: जी। और इसका कोई और ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जैसे कि होम्योपैथी, और अभी हम ऑल्टरनेट मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं, होम्योपैथी में भी क्लेम किया जाता है, आयुर्वेदिक में भी क्लेम किया जाता है, तो इस तरह से क्या एलोपैथी में भी कोई दवाई है या सिर्फ सर्जरी ही एक सोल्यूशन है?
0: मैम देखिए, इसमें फिर दो चीज़ें, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर पथरी का इलाज करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी लोगों में मिथ है कि भाई किडनी स्टोन में अल्ट्रासाउंड में पथरी आ गई अब तो ऑपरेशन होगा, ऐसा नहीं है। जनरली 6 mm से छोटी पथरी, जो हमारे पास जितने भी, अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 50% पेशेंट में 6 mm से छोटी पथरी होती है जो इंसिडेंटल अल्ट्रासाउंड पे मिल जाती है। मैं भी अपना अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, क्या पता उसमें 3-4 mm की पथरी आ जाए। तो 6 mm से छोटी पथरी को जनरली अगर वो अड़ नहीं रही, वो रुकावट नहीं कर रही, बहुत छोटी पथरी भी कभी कभी रुकावट कर सकती है मगर जनरली नहीं करती, तो उस केस में उनको हमें ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। उस केस में हम उनको दवाइयों से, एल्कलाइजर से, अपनी डाइट से, अपना लिक्विड इनटेक से वॉश आउट कर सकते हैं। किडनी का, बॉडी का भी अपना नॉर्मल मैकेनिज्म होता है छोटी छोटी पथरी को निकाल देने का, वो निकल जाता है। हम उन पेशेंट को बोलते हैं आप मॉनिटर करिए, कोई दर्द हो तो आइए, नहीं तो 3 से 6 महीने बाद अल्ट्रासाउंड रिपीट करिए, बहुत चांसेस है ये निकल जाएगी। सिर्फ बड़ी पथरियों के लिए हमें ऑपरेशन करने की जरूरत है या जो पथरी फंस रही है, तो उसमें भी अलग अलग तरीके के ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिव इंटरवेंशन है। तकरीबन 2 cm से छोटी पथरी का बिना ऑपरेशन के भी इलाज कर सकते हैं
1: जी। तो अलग अलग किस तरह से सर्जरी की जाती है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारा मैसेज बॉक्स भी खुला है, 9868107070 पर आप लिख सकते हैं, कुछ पूछना हो तो फोन कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स वही हैं 2342-1080, 2342-1082। दिल्ली के बाहर से अगर आप हमें डायल कर रहे हैं तो 011 जरूर लगाएं।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 पर, साथ ही साथ आकाशवाणी के प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी ये कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप सुन रहे हैं। और हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम फोन लाइन पर हैं। हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, सतीश गाजियाबाद से।
1: जी सतीश जी, बताएं क्या।
2: मैंने रेडियो अभी खोला है।
1: जी जी, आपको विषय पता चल गया है ना।
2: हाँ, मैं उसी विषय पे ही बात करूंगा।
1: जी बताएं।
2: एक्सपर्ट कहते हैं कि ओल्ड एज में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, ये नॉर्मल चीज है। तो क्या अगर किसी को यूरिन की प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो भी नॉर्मल आ रहा है, तो उसको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में कोई मेडिसिन की जरूरत है?
3: थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वैसे हम रीनल स्टोन्स की बात कर रहे हैं, बट अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो उसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और हमारे साथी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो
4: हेलो
1: जी, नमस्कार।

0: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी प्रश्न पूछे राजेंद्र जी।
0: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को शालीनता से ही नमस्कार,
1: जी नमस्कार,
0: और डॉक्टर साहब को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
2: नमस्ते जी।
0: डॉक्टर साहब, मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल तो है कि आज से ना 6 महीने कबल मेरी डाइट जो है 24 घंटे में मैं यही कोई 10 फुलके खा जाया करा, 2 फुलके सुबह, 4 दिन में, 4 शाम को। पर अब मैं दिन में 24 घंटे में सिर्फ 2 या 3 ही फुलके खा पा रहा हूँ, और मेरे पेट में ना मतलब गैस बहुत बनती है और पेट भारी भारी हैवीनेस रहती है और जलन गर्मी भी पेट में होती है। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि भाई पेट में तो कई पार्ट्स में जो है वो पथरी हो सकती है, तो क्या ये किडनी स्टोन के
2: देखिए,
0: सिम्टम हो सकते
2: ये
0: हैं?
2: किडनी स्टोन का सिम्टम नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडनल अल्सर के सिम्टम हैं, तो पेट में जो छाले हो जाते हैं, तो आपको इसके लिए मेडिसिन या गैस्ट्रो में दिखाना पड़ेगा। ये किडनी स्टोन के सिम्टम नहीं है।
0: ये है कि किडनी स्टोन से क्या थायराइड या टॉन्सिल का कोई कनेक्शन है? थायराइड
2: किडनी स्टोन का
0: थायराइड किसी को है टॉन्सिल, तो उसका
2: देखिए,
0: किडनी स्टोन से कोई
2: किडनी
0: रिलेशन है?
2: जनरली डायबिटीज से होता है और पैराथायरॉयड से होता है। एक एक एक ऑर्गन होता है थायराइड के पीछे, पैराथायरॉयड, तो वो जिसमें बढ़ जाता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टोन के चांसेस होते हैं, मगर थायराइड से जनरली डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि पेन, जैसा ये भी बता रहे थे अभी कर्णपुरा से राजेंद्र जी, कि इनको अनइजनेस हो रही है, हैवीनेस हो रही है। कई बार ये भी देखा जाता है कि पेन हो रहा है, आपने बताया है कि पेन होता है जब स्टोन होता है, और कुछ लोग जो है पेन किलर खा लेते हैं, उनको ये लगता है पेन हो रहा है, पेन किलर खा लेंगे हमें आराम मिल जाएगा, या उन्हें पता नहीं लगता कि इसके लिए मुझे जाना ही चाहिए। तो पेन किलर इस तरह से कोई हैबिचुअल खा रहा है जब पेन होता है, तो कितना हार्मफुल हो सकता है?
2: मैम देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को पता होना चाहिए कि जो भी दवाई वो खा रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। अगर देखिए, कोई भी दवाई हम 2-3 दिन के लिए खा रहे हैं तो जनरली वो रिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट है, वो दिक्कत नहीं है। बट कोई भी दवाई आप लंबे टाइम के लिए खा रहे हैं या आपको बार बार खाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, पेन किलर आपका दर्द तो कम कर देंगे, मगर आपको पता होना चाहिए कि थर्ड कॉमन कॉज रीनल फेलियर का पेन किलर इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी है। तो जो लोग ये ब्रूफिन या पिंक कलर की दवाइयाँ खाते हैं कि भाई मेरे को दर्द होता है मैं तो दवाई खा लेता हूँ, तो ये तीसरा सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है। लाखों से ऊपर लोग हैं जिनकी पेन किलर खाने की वजह से किडनी फेलियर होती है, और एक किडनी नहीं, दोनों जाती हैं। जब जाती हैं तो
1: अच्छा,
2: उनको डायलिसिस पे आना पड़ता है या ट्रांसप्लांटेशन पे आना पड़ता है। तो बड़ी मेजर चीज़ है। आप किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो उनको पता है, बताएंगे कि सबसे दो चीज़ें वो पूछते हैं कि आप बार बार दवाई, दर्द की दवाई तो नहीं खाते थे, और आपने कोई आयुर्वेदिक दवाई तो नहीं खाई पेन किलर के लिए? जो चूरन वूरन होते हैं इसमें बहुत हैवी मिनरल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं सॉरी, तो उन हैवी मेटल्स से एक्चुअली जो तो कोई आप दवाई लें उसके बारे में आपको कहीं लिटरेचर पता होना चाहिए कि आप ये 6 महीने के लिए दवाई खा रहे हैं, तो ये उन दवाइयों में इतना हैवी मेटल्स होता है कि जिसकी वजह से पेन आपकी किडनी फेल हो जाती है। और ये बहुत कॉमन हम देख रहे हैं यंग बच्चों में, 25 साल 30 साल के बच्चे, उनकी एक हिस्ट्री होती है, मैंने किसी जो झोला छाप टाइप डॉक्टर से मैंने दवाई ले ली थी, पेन आयुर्वेदिक डॉक्टर हो गया, वो एक्चुअली आयुर्वेदिक नहीं है, उन्होंने बस कहीं से सीख लिया और उन्होंने कुछ दवाई दे दी। तो प्रॉपर मेडिसिन में हर चीज़ रिसर्च के साथ होती है, चाहे वह आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना रिसर्च की वाली दवाई दे देते हैं, लोग खा लेते हैं, किडनी फेलियर के साथ आ जाते हैं। तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, पेन किलर का रेगुलर यूज़ ना करें। वो पेन किलर सिर्फ इमरजेंसी के लिए कि कभी आप घर बैठे हैं और आपको पेन ज़्यादा दर्द हो गया तो आपने दवाई खाई और डॉक्टर के पास चले गए।
1: जी, ये बहुत ज़रूरी बात है। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
3: हेलो,
1: जी, आप रेडियो
3: हाँ
1: डॉक्टर
3: जी,
1: में जी नमस्कार।
3: नमस्कार जी,
1: जी
2: नमस्ते
3: डॉक्टर साहब, नमस्कार।
2: हाँ नमस्ते जी
3: डॉक्टर साहब, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, अपने आप से कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि स्टोन की वजह से करवाया था, तो मेरा अल्ट्रासाउंड में निकला कि आपका यूरिन का रिटेंशन हो जाता है PVR, मतलब
2: देखिए,
3: क्योंकि एक बार में यूरिन नहीं निकलता, थोड़ा रह जाता है।
2: स्टोन तो आपको नहीं है, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है?
3: यूरिन का रिटेंशन हो जाता है एक बार में, नहीं होता
2: नहीं,
3: क्लियर।
2: अगर आपको सिम्टम है तो डॉक्टर को दिखाने चाहिए। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे अगर यूरिन रुक रहा है अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर नहीं है। किसी को 100 ml रुक सकता है, किसी को 50 ml रुक सकता है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं। जब तक आपको परेशानी ना हो कि आपका यूरिन धीरे धीरे हो रहा है, आपको बार बार जाना पड़ रहा है, रात में 3-4 बार उठना पड़ रहा है, फ्लो कम है, आपको स्ट्रीम पुअर है, ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर को दिखाना है। अदरवाइज सिर्फ प्योरली अल्ट्रासाउंड पर अगर PVR बढ़ा हुआ है तो उसमें जनरली कोई भी डॉक्टर आपको कोई बोलेगा कि आप ठीक हो।
3: थैंक यू,
2: ठीक है जी
1: जी

0: ये हमारे पास एक मैसेज है, वैसे ये स्टोन से रिलेटेड तो नहीं है, आप देखें अगर आप जवाब देना चाहें तो। ये 49 ईयर्स की हैं सुमन देवी, और ये लिख रही हैं कि मेरी मम्मी का नाम सुमन देवी है और उनको किडनी में मल्टीपल सिस्ट हैं, और इनको एक बताया है एडीपी केडी पीकेडी शायद बताया है डॉक्टर ने, तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं इसके लिए?
1: देखिए, इसमें आपको जो मल्टीपल सिस्ट और एडीपी केटी बताया, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग जो डॉक्टर ने बता दिया होगा कि इसमें पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, तो इसमें ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करनी है। अदरवाइज ये सिस्ट कभी भी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती, तो आपको एक रेगुलर फॉलोअप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास रहना चाहिए, जो अभी ये नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी का मेडिकल वाला इलाज करते हैं। तो इसमें सर्जरी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट है आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर जरूर करिए कि कल को हाइपरटेंशन बनती है तो ये किडनी डैमेज हो सकती है, अदरवाइज ये ठीक चलेंगी।
0: जी, हमारे एक साथ हमारे एक कॉलर हैं। हेलो
2: हेलो,
0: जी, नाम बता दें।
2: नमस्कार सर, डॉक्टर
0: जी
2: साहब
0: नमस्कार।
2: को भी नमस्कार।
1: नमस्ते
0: जी
1: जी।
0: जी
2: सर, ये जो इसका किडनी का जो ऑपरेशन होता है, ये आजकल कते रोबोटिक या एआई से ये पॉसिबल है? और दूसरा जो है, ये जैसे किसी को ट्राइजमिनल न्यूरोलॉजिया है, वो उसको तो बिना पेन किलर खाए हुए रह ही नहीं सकता हूँ होल लाइफ।
1: देखिए, ट्राइजेमल न्यूरालजी या न्यूरोजेनिक पेन होगा तो उसके लिए उस वो वाली दवाई पेन किलर दिए जाएंगे जो किडनी को डैमेज नहीं करते। सारे पेन किलर किडनी को डैमेज
2: जैसे
1: नहीं।
2: ये ऑक्सीटॉल वगैरह, ऐसे वो कुछ कुछ
1: हाँ,
2: दो तीन टाइप की दवाई
1: तो जब
2: देते
1: भी
2: हैं
1: डॉक्टर
2: तो।
1: आपको देते हैं ना लंबे टाइम के लिए, तो वो ऐसी दवाई देते हैं जिससे किडनी डैमेज ना हो, है ना। मैं आपको उन पेन किलर्स की बात कर रहा हूँ जैसे वोवरॉन हो गए, जो कॉमन पेन किलर्स हैं वो किडनी को डैमेज कर सकते हैं। बट ट्राइजेमल न्यूरालजिया हो गया या आपको गाबापेंटिन दे रहा है कोई, तो वो वाले पेन किलर हैं जो किडनी को डैमेज नहीं करते। तो हमेशा न्यूरोलॉजिस्ट आपको वही दवाई देगा, है ना। कोई भी डॉक्टर आपको 6 महीने के लिए पेन किलर ऐसा नहीं देगा जिससे आपकी किडनी डैमेज हो जाए। दूसरा सवाल क्या था आपका?
0: नहीं अभी
2: ये
0: हाँ
2: जो सिस्टर के 13 mm की पथरी है
1: हाँ
2: किडनी
1: हाँ
2: में, तो वो रोबोटिक से होगी क्या?
1: हाँ तो
2: ये
1: जी,
2: आरजी स्टोन में दिखाया था, तो
1: देखिए देखिए, अब
2: वो
1: मैं
2: तो
1: समझ
2: इतना
1: गया।
2: पैसा मांगते हैं, इतना
1: हाँ,
2: पैसा मांगते हैं, 2-2.5 लाख इतना हम दे नहीं
1: देखिए,
2: सकते।
1: आज की डेट में जो नई थेरेपीज आ रही हैं, है ना, मेडिकल में जो ऑपरेटिव थेरेपीज आ रही हैं समय समय के साथ, पहले जो हम ऑपरेशन करते थे, समझ लीजिए अगर हमारे को कोई 1-10 हज़ार का खर्चा आता था, तो आजकल लाख रुपए का खर्चा आता है। तकनीक, बेहतर तकनीक आ गई है, वो महंगी भी है, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ गए हैं। ठीक है, अब कौन कहाँ पर कितना पैसा मांगता है वो तो हम यहाँ पर हमारा डिस्कशन नहीं है, मगर ट्रीटमेंट महंगे हो गए हैं क्योंकि अभी हर चीज़ भी महंगी आ रही है। कि अगर आपका जहाँ तक आपका सवाल है, रोबोटिक इसमें नहीं होता मगर एंडोस्कोपिक होता है, जैसे लेज़र या RIRS जो टेक्निक बोलते हैं उसको लेमैन में रोबोटिक बोल देते हैं, बट रोबोट का एक्चुअली इस्तेमाल इन स्टोन की सर्जरी में नहीं होता, वो किसी और सर्जरी में होता है।
0: जी धन्यवाद कॉल करने के लिए। और सर्जरी की बात चल रही है तो हम ट्रीटमेंट पे बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब, कि इसका ट्रीटमेंट के लिए किस किस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये तो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि किसको क्या है। जैसे ये बोल रहे हैं एआई है, या आपने बताया एंडोस्कोपिक ही होता है, बट होते क्या क्या हैं उसमें?
1: देखिए, जो पहला सवाल है कि किस पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपके अल्ट्रासाउंड पर स्टोन आ गया तो मतलब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, ऐसा नहीं
0: जी
1: है।
0: जी
1: तो बहुत छोटे स्टोन होंगे या फिर जो स्टोन नहीं अड़ रहे तो उनको हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उनको हम बस आपका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 3 से 6 महीने में उसको ट्रीट कर सकता है। अब जब पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ट्रीटमेंट में 3 तरीके के ट्रीटमेंट मेनली इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, जो हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं बिना ऑपरेशन वाली, जिसको हम एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, ESWL, वो एक ट्रीटमेंट है जो 2 सेंटीमीटर से कम स्टोन में, अब ये बात नहीं है कि 2 सेंटीमीटर सब 2 सेंटीमीटर के कम स्टोन में हम ESWL दे देंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट भी है, मशीन से बिना ऑपरेशन के हम स्टोन तोड़ सकते हैं। एक तो वो ट्रीटमेंट है। एक ट्रीटमेंट है कि जो हम कमर से एक छोटा सा इंसीजन लगा के 0.5 सेंटीमीटर का, जिसको PCNL बोलते हैं, उसमें किडनी में कितने भी बड़े स्टोन हो वो हम निकाल सकते हैं। तो और तीसरा ट्रीटमेंट है जो आपके नॉर्म इंसीजन के बिना बोलते हैं, कि वहाँ पर हम अगेन 2 सेंटीमीटर के जो छोटे स्टोन है जो ESWL से नहीं टूट सकते, वो हम RIRS के थ्रू, उसमें कोई इंसीजन नहीं लगता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका आपका आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है कि एक अच्छा यूरोलॉजिस्ट ढूंढने में, जो ये सारी टेक्निक जिसके पास हैं, और लेट हिम चूज, उसको चूज, आपने आपकी रिपोर्ट देख लिया, अब उसको देखने दीजिए, आप उनसे पूछिए आपके पास ESWL भी है, RIRS भी और PCNL भी है, अगर उनके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप उन पर छोड़ दीजिए कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। अगर आप बताएंगे कि मैंने AI से पढ़ लिया कि मेरे को तो ये ट्रीटमेंट करना है, तो वहाँ डॉक्टर पे छोड़ना चाहिए, बट हाँ उसके बाद ऑप्शन सारी होनी चाहिए। मैं एक जगह बैठा हूँ जहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, तो फिर तो मैं पेशेंट को एक ही ऑप्शन दूंगा। आपका काम है ये देखना कि हाँ इनके पास सारी ऑप्शन है, उसके बाद ट्रीटमेंट उन्हें डिसाइड करने दीजिए।
0: जी बिल्कुल। और ये मैसेज हमें किया है मोहम्मद इम्तियाज़ जी ने, सलमा बेग

शुभम जी ने जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं। गुड आफ्टरनून शाली मैम एंड डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से अगर पित्त की थैली में स्टोन होता है तो क्या सिर्फ सर्जरी ही इलाज है, और स्टोन अगर किडनी में है और दर्द भी नहीं है तो उसको क्या सिस्टम हो सकता है, अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया हो? तो ये सारी बातें हमने अभी कवर कर ली हैं मेरे हिसाब से। अगर आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं तो ये काफ़ी चीज़ें

0: डॉक्टर साहब ये बताइए कि एक जो प्रश्न था वो मेरे दिमाग में भी था कि एक बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, जब पुरानी बात करें खान पान से लेकर रहन सहन, बच्चों का एक स्टाइल डिफरेंट हो गया है। उसी तरह की एक बात हमारे एक श्रोता भी पूछ रहे हैं कि पहले बहुत कम सुनने में आता था खान पान जो समय था, या जो सारे लोग मेहनत करते थे चलते थे तो पथरी कम सुनने में आती थी। अभी आजकल क्या फास्ट फूड का ज़माना है इसलिए पथरी ज़्यादा सुनने में आ रही है, ये पूछना चाह रहे हैं नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार
1: देखिए,
0: उत्तराखंड से।
1: दोनों ही बातें ठीक हैं कि आज की डेट में खान पान तो ख़राब हुआ ही है। वो सब हर चीज़ देखिए, समय के साथ साथ चीज़ें अच्छी से, पहले जो हमारा देसी लाइफ स्टाइल था वो डेफिनेटली बहुत अच्छा था। हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं गांव से और 80 साल में भी हट्टे कट्टे होते हैं और मुझे पूछते हैं हम क्या खाएं। मैं हम तो उनको ये बोलते हैं जो खा रहे हो वो खा लीजिए, हमारे लिए भी थोड़ा ले आइए, क्योंकि वही ठीक है, जो हम खा रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो लाइफ स्टाइल में चेंजेस तो हैं, ठीक है ना। मगर आप जो एक दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि एक और इसका एंगल है कि पहले इतने अल्ट्रासाउंड ही नहीं होते थे, इतनी इमेजिंग ही अवेलेबल नहीं थी गाँव में, तो लोगों को पता भी नहीं चलता था स्टोन हो रहे होंगे, मगर क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही नहीं हो रहे तो वो इंसिडेंस कम लगता है। तो क्योंकि आज की डेट में दो तरीके से स्टोन बढ़ गए हैं, एक तो हम बहुत अल्ट्रासाउंड बहुत ईजिली अवेलेबल हो गए, कोई भी अल्ट्रासाउंड जाके करा सकता है, उसको पता चल जाता है स्टोन, तो नंबर ऑफ केसेज बढ़ गए। और दूसरी चीज़ है लाइफ स्टाइल डेफिनेटली ख़राब हुआ है, पिज़्ज़ा और ये सारी चीज़ें, हम ज़्यादा नमक की और पानी के इंटेक बहुत कम हो गया, बच्चों को याद ही नहीं रहता कि यार, हमको भी याद नहीं रहता था बहुत टाइम पहले तक जब हम पढ़ते थे कि कब हमें पानी पीना है, हम सुबह जाते थे शाम तक पढ़ते रहते थे और पानी का इंटेक कम होता
0: जी
1: था।
0: जी जी
1: तो
0: और
1: ये
0: सॉल्ट, जैसे आपने कहा
1: हाँ
0: सॉल्ट भी रीजन हो सकता है, तो वो सॉल्टी
1: हाँ
0: फूड्स
1: और
0: ज्यादा लेते हैं
1: कॉलेज,
0: आज।
1: आप एक बार घर से बाहर निकलते हैं कितने स्टूडेंट्स को आदत है पानी की बोतल कैरी करने की, हार्डली 5% होंगे, 95% सिर्फ ऐसे ही निकल जाते हैं बैग लेके। तो वो हैबिट होनी चाहिए कि आप अपनी पानी की बोतल कैरी कर रहे हैं और बीच बीच में हाइड्रेशन मेंटेन रखें।
0: जी, जैसे पहले सिखाया जाता था कि निकल रहे हैं बाहर तो पानी पी के निकलो, घर आ रहे हैं तो पियो, तो वो शायद कुछ आदतें ऐसी हैं जो अगर हम दोबारा से शुरू कराएं घर में
1: हाँ,
0: बच्चों
1: कहीं ना
0: को।
1: कहीं मतलब आप देखिए, कॉलेज स्टूडेंट ने कोई पानी की बोतल ले जा रहा है तो वो एक तरीके से उसको एक सिंबल आ रहा है कि ये तो अच्छा स्टूडेंट नहीं है, पानी की बोतल ला रहा है, टिफिन ला रहा है, तो ये नेगेटिव हो गया
0: नेगेटिव नेगेटिव
1: ये।
0: हो रहा
1: अरे
0: है
1: पहले ये पॉजिटिव होता था
0: जी,
1: कि अपनी
0: बिल्कुल
1: पानी की बोतल ला रहे हैं, अपना टिफिन ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल में चेंजेस तो हैं।
0: जी। अच्छी हैबिट्स को हम अगर कोशिश करें कि बढ़ावा दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और जैसे स्ट्रेस की भी बात करते हैं, स्ट्रेसफुल बहुत लाइफ है, लोग अननेसेसरी स्ट्रेस भी लेने की आदत पड़ चुकी है, तो क्या स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं बॉडी में रिएक्ट करता है और स्टोन को बनाने में मदद करता है?
1: देखिए, ओवरऑल तो बॉडी की हेल्थ को ख़राब करता ही करता है स्ट्रेस। कि अगर आप देखें कि जिसको टेंशन लेने की ज़्यादा आदत है, वो दैट इज़ वो हमारे लिए भी एक डिफ़िकल्ट मरीज़ होता है, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत वो उसको ट्रीटमेंट भी पूरी तरीके से नहीं लगता। एक हैप्पी पेशेंट जो हमारी बात समझ रहा है और स्ट्रेस कम ले रहा है तो उसको ट्रीटमेंट भी अच्छा लगेगा, बट डायरेक्टली स्ट्रेस ऐसा रिलेटेड नहीं है। बट स्ट्रेस के साथ आपकी डाइटरी हैबिट भी चेंज होती है ना, स्ट्रेस के साथ आपका वाटर फ्लूइड इंटेक भी चेंज होता है और बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं जो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको डिजीज से ज़्यादा प्रोन बना लेते हैं, जिसमें से स्टोन भी है।
0: जी, तो बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ सवाल आपके मन में अभी भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो आप फटाफट हमें कॉल करिए, हमें मैसेज करिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेकर फटाफट हम भी वापस आते हैं और जितने प्रश्न बचे हैं उसको जल्दी जल्दी से डॉक्टर साहब से पूछेंगे।

0: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और हमारे साथ हैं डॉक्टर हेमंत गोयल, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल। कार्यक्रम अब समापन की ओर है, थोड़ा सा समय बचा है। किडनी स्टोन्स मिथ्स एंड फैक्ट्स पर काफ़ी सारे बातें हमने नई भी जानी और आप लोगों के बहुत सारे प्रश्नों का भी जवाब डॉक्टर साहब ने दिया। एक हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, इनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, अपना नाम बता दें और प्रश्न पूछ लें।
1: जी मेरा नाम जियाउर रहमान है।
0: जी
1: मैडम नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
0: जी नमस्कार, पूछिए। आप रेडियो सेट बंद कर दें, हमें इको आ रही है, आप रेडियो सेट थोड़ा सा बंद कर दें। जी जी हाँ, पूछिए प्रश्न।
1: ओके मैडम
0: जी
1: जी जी जी जी
0: हाँ जी, आप पूछिए।
1: जी मैडम, मेरी एक आदत है, एट प्रेजेंट आई एम एट द एज ऑफ 74 इयर्स। तो मेरी एक आदत है कि मैं जब खाना खाता हूँ, एक तो गर्म खाना खाता हूँ
0: जी,
1: और उसमें पानी जो है बीच में पीता रहता हूँ, शुरू में भी पी लेता हूँ, बाद में भी पी लेता हूँ। अमूमन ये सुनने में आया है कि खाना खाने के बाद में जो पानी एक डेढ़ घंटे बाद या आधे घंटे बाद पीना चाहिए। अगर ऐसी आदत है, ये मेरी आदत जो बनी हुई है 74 साल में, अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अच्छी बात, कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो।

0: अच्छी, कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है इस आदत से मेरी?
1: देखिए ऐसा है कि, देखिए ऐसा है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो सब चीज़ें ठीक है, है ना। मगर जनरली ये बोला जाता है और बोला भी जाता है और ये सही भी है कि आपको खाते वक्त पानी नहीं पीना चाहिए, है ना, क्योंकि डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी ने बनाया हुआ है कि पानी पीने का टाइम और खाने का टाइम अलग किया हुआ है। खाना जाएगा वो उसको उसको कच्चा कच्चा वो पार्ट्स में जाएगा, फिर स्टमक अपना काम करेगा उसको डाइजेस्ट करने में। तो फूड बेटर अब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होता है अगर उसका साथ पानी ना पिया जाए। पानी पी लेंगे तो जल्दी से आगे चला जाएगा, तो जनरली मिक्स नहीं करना चाहिए। मगर आपको अभी तक प्रॉब्लम नहीं हो रही तो इसलिए आपको चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है
2: जी। धन्यवाद। वैसे डॉक्टर साहब ये सुना जाता है कि पहले जैसे आप कह रहे हैं कि देर से पीना चाहिए, आधा घंटा गैप करके, पर आजकल ये भी कहीं मैं सुनती हूँ पढ़ती हूँ कि बीच में सिप सिप करके पीना चाहिए तो अच्छा रहता है।
1: देखिए सिप करने में वो एक अलग बात है कि अगर आप थोड़ा सा फूड के साथ वाटर इंटेक रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा गंदा नहीं मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमारे अपने डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उसमें बहुत फ्लूइड इंटेक है। अगर मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन 4 से 4.5 लीटर सिर्फ हमारी जो जीआई ट्रैक है वो एक दिन में डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है। तो वो पानी ऑलरेडी सिक्रीट कर रहा है, वो फूड में मिक्स हो रहा है और तभी वो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन हो रही है। तो हमें अलग से पानी की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर किसी वो हैबिट पर है, जनरली हम छोटे बच्चों में तो ये बात मना करते हैं कि जिनको अपने बारे में नहीं पता कि भाई जब आप पानी साथ साथ में मत पीते रहिए, है ना, या फिर कि बहुत लोगों को आदत होती है खाने के साथ पानी पीने की कि उसका निगला ही नहीं जाता उनको, वो ज्यादा निगलने के लिए है कि गले से नीचे जाने के लिए।
2: अच्छा।
1: तो फूड आप ऐसा लीजिए जो थोड़ा सेमी सॉलिड हो, सेमी सॉलिड फूड सबसे अच्छा है। बहुत सॉलिड फूड लेंगे तो उसको फिर अच्छे से चबाइए दांतों में, तब वो जा पाएगा। अब आप रोटी ले रहे हैं और उसको मोटा मोटा निगलने की कोशिश करेंगे तो बिना पानी के नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं आप खाने में गलती कर रहे हैं, पानी इसलिए हेल्प कर रहे हैं।
2: ओके चलिए, बहुत सारे प्रश्न हमारे मैसेज के माध्यम से भी हैं, देखते हैं कितने हम ले पाते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, लिख रहे हैं ये कि केकेएस रायपुर छत्तीसगढ़ से, इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है लेकिन मेरा एक प्रश्न जो मुझे आपसे सॉल्व कराना है कि मेरी पत्नी की उम्र 49 ईयर्स है, उसे रात को नींद डिस्टर्ब रहती है क्योंकि 2-3 बार उठकर यूरिन पास करने जाना पड़ता है, जबकि 9 बजे के बाद वो पानी नहीं पीती है लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, और शुगर बीपी नहीं है।
1: देखिए अगर रात में 2 से 3 बार उठना पड़ रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, एक तक हम नॉर्मल मान लेते हैं। 2 से 3 बार अगर उठना है तो डेफिनेटली उनका एक वर्क और डायबिटीज नहीं है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, और वो रात में पानी भी ज़्यादा नहीं पी रही। तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं रात में पानी कम कीजिए, अपना शुगर का टेस्ट कराइए, दोनों ही चीज़ें नहीं है उनकी। तो उनका डिटेल वर्कअप होगा जिसमें उनका अल्ट्रासाउंड होगा, यूरोफ्लो होगा, यूरिन रूटीन कल्चर होगा, जिसमें देखना पड़ेगा कि रात में उनका यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन पेशेंट में कहीं ना कहीं कार्डियक चेकअप भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जनरली हमारा दिन में यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, रात में कम होता है, एक एज के बाद रात का बढ़ जाता है, तो वो जनरली 50 साल के बाद बढ़ता है। जैसे अभी 49 की एज में अगर बढ़ रहा है तो इनका कार्डियक चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक बार इनका डिटेल्ड यूरोलॉजी चेकअप भी कराना चाहिए कि रात में यूरिन ज़्यादा बन क्यों रहा है, बन रहा है इसलिए ज़्यादा बार बार जाना पड़ रहा है।
2: जी बिल्कुल, और अब समय ज़्यादा हमारे पास है नहीं, बस एक ये बात और मैं जानना चाह रही थी कि बार बार जैसे किडनी स्टोन होता है तो किडनी के अलावा भी कहीं कहीं और ये स्टोन बन सकता है किसी कारण से, बॉडी की कोई टेंडेंसी हो तो?
1: देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक तो मैंने आपको बताया किडनी स्टोन हमारा किस किस वजह से बन सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि किडनी में या किडनी के नीचे यूरेटर आता है, ब्लैडर आता है, प्रोस्टेट आता है, ये सब कनेक्टेड है, इनमें कहीं पर भी रुकावट होगी तो उससे तो पेशाब जो यूरिन बन रहा है वो रुक रहा है तो उसमें स्टोन बन सकता है। तो जैसे पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर किडनी के आगे एक नली होती है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट है, या ब्लैडर के आगे प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट वाले पेशेंट्स जो होते हैं जिनको रुकावट होती है तो उनके ब्लैडर में स्टोन बन सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अगर ब्लैडर की प्रोस्टेट की वजह से ब्लैडर में स्टोन बना तो आपसे स्टोन मत निकलवाइए, आपको प्रोस्टेट का भी ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा नहीं तो स्टोन फिर से हो जाएगा। तो इसमें कारण का भी इलाज होगा और उसकी वजह से बने हुए स्टोन का भी इलाज होगा, ये बहुत जरूरी है।
2: जी यही मैं चाह रही थी कि आप श्रोताओं को बताएं क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत रहता है। तो बहुत सारी आज हमने किडनी स्टोन्स मिथ्स एंड फैक्ट्स की बातें समझी जानी और बहुत सारी बातें और मिथक जो है डॉक्टर साहब ने क्लियर भी किए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आप स्टूडियो में आए हैं। डॉक्टर हेमंत गोयल हमारे साथ रहे, प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट डॉक्टर RML हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: चार बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। राज्यसभा में विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू। सरकार ने 54,000 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने पर केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी। तमिलनाडु विधानसभा में 2026-27 का संशोधित कृषि बजट पेश किया गया। किसानों के लिए कई नई योजनाएं की घोषणाएं। रेलवे ने आदर्श रियायत करार ने सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। ईरान ने कहा हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सप्ताह समझौते की संभावना जताई। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों को शीघ्र रिहाई का आग्रह किया। और खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के डिवीजन ए में उड़ीसा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश सेमीफाइनल में पहुंचे। एफएम रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार। स्टे ट्यून्ड फॉर संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

वो वादे, वो इरादे, वो कस्में, वो गुजारिश, वो कविता, वो गीत, वो नहर, वो आकाश, वो पहाड़, वो समुद्र, वो खिलखिलाते चेहरे, वो फूल, वो पत्तियां और वो मिट्टी जिसके ऊपर आप और हम खड़े हैं, वो मिट्टी जो हमें अनाज देती है, वो मिट्टी जो रहने के लिए घर, काम करने की ऊर्जा, एक पहचान देती है। उस मिट्टी का तिलक कर अगर हम सर उठा के खड़े हों तो कोई भी पहचान लेगा कि हम भारतीय हैं। और इसी मिट्टी में जहां हम अनाज उगाते हैं, हरी भरी वादियों में उसके लुत्फ उठाते हैं, यहां पर देश की रक्षा कर

0: करने के लिए फौलाद भी जन्म लेते हैं। और ऐसे ही जांबाज इंडियन आर्मी के अफसर ब्रिगेडियर सुशील तमर हमारे साथ, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, आज संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। देशवासियों के साथ हमारे इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस के साथ मैं ब्रिगेडियर सुशील तमर जी का स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग।
0: सबसे पहले तो पूरे देश की तरफ से मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि यू आर सर्विंग इन द इंडियन आर्मी बट यू डिड फाइंड द अपॉर्चुनिटी। आपने जो भी रेगुलर नेसेसरी परमिशंस थी वो ली और अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।
1: नहीं, मेरे लिए खुद भी एक बहुत खुशनसीबी का मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपसे मुखातिब हो सकूं, आपके श्रोताओं से बात कर सकूं। इट्स रियली एन ऑनर।
0: मुझे ये बताइए कि क्या हमारे इंडियन आर्मी के अंदर जो जांबाज अफसर होते हैं जिन्होंने बहुत एक काबिल तरीके से एक ऑपरेशन या बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, वो इसी तरह मीठी जुबान बोलते हैं, मतलब कभी कभी वो कड़क साउंड नहीं करते, वो इट्स समवॉट लाइक अ कैमोफ्लेज।
1: नहीं, मेरे ख्याल से ये संगति का असर है। आपका लहजा खुद इतना सुहाना है कि शायद हमारे लहजे में भी आपकी मिठास आ गई है।
0: ओके, तो दुश्मन को मीठा मीठा कह के थोड़ा सा उसको सॉफ्ट डाउन करो एंड देन टारगेट हिम, इज दैट द आईडिया?
1: या, दैट्स इट।
0: तो अपने सुनने वाले को बता दूं कि ब्रिगेडियर सुशील तंवर एक एलुमनाई है मिलिट्री स्कूल अजमेर के, नेशनल डिफेंस अकेडमी पुणे खड़गवासला के और इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून के। आप प्रेस्टीजियस मिलिट्री कोर्सेज करने के लिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और अंतर्राष्ट्रीय इंटेलिजेंस डायरेक्टर्स कोर्स IIDC जो किंग्स कॉलेज लंदन में होता है वो करने भी जा चुके हैं, और ये महारत हासिल करके आपने, ये कहूं कि वो द कोवेटेड यूनिफॉर्म ऑफ द इंडियन आर्मी वो पहनी।
1: बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशनसीबी का मौका है। मैं तो एक्चुअली बचपन से ही, हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़ा हूँ जैसे आपने बताया, और हमारे स्कूल का ये मकसद था कि छात्रों को डिफेंस सर्विसेज में ऑफिसर्स के लिए ट्रेन किया जाए
0: जी।
1: उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी चले गए, सो बचपन से ही यूनिफॉर्म हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, एंड दैट इज़ वाई वी फील ब्लेस्ड कि हमें मौका मिला देश की सेवा करने का, वर्दी पहनने का।
0: और इसके साथ साथ अपने देशवासियों को बता दें कि आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान हैं ब्रिगेडियर सुशील तमर, आपने 17 साल जो योगदान दिया भारतीय आर्मी को अभी तक, उसमें काउंटर टेररिज्म एनवायरनमेंट जो जम्मू एंड कश्मीर में था वहां पे इलीट 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट को कमांड किया है। यंग ऑफिसर होने के नाते इन्होंने बहुत सारे जोखिम झेले। ऑपरेशन रक्षक में आप एक बैटल कैजुअलिटी के शिकार हुए, लेकिन शरीर शिकार हुआ, हौसला नहीं हारा और आगे बढ़ते गए। नॉर्दर्न कमांड की कमीशन कार्ड और साथ ही साथ इन्हें COAS कमेंडेशन कार्ड 2 बारी मिल चुका है। इनके बारे में और हम बात करेंगे, लेकिन विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित ब्रिगेडियर सुशील तमर जी, ये सफर शुरू कहां हुआ आपका? व्हेन डिड यू वांट टू कम टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस?
1: जैसा मैंने पहले बताया कि हम मिलिट्री स्कूल अजमेर में पढ़े हुए हैं
0: जी।
1: 10 साल की उम्र में स्कूल में एडमिशन हो गया था।
0: ओके।
1: तो मेरे ख्याल से शायद मैं 5वीं 6वीं क्लास में रहा होऊंगा जब मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे भी फौज में जाना है, सेना में जाना है। और एक बार हम स्कूल में आ गए तो हमारा रूटीन, लोग कहते हैं कि मैंने 17 साल फौज में दिए, 20 साल दिए, 25 साल दिए, लेकिन हम स्कूल वाले, हम जो फौज में आ गए, हम कहते हैं कि हम तो बचपन से ही PT परेड करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आई थिंक इट वाज राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड दैट आई रियली वांटेड टू जॉइन।
0: तो बचपन से ही आप एक डिसिप्लिन्ड माहौल में रहे होंगे?
1: हाँ, डिसिप्लिन था, काफ़ी डिसिप्लिन था जो हमारे जीवन में था। सुबह टाइम पर उठना, PT करना, क्लासेस टाइम पे जाना, शाम को गेम्स, स्टडी पीरियड। और वैसे पुराने जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका एक अलग डिसिप्लिन और एक रूटीन था, खासकर हमारे मिलिट्री स्कूल्स, 5 मिलिट्री स्कूल हैं पूरे देश में, तो मैं अजमेर में पढ़ा हुआ हूँ। तो हमारे स्कूल में बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती थी कि डिसिप्लिन में रहें और फौज की तैयारी करें और हम आगे फौज में।
0: ओके, पर साथ साथ में और भी बहुत सारे सवाल पूछता रहूँगा

0: लाइफ की फिलॉसफी से जुड़े, आपको लगता है कि तब का डिसिप्लिन, बड़े होने के बाद जो डिसिप्लिन है, यू हैव नो रिग्रेट्स, कि डिसिप्लिन से ही जो जिंदगी है ना वो थोड़ी सी और निखरती है, लुक्स मोर कलरफुल?
1: हाँ, मे नॉट बी कलरफुल बट सर्टेनली डिसिप्लिन ब्रिंग्स एन ऑर्डर। मुझे लगता है कि डिसिप्लिन रहने से आपकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक निखर जाती है।
0: ओके
1: उसमें एक तरीका आता है, एक सलीका आता है, आपका आपके आसपास वाले लोगों पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। और सेना में तो डिसिप्लिन ही जिंदगी है, तो इसीलिए अगर हम ना भी चाहें तो भी हमें डिसिप्लिन में तो रहना ही पड़ेगा।
0: पर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, दैट्स द रीजन कि इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द टॉप आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड।
1: सर्टेनली सर्टेनली, एंड हम लोग यूएन जाते हैं, बाहर जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ हमारी एक्सरसाइज होती हैं।
0: एब्सोल्युटली।
1: और वैसे तो वर्ल्ड ओवर आर्मीज आर नोन फॉर डिसिप्लिन, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी सेनाओं में इतना अनुशासन नहीं है, लेकिन भारतीय सेना की बात ही कुछ और है।
0: सो क्योंकि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे मिले जुले सवाल भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियन हमें सुन रहे हैं, हमें पूरा देश इस समय सुन रहा है, क्योंकि आकाशवाणी के लगभग सारे स्टेशन इस समय ट्यून्ड इन हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से। बहुत सारे हमारे NRIs जो हैं वो इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं। हमारा व्हाट्सएप का जो मशीन है वो मैं खोल लेता हूँ, एंड ऑफकोर्स अभी अभी मेरे पास मैसेज आया कि ऑस्ट्रेलिया से कोई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे, और उनका नाम है जोया। खैर, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, वो तो मैं बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसी क्या खास बात है इंडियन आर्मी में आज की डेट में, इतने मॉडर्नाइजेशन पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में है, ये कहना सही होगा?
1: बिल्कुल सही है, हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हैं और दुनिया बदल रही है, साथ में सेना बदल रही है, दी वॉर्स आर चेंजिंग, दी एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बैट इज चेंजिंग, तो काफी बदलाव आ रहा है।
0: जब आपने पहली बार आपने वर्दी पहनी, उसके बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई?
1: हाँ, जब हम 97 में कमीशन हुए थे तो हमारी यूनिट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थी, मणिपुर में, तो कुछ साल मैंने वहाँ गुजारे, लेकिन उसके बाद जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, ज़्यादातर वक्त मैंने जम्मू कश्मीर में गुजारा, लेकिन शुरुआती 2-3 साल मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गुजारे थे।
0: तब का नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अब का बहुत फर्क आ गया होगा?
1: फर्क तो हर जगह आया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया मुझे जाने का इतना मौका नहीं मिला, बीच बीच में जाता रहा, बट एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, नॉट एक्चुअली सर्व नहीं किया मैंने वहाँ पे इतना ज़्यादा। लेकिन जो हमारे साथी हैं वो बताते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तरक्की हुई है, लोगों के नज़रिया बदला है, सड़कें बदली हैं, डेवलपमेंट हुई है, तो आपके मीडल ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हुए हैं, तो ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही बदल गई है, और साथ ही ज़िंदगी जीने के तरीके भी बदल गए हैं।
0: सो टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर पोस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, उस समय बड़ा डिफिकल्ट पीरियड था जब आप वहाँ आपकी पोस्टिंग।
1: जी, मैंने जम्मू कश्मीर में 15 साल से ज़्यादा गुजारे हैं, और पुंछ, मेंढर, सूरनकोट, रजौरी, आपने बात की 15 कोर की इंटेलिजेंस यूनिट की, बारामूला में मैं रहा, तो तकरीबन जम्मू एंड कश्मीर से मेरा एक बहुत ही क्लोज रिलेशन है वहाँ के लोगों के साथ। बहुत मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि मैंने इतना वक्त गुजारा है, और मैं कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा जो फर्स्ट होम इज जम्मू एंड कश्मीर।
0: वाओ, ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा, मतलब फौलाद भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की बात ही कुछ और है।
1: बात ही कुछ और है वहाँ के लोगों के साथ, हमने बहुत काम किया उनके साथ, हमारे जाति ताल्लुकात हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सोल्जरिंग के सारे पहलू वो सामने आते हैं, चैलेंजिंग है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस हैं, और लोगों के साथ एक मिलने जुलने का सिलसिला है। तो अगर हम कहते हैं कि पी स्टेशन में कोई दिल्ली में है, कोई मथुरा में है, कोई पूना में है, इसके बनस्पत कोई जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहने से उसको सोल्जरिंग का जो रियल वैल्यू है वो सामने आती है। सो इट्स टफ बट इट इज़ ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइंग।
0: तो आप हमारे सिविलियंस को इस वार्ता के, आपके और मेरे बीच जो वार्ता चल रही है उसके माध्यम से आप ये बताना चाहें कि चाह रहे हैं कि जब हमारी इंडियन आर्मी वहाँ, जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे जवान हैं, हमारे अफसर हैं, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप यूनिफॉर्म पहने और आपने गन पकड़ी एंड यू आर अ ड्रेडेड, यू नो, मैन इन अ यूनिफॉर्म, आप लोगों से मिक्सअप भी

0: जागरूकता एक बहुत बड़ी चीज है, अवेयरनेस एक बहुत बड़ी चीज है, स्पेशली यूथ के लिए।
1: बिल्कुल, और आपने एक ड्रेडेड वर्ड का इस्तेमाल किया जो कि थोड़ा सा नकारात्मक होता है उसके मायने, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों के हिसाब से देखते हैं तो वी आर नॉट सीन एज ड्रेडेड, आई थिंक वी आर सीन मोर एज प्रोटेक्टर।
0: और हमारा
1: यस या ड्रेडेड, इट इज ड्रेडेड फॉर पीपल, या वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, सो दैट वे यस, बट अदरवाइज आजकल जिस तरीके का माहौल है कई तबकों में सेना को एक ड्रेडेड आइडेंटिटी भी दी जाती है, लेकिन आई थिंक वी आर वेरी टफ विद पीपल हुम वी आर फाइटिंग अगेंस्ट, बट वेरी फ्रेंडली टू एवरीवन हु इज ऑन आवर साइड।
0: तो आप इतना टाइम थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ की लैंग्वेज वगैरह कुछ सीखी?
1: हाँ बिल्कुल, वो तो ज़रूरी है लोगों के साथ अगर हमारे को रिश्ते जोड़ने हैं तो फिर वहाँ की भाषा भी सीखनी पड़ेगी।
0: राइट, कुछ बताइए ना वहाँ पे आप, जब आपकी पहले पोस्टिंग हुई या कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो आपको याद आता हो, एंड यू सेइंग फाइनली मैं अब आर्मी के साथ हूँ और मैं ऑपरेशंस में हूँ।
1: देखिए वहाँ तो डे वन से ऑपरेशंस चलते हैं मुझे, अभी मैं बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा किसी ऑपरेशन के, लेकिन जैसे आपने बताया मुझे वहाँ पर गोली भी लगी एक एनकाउंटर में जो सूरनकोट में हुआ था।
0: इसके अलावा एलाबोरेट करना चाहेंगे?
1: नहीं, बट एक जगह थी जहाँ पर हमें सर्च ऑपरेशन करना था और वहाँ पर जैसा कि किसी भी ऑपरेशन में हो सकता है आतंकवादियों से सामना हो गया और मुझे गोली लग गई, बट नॉट इट वॉज नॉट वेरी सीरियस इंजरी, और ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था और इसमें बाद में हमें आइडेंटिफाई किया हमने कि कौन था इसके पीछे, लेकिन इस तरीके के वाक्ये मेरे साथ हुए हैं, मैं बच गया, लेकिन हमारे बहुत बहादुर जवानों और ऑफिसर्स ने अपनी जान की बाजी लगाई है, अपनी जान का बलिदान दिया है। मेरे बहुत साथी, मैं जिस बैच से बिलोंग करता हूँ उस बैच में वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 30 ऑफ अवर बैचमेट्स फॉर वेरियस रीजंस, सो द कॉस्ट इज क्वाइट हाई, बट दैट इज अ कॉस्ट दैट नीड्स टू बी पेड
0: फॉर द नेशन,
1: या फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री।
0: एक नशा है ना आप लोगों को कि नहीं यार वर्दी पहनी है, बस अब सिर्फ देश ही दिखता और कोई नहीं दिखता।
1: नशा है, जुनून है, एंड आई थिंक दिस इज आवर फर्स्ट लव।
0: मैंने नशा इसलिए बोला क्योंकि आपने एक सॉन्ग सेलेक्ट किया हुआ है, उसके बोल ही कुछ ऐसे हैं।
1: हाँ, पहला नशा जी, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना।
0: एनी स्पेसिफिक रीजन?
1: हाँ, इसका रीजन दो तीन रीजन है। पहला रीजन उसका ये है कि ये मूवी जो जीता वही सिकंदर, मैंने यही दिल्ली में रिड्स थिएटर होता था, कश्मीरी गेट के बाहर, तो मेरे भाई के साथ मैंने ये मूवी देखी थी, मैं आई थिंक 11th या 12th में था, और वो मुझे याद है वो गाना पूरा, इट इज इम्प्रिंट ऑन माय माइंड। और फिर एक ऐसा वक्त आया जब मैंने इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून भी लगाया था, तो सब लोग सोचते थे ये क्या है पहला नशा, तो आई यूज्ड टू से जो मैंने अभी आपको कहा है कि आर्मी इज आवर फर्स्ट लव।
0: सर बात तो आर्मी के आगे भी होगी, इस गाने को सुनते हैं फिर पूछता हूँ किसके लिए आपने गाया था। संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप, और हमारे साथ ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं स्टूडियो में।

0: तो हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आप सुन रहे हैं ये खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो अभी इंडियन आर्मी को सर्व कर रहे हैं, ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और इंडियन आर्मी की शान। और अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, माध्यम व्हाट्सएप का ही है। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप उसमें व्हाट्सएप भेजकर अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग्स, मैं जानता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस की जो सेलिब्रेशंस हैं, जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं, तो आप अपने भाव यहाँ पे प्रकट कर सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070, यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी से मैं अभी जानना चाहूँगा कि आपने बात की जम्मू कश्मीर की, तो बहुत लंबा अरसा आपने वहाँ पे बिताया है। यू मस्ट हैव सीन द समर्स एंड द विंटर, सारे वेदर आपने वहाँ पे देखे होंगे, तो कुछ शायरी वारी भी तो निकली होगी कभी ना कभी, कुछ मन तो किया होगा ना कुछ गुनगुनाने का, जैसे आपने ये गीत हमें सुनवाया, कुछ और भी आपने कुछ लिखा, कुछ भाव प्रकट किए वैसे?
1: हाँ, जम्मू कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा, वहाँ के लोगों के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात बनाए
0: जी,
1: और दो किताबें मैंने लिखी हैं।
0: okay.
1: एक किताब है मुखबिर, विच इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज।
0: मुखबिर
1: okay. मुखबिर मतलब इन्फॉर्मर होता है, और ये 17 कहानियां हैं इसमें।
0: okay.
1: सब जम्मू कश्मीर की कहानियां हैं।
0: अच्छा।
1: जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशंस की कहानियां हैं।
0: okay.
1: वहाँ के लोगों की कहानियां हैं।
0: okay.
1: और दूसरी किताब मेरी अभी आई है, अमन के फरिश्ते। ये कहानी है, दिस इज़ नॉवल, ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रांत के पुंछ जिले में सूरनकोट एक जगह है।
0: okay.
1: वहाँ पर एक यंग मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर, उसकी कहानी है, और ये किताब अभी 5 महीने पहले ही आई है। दोनों किताबें राजपाल एंड सन्स ने पब्लिश की हैं, और इन दोनों

0: किताबों में, मैंने जो भी जम्मू कश्मीर में देखा, मेरे साथियों ने जो देखा, सो इट इज़ जस्ट ए कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस. ऑफ कोर्स इट इज़ फिक्शन एंड रियलिटी कंबाइंड.
1: मैं आपसे मुखबिर के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। आपने कहा कि उस वहाँ पे तरह तरह की कहानियाँ हैं, तो ये कहानियाँ जब आप वहाँ सर्व कर रहे थे, आपने तब लिखी या तब मन में बनाया और फिर बाद में?
0: ये कहानियाँ मेरे दिमाग में आती रही, जो मैं देखता रहा,
1: जी
0: जो मेरे साथी देखते रहे. हालांकि किताब ये 3-4 साल पहले आई है.
1: जी
0: कुछ कहानियाँ मैंने तब लिखी जब मैं वहाँ से वापस आ गया,
1: जी
0: और कुछ कहानियाँ मैंने वहाँ पर रहते हुए लिखी. तो मिला जुला संगम है ये.
1: ओके okay.
0: लेकिन जहाँ तक फीडबैक का सवाल है,
1: जी
0: काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इन किताबों को पढ़ के, इन कहानियों को पढ़ के उन्हें जम्मू कश्मीर के बारे में एक नया नज़रिया मिला.
1: ओके okay.
0: और मेरे लिए एज ए राइटर
1: जी
0: इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती.
1: कुछ कुछ कहानियों का कुछ अंश यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहेंगे
0: हाँ, मैं इसमें
1: कि
0: सत्रह
1: किस तरीके
0: कहानियां हैं.
1: किस तरीके की
0: जैसे ये
1: कहानी?
0: कहानी मुखबिर, जो
1: जी
0: पहली कहानी
1: जी
0: है मुखबिर,
1: जी
0: जिसके टाइटल जिसका ऊपर है किताब का, वो कहानियां एक बारामूला के पास गुलाम हसन नाम का इंसान रहता है
1: ओके
0: जो कि फौज के लिए मुखबिरी करता
1: ओके दीज आर ऑल हाइपोथेटिकल नेम्स राइट? या
0: है. या
1: मैं
0: सम ऑफ दीज नेम्स आर रियल
1: रियल ऑल्सो ओके
0: बट मोस्टली इट इज़ हाइपोथेटिकल.
1: ओके
0: मैंने क्या किया इसमें, जो मेरे साथ रहे लोग,
1: जी
0: जो मेरे साथी रहे, जिन्होंने हमारे साथ काम किया, जो मेरे साथ जुड़े रहे, हमने कहीं ना कहीं जो किरदार थे एज माई ट्रिब्यूट, हमने उनके नाम रख
1: ओके
0: दिए. सो मे
1: ओके
0: नॉट बी रियल बट
1: ओ
0: समवेयर दे डू एग्जिस्ट.
1: ओके स्पाई
0: तो
1: नेम्स कह लूं?
0: हाँ, स्पाई नेम्स कह लीजिए, कई असली नाम हैं. जैसे मेरे कोई साथी हैं, उनके नाम पर, जो मेन किरदार है उनके नाम पर
1: मेरा भी
0: है.
1: एक नाम
0: जैसे
1: था,
0: आपके नाम पर भी लग देंगे अगली किताब.
1: मेरा नाम रखा हुआ है
0: अच्छा, क्या रखा हुआ आपका नाम?
1: फाल्कन वन।
0: अच्छा, आपके व्हाट्सएप प्रोफाइल में भी फैल्कन वन आया था. जब आपने मुझे पहली बार कॉल किया था तो
1: या
0: मैंने कहा ये फैल्कन वन कहीं किसी ये
1: बस
0: खतरनाक किसी इंसान का फ़ोन आ रहा है.
1: हाँ
0: लेकिन फिर जब मैंने आपसे बात की और आपकी आवाज़ सुनी तो मुझे फिर पता लगा कि अच्छा, आप तो ऑल इंडिया रेडियो से बोल रहे हैं.
1: जी
0: लेकिन जो स्क्रीन पे नाम आया था फैल्कन, वो सच में काफ़ी खतरनाक था.
1: मेरे एक दोस्त भी हैं, आज ही बने हैं, उनका नाम है टैनी।
0: हाँ, वो उनसे आप मिलते रहिए, आपको उम्मीद है मज़ा आएगा.
1: मेरे सामने बैठे हैं टैनी,
0: हाँ,
1: सही कह
0: मुझे
1: रहा हूँ?
0: फौज में, हाँ मुझे फौज में लोग, फौज में एक रिवायत है
1: आपके भी
0: निकनेम्स
1: व्हाट्सएप
0: की.
1: व्हाट्सएप की इमेज के साथ आया था टैनी स्पीकिंग।
0: हाँ, तो हमारी फौज में एक रिवायत है
1: जी
0: निकनेम्स की.
1: जी
0: मडवाल को मैडी बोल देते हैं, संवाल को सैम बोल देते हैं, तो यशराज है तो यश बोल देंगे. तो
1: ओके
0: यू नो वी हैव ए विद लव एंड विद अफेक्शन वी गिव निकनेम्स.
1: ओके
0: शायद हर पेशे में होता होगा, लेकिन फौज में कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा अपनापन है. तो मुझे फौज में लोग टैनी कहते हैं, सीनियर जूनियर सब. कोई सर भी बोलता है तो टैनी सर बोलता है. तो दैट इज़ हाउ
1: एंड यू
0: टैनी
1: एंजॉय
0: केम.
1: इट, वी एंजॉय दीज नेम्स
0: या
1: इज़न्ट?
0: बिकॉज़ दे आर सेड आउट ऑफ अफेक्शन, और कुछ फिर आदत बन जाती है लोगों
1: आदत
0: की.
1: बन जाती है, एक अपनापन भी होता
0: एक
1: होगा।
0: अपनापन तो है, काफ़ी अपनापन है.
1: तो ये जो फिल्म्स में हम देखते हैं, जैसे टाइगर कॉलिंग बारह सिंगा, बारह सिंगा टू टाइगर, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे।
0: हाँ, क्योंकि जब आप रेडियो पर खासकर बात करते हैं
1: जी
0: तो कुछ कोड वर्ड्स होते हैं,
1: ओके
0: तो टाइगर, लैम्ब, लायन, इस तरीके के होते हैं जो सेट होते हैं. और इसके बाद कुछ इंडिविजुअल नेम्स होते हैं.
1: ओके
0: सो दीज आर कॉल साइंस बेसिकली.
1: कॉल साइंस यस
0: तो यस, दिस इज ट्रू, बट फिल्मों में थोड़ा ज़्यादा ग्लैमरस कर देते हैं उसको.
1: ग्लैमरस कर देते हैं जी हाँ। मुझे याद है कि यहाँ पे हमने ग्रुप कैप्टन मोनीश यादव को आमंत्रित किया था संदेश टू सोल्जर्स में। द पायलट हु फायर्ड एट द टाइगर हिल फ्लाइंग द मिराज 2000 अलोंग विद ग्रुप कैप्टन रघुनाथ नाम्बियर, तो वो आए थे। तो हम बताया वो जो 25 या 26 सेकंड की जो क्लिप है यूट्यूब में, जहां एयरफोर्स ने टाइगर हिल पे अटैक किया था लेजर गाइडेड बॉम्ब। तो मैंने उनसे पूछा था आपका कॉल साइन क्या है, तो हंसने लगे, बोले इट वाज टॉम कैट।
0: हाँ, एयरफोर्स में बड़े स्टाइलिश नेम्स होते हैं,
1: जी
0: उनके कॉल साइंस आर क्वाइट स्टाइलिश. दैट वे वी आर ए लिटिल ग्राउंडेड.
1: तो कमिंग बैक टू गुलाम अहमद,
0: हाँ, गुलाम हसन.
1: गुलाम हसन
0: गुलाम
1: ओके
0: हसन तो ये गुलाम हसन की कहानी है
1: जी
0: जो कि वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम के साथ काम करता है
1: जी
0: और किस तरीके से वो अपने आप को साबित करता है. ये वो कहानी है उस इलाके में, एक टेररिस्ट ग्रुप इन्फिल्ट्रेट करके आ जाता है,
1: okay.
0: और वहाँ पर जो टीम कमांडर

0: वो उसको टास्क देता है कैप्टन अभिमन्यु कि आप पता करें, और वो पूरी जी जान लगा देता है. और देयर इज अ स्लाइट ट्विस्ट इन द एंड अबाउट व्हाट हैपेंस टू गुलाम हसन. तो ये कहानी है, एक कहानी है मुजाहिद जो एक बहुत यंग लड़के इम्तियाज की कहानी है, ये सूरनकोट की कहानी है. और इसमें जो मेन किरदार है वो इम्तियाज है और दूसरा कैप्टन समर है. कैप्टन समर इम्तियाज को ट्रेन करता है, उसको पाकिस्तान भेजता है लश्कर तौयबा के साथ काम करने के लिए. और फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो आप किताब पढ़ेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा. बट इट इज़ ऑल्सो ए वेरी वेरी टेंडर एंड येट ए वेरी करेजियस स्टोरी. फिर एक कहानी है लव जिहाद. लव जिहाद एक कहानी है पाकिस्तानी टेररिस्ट की जो हिंदुस्तान आता है घुसपैठ करके जिहाद के लिए, लेकिन यहाँ पर उसको हंडवारा में एक लड़की के साथ इश्क हो जाता है. और उसी वक्त वहाँ पर एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं कर्नल ऋषभ, उनको ये सब बात पता लगती है. तो वो किस तरीके से इन दोनों के रिश्ते को यूज़ करते हैं और किस तरीके से तीनों मिलकर फिर भारतीय सेना के लिए काम करते हैं, ये उस कहानी का मेन प्लॉट है. तो आप पढ़ें कहानियाँ, आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस.
1: लेडीज के हाथ में वो पावर होती है, दे कैन चेंज एनीबॉडी.
0: या आई दैट्स व्हाट एवरीबॉडी सेज.
1: कुछ तो होता है सर. मेरे पास बहुत सारे ना SMS आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी वो भी लेता हूँ. जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें मैसेज कर चुकी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. तेलंगाना से MR मधुसूदन आपको 80th इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं भारत माता की जय. और हमारी कंट्री जो 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही है एडवांस में, वो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं.
0: मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं
1: जी. विजय कुमार विश्वनाथन जी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से हमें एक मैसेज भेज रहे हैं. संदेश टू सोल्जर्स दोस्तों आप सुन रहे हैं. अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस समय ब्रिगेडियर सुशील तंवर मौजूद हैं, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित. और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसके माध्यम से हमें जुड़ सकते हैं केवल SMS, केवल व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए. नंबर है 9868107070, 9868107070. और एक और मैसेज हमारे पास आया है, एंड दिस इज शमीम रजा. लोकेशन कहाँ से वो उन्होंने नहीं बताई, सो वील नॉट आज दैट. मिस्टर पाटिल ने हमें एक मैसेज भेजा है और उन्होंने आपके बचपन और शिक्षा के ऊपर जो बात पूछी है उसके बारे में आप बता ही चुके हैं. जय हिंद सर. सर मैं NDA की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नियमित रूप से पढ़ नहीं पाता और NDA के लिए अगर कोई किताब आप मेंशन कुछ सजेस्ट करना चाहें तो प्लीज बताएं. सूर्य कुमार हैं ये, कुछ आप कहना चाहेंगे?
0: हाँ, जो NDA की तैयारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आजकल जो 12th का सिलेबस होता है, रिटन एग्जाम जो UPSC कंडक्ट करती है, उसके लिए काफ़ी गाइड्स एंड काफ़ी गेस पेपर्स आते हैं. तो मुझे तभी अंदाज़ा नहीं है. एक्चुअली मैंने तो NDA 25-30 साल पहले किया था, लेकिन आई विल चेक कि अभी आजकल लोग किस किताब को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा सफलता किसमें मिल रही है. लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, अगर आप 11वीं और 12वीं का जो CBSE का सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से करें तो शायद आपको NDA का रिटन एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी. और NDA में रिटन एग्ज़ाम सिर्फ पहला पड़ाव है क्योंकि मेन उसमें SSB होता है. तो अगर एक बार आप रिटन की तैयारी कर लेते हैं और उसमें क्लियर कर जाते हैं तो देन SSB इज़ एक्चुअली ए टफर नट टू क्रैक.
1: ऑलराइट देन. यहाँ पे यश सिंधे मुंबई से हमें को हमारे को मैसेज भेज रहे हैं. ब्रिगेडियर सुशील जी के जज्बे को सलाम, ऐसे वीरों को हर हिंदुस्तानी सलाम करता है, आपकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, भारत माँ के सच्चे और वीर संतान हैं आप. सुशील जी आपकी सेवा और त्याग को नमन है, इस मुल्क की हिफाजत को मजबूत चट्टान की जरूरत है, वो आप हैं. ही इज ऑलरेडी बिकम अ फैन ऑफ यू सर.
0: और मैं ये सुनता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है. मुझे क्या, पूरे हमारे जितने भी साथी हैं, हम सिर्फ इस भरोसे से, इस उम्मीद के साथ अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं ताकि ये देश महफूज रहे, ताकि ये देशवासी खुश रहें. और जब हमारे देश के लोग इस तरीके का जज्बात जाहिर करते हैं तो फिर और भी अच्छा लगता है.
1: बहुत सारे
0: और हमारा जो निश्चय है, वो दृढ़ संकल्प है, वो और मजबूत होता है.
1: दैट्स वंडरफुल. कुछ और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं जल्दी से लेना चाहूँगा. आस्था शर्मा हिमाचल प्रदेश से, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी टू लिसन टू यू. और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उन्होंने भी NDA के एग्जाम दिए हैं और अभी भी तैयारी कर रहे हैं. फायरमैन भरत कुमार चमोली गढ़वाल से लिख रहे हैं कि हमारा सलूट जो है वो स्वीकार करें, एंड ऑफकोर्स हमारे जो ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके खुद के दादा पापा और तीन भाई आर्मी में सर्व कर चुके हैं और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। तंवर जी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गंगानगर जिला से डॉक्टर गणेश अरोड़ा हमारे को ये मैसेज भेज रहे हैं। हितेंद्र दास ने असम से हमें मैसेज भेजा है। सूरत से उल्हास पाटिल हमें मैसेज भेज रहे हैं। यू आर द रियल हीरो। वृंदावन से भी मैसेज आ गया रोहित रे का। एंड ऑफकोर्स इंडियन आर्मी के बारे में बहुत सारी बातें, ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं एक जनाब जिनका नाम है शशि सिंह यादव। एंड ऑफकोर्स एक और मैसेज हम लेना चाहेंगे यहाँ पे कि दिल से सलाम कर रहे हैं मोनीश इद्रिसी उत्तर प्रदेश से, बिलासपुर से आपको। सो यंगस्टर्स हैं बहुत सारे जो मैसेज भेज रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि लिसनिंग बहुत ज़्यादा है संदेश टू सोल्जर्स की। इससे पहले कि हम अगला म्यूजिकल ब्रेक लें, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारी जो प्रेमे इंस्टीट्यूशन है वहाँ के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं, कुछ आप बताइए कि जब आप नई जनरेशन के युवाओं को देखते हैं, व्हाट चेंजेस डू यू सी कंपेयर टू द यंगस्टर्स इन योर टाइम?
0: हाँ, मैं भारतीय सैन्य एकेडमी जो देहरादून में है वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था जी। और बहुत गर्व महसूस होता है जब हम नई पीढ़ी को देखते हैं।
1: ओके।
0: उनकी उनकी काबिलियत, उनका जुनून और हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर। बहुत ये बातें होती हैं कि नई पीढ़ी में कमज़ोरी है, वो स्ट्रेस नहीं ले सकते।
1: okay.
0: उनके पास इतना तजुर्बा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि व्हेन यू आर विद यंग पीपल यू योर सेल्फ फील यंगर। आपको लगता है कि इनकी एनर्जी जो है वो कमाल की है।
1: okay.
0: और जब आप एकेडमी में होते हैं तो आपको मौका होता है एज ए इंस्ट्रक्टर टू शेप देयर पर्सनैलिटी एंड आई थिंक दैट्स ए प्रिविलेज। और अभी भी जब हमारे जो कैडेट्स हैं अब अफसर बन गए हैं सारे, जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है देख के कि हमने उनको वी हैव सीन देयर इंटायर जर्नी। दे केम एज नोविसेज एंड नाउ दे आर कमांडिंग बटालियंस एंड डूइंग सो वेल। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विद।
1: तो आपका जो द प्रोसेस ऑफ डीलिंग और टीचिंग देम और ट्रेनिंग देम इज एज टफ एज योर गुरुज वर और इट्स गॉन टफर और यू अंडरस्टैंड नहीं यार?
0: देखिए ये जो है डिबेट हमेशा रहती है। हमें लगता है कि हमने ज़्यादा मुश्किल वक्त झेला है और हमारे बाद वाली, अब मैं पीढ़ी तो नहीं बोलूँगा ऐसा लगेगा कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन लेकिन या सो लेकिन वी आर फ्रॉम द सेम जनरेशन। बट आई थिंक दिस इज एवरीवन सेज कि वी हैव सीन टफर टाइम्स, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात सही है, शायद हमने ज़्यादा मुश्किलें झेली है।
1: ओके। आपने एक सॉन्ग सजेस्ट किया था कुछ आपकी ट्रेनिंग टाइम्स और कुछ आपके ग्रुप से रिलेटेड जो मैं चला चुका हूँ।
0: हाँ, ये कजरारे गाना है। जब हम आईएमए में पोस्टेड थे तो हम यंग ऑफिसर्स वी वर इंस्ट्रक्टर्स, तो हम ये गाना इतना चलाते थे दिन रात। तब ये नया नया गाना आया था और ये गाना मैं सुनता हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं, मेरे दोस्त याद आ जाते हैं एंड आई जस्ट लव दिस सॉन्ग।
1: थोड़ी और याद ताज़ा करते हैं आपकी, ये गाना हम भी चलाते हैं और कुछ ताज़ी उस समय की ताज़ी बात कुछ याद आ रहा है तो आप शेयर करिएगा। संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं। मेरा नाम है मनीष जौली और मेरे साथ खास मेहमान बैठे हैं ब्रिगेडियर
2: कृदा। मेरा चैन वैन सब उजड़ा जालिम नजर।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहाँ ब्रिगेडियर सुशील तंवर जी बैठे हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारे साथ और ढेर सारे श्रोता जो हैं जो हमें मैसेज भेज रहे हैं, उनके नाम मैं बहुत जल्दी लेना चाहूंगा। देहरादून की डिफेंस कॉलोनी से कैप्टन वी के एस कार्की आईपीएस हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके इस मैसेज के लिए। कोटा राजस्थान से रामगोपाल शर्मा जी हमें यहाँ मैसेज भेज रहे हैं, एंड ऑफकोर्स मीरा तिवारी नोएडा से कह रही हैं कि आपके बारे में, ब्रिगेडियर सुशील नवर जी के बारे में सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं खुद कोर ऑफ सिग्नल में थी जब कारगिल युद्ध चल रहा था, दैट्स वंडरफुल टू नो मैम। आशा है कि आज की जनरेशन इनकी कहानी सुन के इंस्पायर हो और देश की इज्जत रखें और नेशनल डेवलपमेंट में योगदान दें। हम भी यही आशा करते हैं, लेकिन इसके बारे में हम सुशील जी से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं। वीर सैनिकों को नमन कर रहे हैं शंभवी पांडे, एंड ऑफकोर्स वी आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ अदर मैसेजेस, जहां पर हमारे को सूर्य कुमार एक मैसेज भेज रहे हैं, वो भी एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं। मोहम्मद अली ने विशाखापट्टनम से 80वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं लिखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं आपकी लिखी हुई किताब जरूर पढ़ूंगा, और उन्होंने कहा है इंशाअल्लाह मैं भी अपने देश भारत के लिए सर्व करूंगा एक दिन। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ मैसेजेस हमारे पास जो आ रहे हैं, ग्राम ढाणी कुतुबपुर तहसील जिला हासी हरियाणा से रामधारी अवाना ने हमको मैसेज भेजा और बहुत प्यारा सा मैसेज बनाकर आपके लिए भेजा है, एंड ऑफ कोर्स बाकी जो नाम मैं लेता रहूंगा धीरे धीरे बहुत जल्दी से, जैसे भवानी उन्नाव से सुनील कुशवाहा ने हमें मैसेज भेजा है, भुवन जोशी हल्द्वानी से हमें मैसेज भेज रहे हैं और तिरंगा भी उन्होंने भेजा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ जब हमने ये गाना सुना, खैर मैं फोकस कर रहा था मैसेजेस पे, वील गेट बैक टू इट लेटर, आप हमने बात की कजरारे की, तो वर यू आल्सो वेरी नॉटी जब आप एकेडमी में थे, कुछ आपने मिस्चिफ विस्चिफ नहीं की तब?
1: हाँ, मिस्चिफ तो हर इंसान करता है मेरे ख्याल से।
0: ओके,
1: हमने भी किए, सबने किए।
0: ओके,
1: शायद लेकिन उतने नहीं किए जितने अब मैं सोचता हूँ, तो सोचता हूँ कि थोड़ा और करना चाहिए था।
0: ओके,
1: लेकिन आज आप लगता है सारे राज खुलवाने की ठान कर आए हैं।
0: अच्छा लगेगा ना, सिविलियन, देखिए सिविलियन को लगता है कि आर्मी के जवान हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो अफसर हैं, कभी मुस्कुराते नहीं हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वो कभी मीठा नहीं बोलते, आप तो मिश्री हैं। अनुराग पांडे एक रेडियो जॉकी हैं AIR मथुरा में, वो एक मैसेज भेज रहे हैं और ही इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग यू, तो हमारे सिविलियंस की थोड़ी सी वो बदल जाएगा ना कि आपकी उस यू नो सॉलिड बॉडी के अंदर भी एक विनम्र सा दिल है।
1: हाँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फौजी जो होते हैं वो बहुत नरम दिल होते हैं।
0: ओके,
1: इनसाइड द सॉफ्ट एक्सटीरियर, हार्ड एक्सटीरियर इज अ वेरी सॉफ्ट इंटीरियर, और जब आप लोगों से मिलते हैं तब

0: अंदाज़ा होता है, तो शरारतें तो लाजमी हैं।
1: पर आप लगते नहीं सर कि आपने शरारती की होगी।
0: नहीं, जैसे आप वाकई की पूछ रहे थे
1: जी,
0: तो मुझे याद है हम यंग ऑफिसर थे तो वेरी ब्रीफली माऊ में हम यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे। उस टाइम टाइटैनिक मूवी आई थी, ओपन एयर थिएटर है, बहुत मज़ेदार, वहाँ पर बहुत मस्ती होती है ओपन एयर थिएटर में, मऊ के इन्फेंट्री स्कूल में।

0: नहीं, मैं गया और जैसे ही मैंने लड़ी जलाई, उजाला हुआ, उधर शिप डूब रहा था और उधर सबको पता लग गया कि ये भाई साहब जो हैं, और उसमें से एक पटाखा हमारे एक डीएस थे जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, वो उनकी मैडम भी आई हुई थी देखने के लिए, और वो पटाखा सीधा उनकी झोली में जाके गिरा शायद, बड़ी कीमती साड़ी में छेद हो गया, तो पीछे से वो मुझे आए कि आप जरा बाहर आइए,
1: बहुत बड़ा नुकसान हो गया सर, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर। सर के ऊपर गिरता तब तक ठीक था।
0: लेकिन उस टाइम लोग थोड़े ज़्यादा जिंदा दिल थे ऐसा मुझे लगता
1: पर
0: है।
1: हुआ क्या उसके बाद?
0: कुछ नहीं, मुझे बताया गया कि ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा एक इमेज अच्छी थी, पर यह हुआ कि उसके बाद वो जो हमारे सर थे उन्होंने और बाकी सब इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे क्रैकर बॉय कहना शुरू कर दिया तो क्रैकर बॉय कम एयर, बट अच्छा था, देर वॉज नो इल विल। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं।
1: टैनी द क्रैकर बॉय,
0: यस
1: ऐसे बुलाते होंगे आपको,
0: हाँ, मतलब अपने अपने अंदाज से बुलाते थे।
1: राइट। यहाँ पे एक जनाब और हैं दीपू, उन्होंने कहा सर आप अपनी किताब के नाम दोबारा ले लेंगे, बहुत सारे लोग परचेज करना चाह रहे हैं, दे वांट टू रीड दी इंसिडेंट्स एंड दी एक्सपीरियंसेस।
0: हाँ, तो पहली किताब है मुखबिर जो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, और दूसरी किताब है अमन के फरिश्ते, ये दोनों किताबें हिंदी में हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में हैं और राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित की हैं।
1: राइट देन, राजकुमार पाल यूपी जौनपुर से लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बातें सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है। हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल हैं, वो आपको सलाम भेज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आपकी बहादुरी और राष्ट्र सेवा को सलाम। मैं हरियाणा पुलिस में एक सिपाही हूँ, लेकिन हमारी सीमाएं आप जैसे वीरों की वजह से सुरक्षित हैं। ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ मस्त और व्यस्त रखें, रामधारी अवाना। और ये किस जगह पे हैं वो सिक्योरिटी कारण से हम लोग नहीं बता सकते, बट साथ ही साथ कश्मीर से एक मैसेज आया है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, एंड केश राजपूत है, वो एक मैसेज भेज रहे हैं। मेरे पास लगभग 12 मिनट बचे हैं सर, कैन वी डू सम टफ टॉकिंग?
0: या श्योर।
1: ओके, नाउ दिस इज द रियल टॉक सर, इसमें कोई भी स्क्रीनिंग नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी बातें हुई, अवेयरनेस हुई, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ऑफ कोर्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ मॉडर्न एरा कॉम्बैट, लेकिन हमारी आर्मी में, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिन पर दिन कोई ना कोई इनोवेशंस, कोई क्रिएशन अलग सी तो हो ही रही होगी।
0: हाँ, आप अखबार में पढ़ते हैं
1: जी।
0: और पब्लिसाइज भी होती है कई चीज़ें,
1: ओके
0: और लड़ाई के मायने बदल रहे हैं, किस तरीके से जंग लड़ी जाती है वो मायने बदल रहे हैं, नए नए इक्विपमेंट आ रहे हैं, ड्रोन, सैटेलाइट्स और बाकी प्रिसीजन वेपन्स आ रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनका आउटलुक भी चेंज हो रहा है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर इज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, दी वैल्यू ऑफ नैरेटिव, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं और होनी भी चाहिए।
1: मुझे ये बताइए, अभी जैसे ईरान, अमेरिका, इसराइल को लेके जो भी वहाँ पे कॉम्बैट हो रहा है, या कहीं पर भी विश्व भर में यूक्रेन, रशिया को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो वहाँ पर भी हमारे कोई ना कोई इंटेलिजेंस, कोई कोई टैप तो रखते होंगे ना कि क्या क्या वेपन यूज़ हो रहा है, कौन सा वेपन कहाँ काम आ रहा है, कितना यूजफुल है नहीं है। एम आई राइट टू मैंशन लाइक दैट?
0: यस, बिकॉज
1: ओके
0: आर्मीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये नहीं
1: यस
0: कि सिर्फ हमारी सेना, बट वॉर्स कैसे लड़ी जा रही हैं उसकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन रिफाइन आर टैक्टिक्स, वी कैन रिफाइन द वे वी यूज़ आवर वेपन्स। तो दिस इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और सेना में लोगों को लगता है कि जब लड़ाई नहीं हो रही तो क्या कर रहे होंगे, जब हम लड़ाई नहीं हो रही थी तो हम लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं, और उस तैयारी में ये सब स्टडी करना भी शामिल है।
1: ओके सर, मैंने आपसे बोला था मैं सीधे सवाल से विलेन के पूछूंगा आपसे। 24 घंटे हम लोग चौकन्ने हैं बॉर्डर पे, अपनी स्काईज को देख रहे हैं कि कोई वहां से कोई वर्सेटाइल ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा।
0: हाँ, ऑब्वियसली, आई मीन ना सिर्फ स्काई, टुडे थ्रेट इज फ्रॉम एवरीवेयर, एंड जहाँ तक आपने जंग की बात की, मैं ये भी बोलूँगा कि इट्स नॉट आर्मीज विच फाइट ए वॉर, इट इज़ द नेशंस विच फाइट ए वॉर।
1: जी
0: तो हम सब चौकन्ने हैं, हम सबको चौकन्ना रहना भी चाहिए।
1: तो आपकी इंटेलिजेंस 24 घंटे काम करती है। कुछ देर पहले आपने कहा कि हम हमारे भी कुछ लोग जो हैं सरहद पार जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनके आते हैं, हमारे भी जाते हैं, बट लेट मी टेल यू दैट वी आर नॉट बॉर्डरिंग द वेस्ट, वी आर बॉर्डरिंग 360 डिग्री, हमें अपनी रखवाली करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि थ्रेट हमें एक ही कंट्री से, या हमें चौकन्ना नहीं होना बाकी जगह। तो हर जगह का पैटर्न अलग है इंटेलिजेंस का, क्योंकि भाषाएं अलग हैं, टेक्नोलॉजी किसी के पास सुपीरियर है, किसी के पास नहीं है।
0: देखिए, एडवर्सरीज डिफरेंट हैं, हालात डिफरेंट हैं, ज्योग्राफी डिफरेंट है, पॉपुलेशन डिफरेंट है, सो

0: भी डिफरेंट हैं, कहीं ना कहीं वो कन्वर्ज भी होती हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से, इंटेलिजेंस के लिहाज से, अब ये ज़रूरी है कि हम उन डिफरेंट पैटर्न्स को समझें, तो इसीलिए हर तरफ देखना पड़ता
1: इज इट इजी टू प्रिपेयर द स्पाइज और यू नो पीपल इन द इंटेलिजेंस, हाउ डिफिकल्ट अ जॉब इट इज किसी भी कंट्री के लिए?
0: है। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ चैलेंजिंग, इट इज़ डेंजरस, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।
1: एक टफ सवाल पूछ लूं सर,
0: पूछिए, आप
1: अगर
0: टफ ही सवाल
1: आपका
0: पूछ रहे हैं।
1: आप आपका मन करे तो जवाब दीजिएगा। जब हम कहते हैं हमें इंटेलिजेंस चाहिए, तो इट्स नॉट लिमिटेड टू आर ओन कंट्रीमैन, इट कैन एक्सपैंड टू वेरियस अदर नेशनैलिटीज ऑल्सो, इज दैट ट्रू सर?
0: हाँ, अगर आप देख ही रहे हैं रोज दुनिया में क्या हो रहा है,
1: जी
0: हर जगह कोई ना कोई एजेंट पकड़ा जा रहा है, सो यू यूज ऑल मीन्स एट योर डिस्पोजल।
1: राइट। एक रसगुल्ला खिलाने का मन कर रहा है आपको, कोई भी प्यार व्यार नहीं हुआ सर? यू वर नेवर रोमांटिक इन योर लाइफ?
0: देखिए, हर इंसान रोमांटिक होता है,
1: आप भी थे?
0: और थे नहीं हैं, लेकिन लेकिन किस मद्देनजर, किस मायने में है, वो थोड़ा सा
1: नहीं, बट
0: कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट, बट
1: देश
0: यस।
1: देश से बहुत प्यार है, माय फर्स्ट लव। ठीक है सर, आपने गाना अपनी प्लेलिस्ट में हमें दिया है, बाहों में चले आ, इसका क्या रीजन है?
0: हाँ, ये पुराना गाना है, अनामिका पिक्चर का, मूवी का,
1: कोई ना कोई तो रीजन
0: और
1: होगा सर।
0: हाँ, एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त थी, उनको बहुत अच्छा लगता था ये
1: ओहो
0: गाना।
1: थी सर?
0: हाँ थी, और
1: ओहो
0: वो गाती भी थी ये गाना, और मैंने आपको बाकी गाने भी दिए हैं जो बाकी दोस्तों के हैं, लेकिन आप इसी गाने को पकड़ के बैठ गए हैं, लेकिन ये
1: हाँ,
0: गाना बहुत अच्छा है, तो
1: बहुत
0: इसको
1: सॉलिड नंबर
0: इसको प्लीज सुनवाइए।
1: सर। वो जो लव स्टोरी थी वो आप

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीष जौली और एक और गाना है जिसकी ख्वाहिश यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर साहब ने रखी है और वो गाना बड़ा सॉलिड है, मिक्का सिंह का। व्हाट अबाउट दिस? आई मीन वी आर जस्ट गेटिंग क्लोज, यू नो, एट द ब्रिंक ऑफ द आर टू क्लोज दिस शो, बट व्हाट इज द सीक्रेट अबाउट दिस सॉन्ग सर? एकदम से मतलब पुरानी और फिर नया दिल में बजी गिटार।
1: नहीं, जब आपने मुझे बताया कि आप पसंदीदा गाने बनाएं
0: जी
1: बताएं, तो फिर एक मेरे अच्छे दोस्त हैं
0: जी
1: और हम दोनों मिलके गाना बहुत एंजॉय करते थे।
0: ओके,
1: तो बस उन्हीं की याद आ गई और उन्होंने बोला ये गाना अगर नहीं बजेगा तो फिर देख लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
0: सर आप परफेक्ट बंदे हो इंटेलिजेंस के लिए, सारी बातें बोल देते हो पर कुछ भी नहीं बोलते। मेरे एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं, उन्होंने कहा था अगर नहीं बजेगा तो बाहों में चले आओ, चलाया था बहुत अच्छा लगता था। पहला नशा चलाया क्योंकि वो अच्छा था, कजरा रहे डांस करते थे बस, वो बताया आपने कुछ भी नहीं, यू नेवर रिवील्ड, बट आई थिंक इंडियन आर्मी ने सही बंदे को चूज किया सर इंटेलिजेंस के लिए।

0: समय ना हमारे पास बहुत कम है। क्या होता है ना, जब हम अपने फौजी भाइयों के साथ, फौजी अफसरों के साथ जो प्रोग्राम करते हैं ना, हमें लगता है कि एक घंटा बहुत कम है, अब बातें और होनी चाहिए। बट यू आर बीन हर्ड अक्रॉस द बॉर्डर, यू आर बीन हर्ड अक्रॉस द ग्लोब। बहुत सारे SMS, व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ पर हमारे पास आए हैं, सब लोग आपको बधाई दे रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी प्राउड। लेकिन अब यहाँ से आपका सफर कहाँ जाता है, वेयर डू यू टेक योरसेल्फ फ्रॉम हियर?
1: हम तो फौज में कुछ कह नहीं सकते कि अगला मुकाम, अगला पड़ाव क्या होगा। तो जहाँ भारतीय सरकार, भारतीय सेना में भेजेगी वहाँ जाएंगे, लेकिन उम्मीद है कि वापस जम्मू एंड कश्मीर की तरफ रुख करेंगे और वही करते रहेंगे जो अब तक करते रहे हैं, उसी शिद्दत, उसी जुनून के साथ।
0: तो वो एक कहावत थी ना, इफ देयर इज हेवन ऑन अर्थ इज देयर इन कश्मीर, कुछ अलग बनाता है आपको। आपको प्यार हो गया उस जगह से, आप गए थे भारत माँ की रक्षा करने, आप रक्षा भी कराए और वहाँ अपना दिल भी दिया है कश्मीर को।
1: नहीं, दिल, हाँ दिल की तो बात है, जम्मू कश्मीर मुझे पसंद है, लेकिन जहाँ पर भी मैंने राजस्थान में नौकरी की है, मैंने अब्रॉड नौकरी की है, UN के साथ नौकरी की है, वहाँ भी अच्छा लगा। तो इट इज़ नॉट द प्लेस एक्चुअली, इट इज़ द पीपल अराउंड यू एंड हमारा जो एक इकोसिस्टम है भारतीय सेना का, वो बहुत मज़ेदार है, आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है।
0: आपने बहुत सारे जॉइंट एक्सरसाइजेस भी किए हैं अलग अलग नेशंस के, डिड विद द US?
1: हाँ, हमारे साथ जापान में मैंने गया हूँ, okay. मैं UK गया हूँ, मैंने सूडान में नौकरी की है यूनाइटेड नेशंस के साथ, और जहाँ पर भी हम गए वहाँ पर भारतीय सेना को एक अलग तरीके से देखा जाता था, बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था, बहुत प्राउड फील होता था, बहुत गर्व महसूस होता था हमारे को दूसरे देश में जाके हिंदुस्तानी सेना का नाम रोशन करने में, इट वॉज एक्चुअली ए ब्लेसिंग।
0: तो अभी चलते चलते, क्योंकि अब समय की पाबंदी है, प्रोड्यूसर साहब ने इशारा कर दिया बहुत जल्दी हमें ये प्रोग्राम क्लोज करना है, आपके फाइनल वर्ड्स, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है।
1: ये जो भारतीय सेना एक पेशा नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस देश की सेवा करें, एंड हमारे सैनिक, वी आर ब्लेस्ड टू हैव वेरी ब्रेव, वेरी करेजियस सोल्जर्स, और जो हिंदुस्तानी सेना और तीनों सेनाओं का मैं बात करूंगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, एंड ऑल यूनिफॉर्म फोर्सेस, आई थिंक वी जस्ट सर्व सेल्फलेसली, और हमें उम्मीद है कि इस देश और इस देश के नागरिक भी उसी शिद्दत के साथ देश की सेवा करेंगे जैसे हम करते हैं।
0: इट्स अ शेयर प्रिविलेज टू होस्ट यू सर,
1: it was extremely good, and the way people were reacting, I think it just motivates us even more. बहुत मजा आया।
0: There are so many जिनके मैं messages नहीं ले पाया, but Brigadier Sushil Tanwar जी, I think जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देश की तरफ से, ये मेरा सैल्यूट कबूल कीजिए सर।
1: Thank you so much, जय हिंद।
0: और इसी तरह हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

ये वक्त है एफएम रेनबो पर मुख्य समाचारों का। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्यवाही सहित कई मुद्दों पर विपक्षी हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने पर केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा। मुंबई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी। तमिलनाडु विधानसभा में 2026-27 का संशोधित कृषि बजट पेश किया गया। किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से सेवाएं बाधित। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए। ईरान ने कहा होर्मुज जलडमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सप्ताह समझौते की संभावना जताई। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया। और अंत में खेलों में जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के डिवीजन ए में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश सेमीफाइनल में पहुंचे। तो ये थे एफएम रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

जनाब, बहुत कुछ कहना है और जब बात शहर की हो तो बातों के ढेर लग जाते हैं। आकाशवाणी रेनबो सैटेलाइट्स प्रोग्राम, आपके साथ मैं प्रियंका मांगेन। आज है 6 अगस्त और इस वक्त वक्त पर नजर डाली जाए तो वक्त हुआ है 5:09 और पूरे 5 सेकंड, और अभी भी आसमान पर मध्यम रोशनी के साथ सूरज चमक रहा है तो साथ ही साथ बादल भी छाए हुए हैं। देखा जाए तो सुबह की शुरुआत बरखा की फुहार के साथ हुई और दिल्ली NCR में मानसून की मेहरबानी से आज का मौसम सुहावना बना रहा। सुबह से छाए बादलों और हल्की से मध्यम बारिश के कारण जनता जनार्दन को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई जनाब, और क्या चाहिए। जी हाँ, और इसी का असर रहा, इन्हीं जो फुहारों का असर रहा कि हवा में नमी का स्तर बढ़ गया और टेम्परेचर भी कम हो गया, टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो आज 33 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। वहीं आगे बढ़ते हुए मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले आने वाले दिनों की बात की जाए तो अगले आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने और हल्की बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं। जी हाँ, और गुड न्यूज़ ये है कि इस

से क्या होगा, टेम्परेचर तापमान में ज्यादा उछाल नहीं आएगा और मौसम मौसम मौसम लवली लवली लवली मौसम ऐसा रहेगा और हम तो यही चाहेंगे कि ये मौसम यूं ही बरकरार रहे, ये लवली लवली लवली मौसम ऐसा ही बरकरार रहे और बादलों से बारिश की बूंदें यूं ही छलकती रहे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
0: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

इंटरटेनमेंट की गिटार बज रही है आकाशवाणी रेनबो पर, और अब मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जिससे कि ये गिटार वाकई इतनी मीठी धुन बजाएगी कि आपका मन कविताएं गाने लग जाएगा। जी हाँ जनाब, जब हम स्कूल में रहते हैं ना तो बहुत सारी कविताओं के कॉम्पिटिशन्स होते हैं और हम यही वेट करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि कुछ हो तो हम कविताएं तैयार करें और फिर स्टेज पर जाकर सुनाएं। तो अब ऐसा ही एक मौका दे रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं और जो 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के विद्यार्थी हैं, वो भाग ले सकते हैं राष्ट्रीय काव्य उत्सव 2026 में। बहुत ही बेहतरीन पहल है ये, और इसमें आप कविताएँ सुना सकते हैं। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप को ये तय करना होगा कि आप 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बीच में आते हैं, और अगर आप आते हैं तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए आप पहुंच जाइए ndl.education.gov.in की वेबसाइट पर। ये राष्ट्रीय ई पुस्तकालय की वेबसाइट है, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और यहाँ पर ही एक पूरी लिस्ट दी गई है कविताओं की जो भारत के बहुत ही फेमस, बहुत ही राष्ट्र कवि रहे हैं और दूसरे भी जो कवि रहे हैं जिनकी NCERT और बाकी स्कूल्स में कविताओं का मंचन किया जाता है, पढ़ाई जाती है, उन सभी कवियों की कविताएं वहां पर हैं। उनमें से जो भी कविता आपको अच्छी लगे आप उससे रिकॉर्ड करिए। जी हाँ, आपको बनाना है वीडियो। वीडियो जो होगा वो होगा 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक का, और इसमें आपको कविता पाठ करना होगा उस लिस्ट से जो लिस्ट राष्ट्रीय ई पुस्तकालय में दी गई है कविताओं, उन्हीं कविताओं में से, और फिर इसको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करना होगा। और जो कुछ ख़ास बातें ध्यान में रखने के लिए आपको मतलब समझना होगा चीज़ों को, वो ये है कि ये जो कविता रहेगी वो 60 से 90 सेकंड के बीच में आपका वीडियो रहेगा, आपका जो चेहरा है बिल्कुल साफ होना चाहिए और आपकी जो वीडियो होगी उसमें आपका कमर तक का हिस्सा दिखना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड सफ़ेद हो, साथ ही साथ AI और पीछे जो म्यूज़िक आजकल सब लोग लगा देते हैं ना वो बिल्कुल नहीं लगाना, नहीं तो आपकी जो कविता है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल सही तरीके से, सादे तरीके से सारे जो नियम कानून है वो वहाँ पर मेंशन किए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद बस आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए राष्ट्रीय ई पुस्तकालय की वेबसाइट पर। और फिर जी हाँ, अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। जो भी पसंद की कविता है उसका अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 60 से 90 सेकंड्स का वीडियो बनाइए और उसे अपलोड कर दीजिए ndl.education.gov.in की वेबसाइट पर। और साथ ही साथ ये आप कर सकते हैं 15 अगस्त तक। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ बच्चे सोच रहे थे, क्योंकि इसकी पहले लास्ट डेट थी 31 जुलाई, तो कुछ बच्चे सोच रहे थे कि शायद उनके हाथ से ये मौका निकल चुका है, तो ये मौका दोबारा से आपके हाथ में आ चुका है। आपको करना क्या है, जी हाँ, वेबसाइट पर जाना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है और आप अपनी जो कविताएं हैं वो 15 अगस्त 2026 तक अपलोड कर सकते हैं। और बहुत ही ख़ास प्राइजेस रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, जी हाँ, 10 विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के मंच पर सम्मानित किया जाएगा, और जो बेहतरीन से बेहतरीन जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छी कविताएं वहां पर अपलोड की होंगी, और 10 में से जो विजेता होंगे उनके बाद जो स्टूडेंट बचेंगे उन्हें भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत मौका आपके हाथ में है, आप 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के विद्यार्थी हैं, तो बस पहुँच जाइए कहाँ, जी हाँ, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय की वेबसाइट पर।

इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट यानी कि इन्फोटेनमेंट का फुल ब्लेंड आकाशवाणी रेनबो। इस वक्त आपके साथ सैटेलाइट्स प्रोग्राम, साथ में मैं प्रियंका मामगेन। और सिटी में बहुत सारे इवेंट्स हैं जो आपके साथ होना चाहते हैं। बात की जाए इंडिया हैबिटेट सेंटर की, तो वहाँ पर एक एग्जीबिशन चल रही है, आर्ट एग्जीबिशन इकोज ऑफ टाइम, समय की गूंज, कन्वेंशन सेंटर फॉयर लोधी रोड। 11 बजे शुरू हो चुकी है, शाम को 7 बजे तक चलेगी और इसमें कई सारी पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आप बीकानेर हाउस के आसपास हैं तो वहां पर भी एक आर्ट एग्जीबिशन चल रही है। एग्जीबिशन का नाम है उस्ताद के नाम। ये सुबह 11 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम को 7 बजे तक चलेगी। यहां पर भी आप कई सारे आर्ट वर्क्स कला प्रेमी बनकर देख सकते हैं, निहार सकते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि 5:30 तो हो गए हैं, पहले पहुंचने में भी टाइम लगेगा, फिर 7 बजे तो ये जो एग्जीबिशन है वो क्लोज ही हो जाएगी, फिर दूसरे दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो एक ऐसा इवेंट आ रहा है त्रिवेणी कला संगम में जिसके लिए आप अभी से प्लानिंग करेंगे तो जब ये इवेंट होगा, जब ये ड्रामा होगा, तो आप टाइमली वहाँ पहुँच जाएंगे और आप अपने टाइम को प्लान करके वहाँ पर सही समय पर पहुँच सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित, जी हाँ, ड्रामा मोटे राम का सत्याग्रह। ये जो नाटक है, ये जो ड्रामा है, वो 9 अगस्त को होगा, शाम को 7 बजे, 7 बजे शुरू होगा त्रिवेणी कला संगम मंडी हाउस नई दिल्ली में, और बिल्कुल फ्री है। जो पहले आएगा वो पहले सीट पाएगा, इसलिए जल्दी से टाइम से पहले पहुंच जाइएगा जिससे कि आपको आगे की सीट्स मिल जाएं और आपको हर किरदार के हर एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, हर चीज़ का लुत्फ़ उठाने का मौका मिले। लेकिन एक बात है, यहाँ पे ऑडिटोरियम में जो एंट्री मिलेगी ना, वो 6:40 पर मिलेगी और 7 बजे ये ड्रामा शुरू होगा मोटे राम का सत्याग्रह। तो अभी बहुत टाइम है, आज 6 तारीख है, 9 तारीख को 7 बजे ये ड्रामा है त्रिवेणी कला संगम में, तो आप पूरी अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। और अभी भी वक्त है, अगर आप बीकानेर हाउस या फिर इंडिया हैबिटेट सेंटर की तरफ हैं तो आप 2 आर्ट एग्जीबिशन वहाँ एंजॉय कर सकते हैं।

0: जस्ट
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
3: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: कोयल सी तेरी बोली
5: हाय
4: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

फैशन का जलवा, जी हाँ, दौर कोई भी हो, फैशन का जलवा सर चढ़कर बोलता है। और ये भी सच है कि फैशन बदलता रहता है, और ये भी सच है कि बदलते फैशन के साथ चलने के लिए हम बहुत कुछ खरीद लेते हैं। अलमारियाँ कपड़ों से भरी रहती हैं, और फिर क्या होता है, कपड़े टाइट हो जाते हैं, लूज़ भी हो जाते हैं, छोटे भी हो जाते हैं, और फिर कई सारे ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें हम पहनते ही नहीं हैं, जिनका हम इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन अलमारियों में ये कपड़े भरे रहते हैं, इनके लिए जगह भी नहीं रहती, लेकिन समझ ही नहीं आता कि इन कपड़ों का क्या किया जाए। तो अब आप ऐसे कपड़े जिनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, आप ऐसे कपड़ों को डोनेट कर सकते हैं। जी हाँ जनाब, दिल्ली सरकार और DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक योजना लेकर आई है, अर्पण योजना है इसका नाम, और आप अर्पण डोनेशन सेंटर्स पर ये जो कपड़े हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। ये जो अर्पण सेंटर्स हैं वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो अलग अलग मेट्रो स्टेशन्स हैं वहाँ पर स्टैब्लिश किए गए हैं। लगभग 10 ऐसे मेट्रो स्टेशन्स हैं जहाँ पर इन सेंटर्स को स्टैब्लिश किया गया है, जिसमें है पंजाबी बाग वेस्ट मयूर विहार फेज 1, शालीमार बाग शाहदरा रोनी वेस्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ, हौसखास मेट्रो स्टेशन पर, लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर, मालवीय नगर द्वारका मेट्रो स्टेशन और मोहन स्टेट मेट्रो स्टेशन पर अर्पण सेंटर्स को, अर्पण डोनेशन सेंटर्स को स्टैब्लिश किया गया है, बनाया गया है। यहां जाकर आप वो कपड़े डोनेट कर सकते हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं। करना क्या होगा? जी हां, डोनेट करने का आसान सा तरीका है, आप इन सेंटर्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो एक QR कोड होगा उसको स्कैन करना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, अपना नाम डालना होगा, और आप कितने कपड़े, यानी जैसे वज़न, कितना कपड़ों का वज़न है, कितने वज़न के कपड़े देना चाहते हैं डोनेशन में, वो लिखना होगा, और बस उसको सबमिट करके आप वो कपड़े वहाँ पर भी, जो भी वहाँ पर पर्सन रहेंगे उनको डोनेट कर सकते हैं। और इन कपड़ों की आपको डिजिटल रिसीट भी मिलेगी कि आपने इतने वज़न के कपड़े इस सेंटर पर, इस दिन, इस टाइम पर डोनेट किए हैं। है ना मज़ेदार बात? अब आप नेकी भी कमा सकते हैं। और ये योजना जो है, अगर इस योजना की बात की जाए तो अभी 2 सेंटर्स में शुरू हो चुके हैं, मयूर विहार फेज 1 में और पंजाबी बाग वेस्ट में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मयूर विहार का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर जो अर्पण डोनेशन सेंटर है उसमें 2 दिन के अंदर ही जो लोगों ने कपड़े दान किए हैं वो 100 किलो से ज़्यादा कपड़े दान किए हैं। ये कपड़े कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंचेंगे जिन्हें इनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कई बार फ्लड आ जाते हैं, कई बार अर्थक्वेक्स आते हैं, और ऐसे में वहां पर ये कपड़े पहुंचाए जाएंगे। साथ ही साथ बहुत बड़ी राहत मिलेगी, पोल्यूशन नहीं होगा इन कपड़ों से, क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं कि लोग जब इस्तेमाल नहीं हो रहे होते हैं कपड़े तो किसी को देते हैं, और वो कहीं और सड़कों में पड़े मिलते हैं हमें, या फिर पार्क्स में मिलते हैं, और इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। और साथ ही साथ कुछ जो बहुत ही ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत गरीब हैं और जो स्वयं सहायता समूह की मदद से कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उनको भी ये कपड़े रॉ मटेरियल के तौर पर दिए जाएंगे। यानी कि आप बहुत सारी नेकी कमा सकते हैं, दुआएं कमा सकते हैं, बस आपको पहल करनी है, आगे बढ़ना है और पहुंचना है उन स्टेशंस पर, मेट्रो स्टेशंस पर, जहाँ पर ये अर्पण डोनेशन सेंटर्स खोले गए हैं।

एंटरटेनमेंट की बातें बहुत हो चुकी हैं, चलिए कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें भी कर ली जाएं। तो जनाब, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से पोस्ट ग्रेजुएट जी हाँ प्रोग्राम्स करना चाहते हैं 2026-2027 के सत्र के लिए, तो जी हाँ आप कर सकते हैं। एक साल का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम रहेंगे ये, MA हिंदी में रहेगा, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिकल साइंस, MA संस्कृत और MCOM, इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 3 अगस्त से एडमिशन्स जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और ये 14 अगस्त तक चलेगा। तो आप पूरी जानकारी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। 14 अगस्त लास्ट डेट है, इससे पहले ही आपको सबमिट करनी होगी अपनी एप्लीकेशन। इसी के साथ अब वक्त इतना हो चला है कि और कुछ कहने का वक्त ही नहीं बचा, लेकिन फिर भी मैं आगे बता दूँ कि आगे जो प्रोग्राम्स आएंगे वो कौन से रहेंगे। तो 6 बजे मैसेज मसाला मिक्स लेकर आएंगी चंद्रानी मुखर्जी। इसी के साथ 7 बजे का प्रोग्राम जो रहेगा वो वेस्टर्न म्यूजिक का रहेगा, हिट्स एंड मेमोरीज, और इसमें आपके साथ सुहानी रहेंगी। साथ ही 8 बजे का टाइम रहेगा म्यूजिक मस्ती का, और इसमें एक बार फिर चंद्रानी मुखर्जी आपके साथ जुड़ेंगी। और 9 बजे जी हाँ 9 बजे रेशमा फारूकी लेकर आएंगी आपके लिए आपकी याद आती रही। इसके बाद एक बार फिर सुहासिनी आपके साथ जुड़ेंगी वेस्टर्न म्यूजिक के प्रोग्राम ऑल दैट जैज के साथ, और फिर रेशमा फारूकी आपके लिए लेकर आएंगी रंगे महफिल 11 बजे रात को। तो आप यूं ही अपना साथ रेनबो के साथ बनाए रखिए और इन्जॉय करते रहिए, बेहतरीन से बेहतरीन गाने, बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके साथ आती रहेगी। इसी के 7 अगस्त का महीना ये हम सभी जानते हैं, और 9 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तो आप भी प्लानिंग कीजिए कैसे आप अपने घर में तिरंगा फहराएंगे और इस अभियान में अपनी हिस्सेदारी जरूर दें और अपनी सेल्फी भी अपलोड करें। इसी के साथ मैं प्रियंका मामगन लेती हूँ विदा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ रहेंगी चंद्रानी मुखर्जी। जय हिंद।

नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्यवाही सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हमले के बाद दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र कल से शुरू होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने पर केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा। मुंबई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने एमएसएमई को मजबूत करने, प्रौद्योगिकी नवाचार तथा बेहतर बाजार एकीकरण के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। मेटा के सीईओ मार्क जुगरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी। तमिलनाडु विधानसभा में 2026-27 का संशोधित कृषि बजट पेश किया गया। किसानों के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा। महाराष्ट्र के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में रेजिडेंट डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल की सेवाएं बाधित। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। ईरान ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सप्ताह समझौते की संभावना जताई। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया। और खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के डिवीजन ए में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश सेमीफाइनल में पहुंचे। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार और एक घंटे तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो लगातार।

0: वाणी आकाशवाणी
1: और हर शाम की तरह आज भी हम हाजिर हैं सिर्फ आपके लिए आपके चैनल आकाशवाणी रेनबो पर लेकर के प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं दोस्तों कि हम सभी अपने घर को सुंदर और साफ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, जानने की क्या बात है, ये तो हम रखते ही रखते हैं, लेकिन अपने घर के बाहर, अपनी गली, अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए आप क्या, कैसे और कितना योगदान देते हैं? क्या आपके छोटे छोटे प्रयास आपके आसपास के माहौल को बदल रहे हैं? हमें अपने विचार और अनुभव जरूर बताइए। अपने मैसेजेस आप हमें भेज सकते हैं 9868107070 पर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज की शाम चांद के साथ।

और दोस्तों यकीन जानिएगा, इस दिल में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपकी दोस्ती है, आपका साथ है, आपका प्यार है, इसीलिए तो हम हर दिन हर घंटे हर वक्त आपके साथ आपके आसपास रहते हैं। और बस लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर आ जाएंगे आपके पास। सुनते रहिए हमारे साथ, आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और आज हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि अपने घर को तो हम सभी साफ रखते हैं, लेकिन क्या आप अपने आसपास अपनी सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों में क्या कुछ ऐसा करते हैं, क्या कुछ ऐसी आपकी अपनी तरफ से पहल होती है कि आपकी गली, आपकी कॉलोनी, आपकी सोसाइटी और बेहतर हो सके, आप क्या करते हैं, यही बस आपने जानना चाहा है। लेंगे ब्रेक और उसके बाद एक प्यारा सा ट्रैक और उसके बाद हम आपके साथ ही होंगे। दिल्ली

और दोस्तों आज आपके साथ आपके चांद है, लेकिन आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उसके बाद हम फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन हमारी कोशिशें लगातार जारी है कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि कोई आपसा नहीं है, क्योंकि कोई आपसा है ही नहीं हमारे आसपास।

और दोस्तों आप सभी कोई नहीं है, क्योंकि हम सभी एक साथ मिलकर यही कोशिश करते हैं कि किस तरह से अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की जगह को, अपने आसपास की हर सरजमी को किस तरीके से बहुत खूबसूरत बना के रखें अपने घर की तरह। अगर आपकी तरफ से कोई ऐसी पहल है, कोई ऐसा काम है, तो आप हमसे आज की शाम साझा कर सकते हैं जो आप कर रहे हो। तो चलिए आज हम आपसे जो जानना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे मैसेजेस आ गए और मैसेजेस बॉक्स अब बिल्कुल ओपन है आपके लिए। 9868107070 इस नंबर पर मैसेज कर आप अपने दिल की बात हमें बता सकते हैं। पहला मैसेज हमारे पास मोहम्मद सरफराज आलम जोकिहार दशना बाजार से आया है, अररिया बिहार से आया है। लिखते हैं कि मैं अपने गली मोहल्ले में स्वच्छता बनाए रखने के लिए हमेशा कूड़ा डस्टबिन में ही डालता हूँ, दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता हूँ, समय समय पर सफाई अभियान में भाग लेता हूँ और लोगों से ये अपील करता हूँ कि वे प्लास्टिक, गंदगी और कचरा इधर उधर ना फेंके। मेरा मानना है कि स्वच्छ गली, स्वच्छ मोहल्ला और स्वच्छ भारत हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात कही है आपने सरफराज आलम जी। हेलो मैम, गुड इवनिंग, आई एम किरण फ्रॉम हरिद्वार। बहुत अच्छा लगा किरण जी, आपने ये मैसेज ही कर दिया कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। इंसान को खुद को बदलने की कोशिश की आवश्यकता है, सोसाइटी तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सही बात कही है, नाम भी अगर आप बता देते तो हमें बहुत अच्छा लगता। मैसेज मसाला मिक्स में, स्ट्रीट में कोई भी स्ट्रीट लाइट ख़राब होती है तो मैं ही कंप्लेन करके उसे ठीक करा देता हूँ, फिर चाहे वो मेरे साइड की हो या मुझसे दूर हो, सभी मुझसे कहते हैं और काम हो जाता है। राकेश वोरा मुरारी दिल्ली से ऐसा लिखते हैं। राकेश जी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, सीरियसली यकीन जानिएगा कि आप अपने मोहल्ले के ही नहीं, दूसरी जगह पर अगर दूर होता है तो भी लोग आके आप ही से बोलते हैं और आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। नरेंद्र सोनी देवगढ़ पटियाला से लिखते हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शुभ संध्या रेडियो के चांद को, आज की शाम फुल एनर्जेटिक और सुहानी होने वाली है। जी हाँ, हम अपने आस पास सफाई, स्वच्छता और सुरक्षा दोनों को बहुत बहुत ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छा करते हैं जी। और सबसे बड़ी बात है, अगर हम अपने हाथ से कोई कूड़ा सड़क पर ना फेंके या कोई गंदगी ना करें, अगर हर इंसान ये हिस्सा ही सोचे तो यकीन जानिएगा कभी हमारे आसपास इतना गंदा होगा ही नहीं। गुड इवनिंग आरजे जी फ्रॉम हितेंद्र दास स्टेट आसाम से, गुड इवनिंग इन्होंने कहा है। गुड इवनिंग हितेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत। दिनेश नाहर सिंह पोली कालू सुधीर अजय गोकुलपुरी दिल्ली से लिखते हैं, गुड इवनिंग चांद, गुड इवनिंग, आप जल्दी जल्दी आया करो। अच्छा जी, टॉपिक तो हमने बता दिया आपको, हम बस आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आप अपने घर की सफाई रखते हो तो मोहल्ले की सफाई रखने के लिए आपकी तरफ से क्या पहल होती है, बस यही हम आपसे जानना चाहते हैं। और ये सारी बातें आप बिंदास होकर हमें बता सकते हो आकाशवाणी रेनबो पर। मैसेज मसाला मिक्स में, चांद है आपके साथ।

0: पंकज जी का अमरावती से मैसेज आया हुआ है और बहुत सारे मैसेजेस के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन हम लेंगे एक ब्रेक और उसके बाद हाजिर हो जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ। आप सुन रही आकाशवाणी रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, आपके साथ है आवाज की दुनिया का आपका अपना चांद चांद मुखर्जी। और चांद मुखर्जी आपसे जानना चाहती है कि जैसे आप अपना घर साफ रखते हो, क्या आप अपनी सोसाइटी, अपनी गली, अपनी कॉलोनी को भी साफ रखने की आपकी तरफ से पहल होती है? बस यही बताना है आपको 9868107070 पर।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: और दोस्तों, जैसे कि हमने कहा था कि ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे, पंकज जी का अमरावती महाराष्ट्र से मैसेज आया। गुड इवनिंग चांद, गुड इवनिंग। मैसेज मसाला मिक्स में मैं अपने बताना चाहते हैं कि मैं अपने गांव की गली कॉलोनी को साफ रखने के लिए कूड़ा कचरा कचरे की जगह में डालता हूँ और बाहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखता हूँ। अगर गली में कुछ सामान रखा है तो उसे सही जगह पर रखता हूँ, क्योंकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। अगला मैसेज, ओहो इतने सारे मैसेजेस किए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इंजॉय कर रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स को। चांद, हम बहुत स्वच्छता रखते हैं घर पर भी।

और बाहर पर भी विजेंद्र लिखते हैं अंकोला महाराष्ट्र से, गाने बहुत खूबसूरत हैं, मैं खेत में इंजॉय कर रहा हूँ। क्या बात है, आप इंजॉय करें, आप खुश रहें, बस हम सब की यानी आकाशवाणी के जितने भी आरजेएस हैं सबकी दिली ख्वाहिश है यही रहती है कि आप हमेशा खुश रहें, इंजॉय करते रहें और हमारा साथ आपके साथ यूं ही बना रहे। घर के बाहर जाते वक्त केले के छिलके वेस्ट पैकिंग मटेरियल हमेशा डस्टबिन में डालता हूँ, जिससे सड़क पर गंदगी नहीं फैलती। चाहूँगा इस अच्छी आदत को सभी अमल करें तो सफाई रह सके। अनिल शर्मा जी लिखते हैं, जो वरिष्ठ हमारे श्रोता है सरिता विहार से, बहुत बहुत अच्छा आपने मैसेज किया है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जोया मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं, वी पीपल इन ऑस्ट्रेलिया मेंटेन आर फ्रंट यार्ड बाय कीपिंग द ग्रास डाउन एंड वी डोंट थ्रो द बिन ऑन रोड्स, इंस्टेड वी हैव बिन ऑन रोड्स मेंटेन बाय गवर्नमेंट, सो दिस इज हाउ वी कॉन्ट्रीब्यूट अलॉन्ग विद गवर्नमेंट। जोया लिखती है मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से, समथिंग वेन अच्छा ओके जोया जी बिल्कुल सही बात कह रही है। और दोस्तों अगर हम सब भी अब कोशिश करें ना कि हम बाहर, आप सड़क पर निकलते होंगे, बड़ी बड़ी सड़कों को छोड़ दिया जाए, अगर हम गलियों में जाते हैं ना तो वहाँ तो इतनी ज़्यादा कूड़ा कचरा सब पड़ा रहता है। अगर हम सारे लोग मिलकर ये मतलब बिल्कुल प्रॉमिस कर लें कि हम कभी कोई बाहर कचरा तो फेंकना ही नहीं है, या तो डस्टबिन में फेंकेंगे बाहर जो आती है डस्टबिन उसमें फेंकेंगे, या अपने घर के डस्टबिन में रखेंगे, बाहर नहीं रखेंगे, तो हम लोग की सड़कें भी, हमारे इंडिया की सड़कें भी बहुत साफ सुथरी और प्यारी लगेंगी, ऐसा हमें लगता है। आपकी मधुर सुकून देने वाली आवाज़ सुनकर हमेशा बहुत अच्छा लगता है, आपका हर कार्यक्रम दिल को छू जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर संभव हो तो बताइए कि आज के कार्यक्रम का टॉपिक क्या है, मैं उसी विषय पर अपना संदेश भेजना चाहता हूँ। सुरेश त्यागी जी ने लिखा है ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली से, सुरेश जी आपने मैसेज किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जैसे कि पता ही है, हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि घर में जैसे आप साफ सफाई रखते हो, वैसे ही अपने अगल बगल में, गली मोहल्ले में, सोसाइटी में आप सफाई के लिए अपनी तरफ से क्या कदम उठाते हो, बस यही आज हम आपसे जानना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि बचपन में जो सिखाया जाता ना हमें कि सफाई रखनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए, अगर हम चांद अगर बोले तो हमने आज तक बचपन से जब से हमने होश संभाला और जब से हमको पता चला है कि बाहर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, हमने आज तक कभी कभी कभी कभी भी रास्ते में कभी कोई कूड़ा नहीं फेंका है, अपनी तरफ से हम बिल्कुल श्योर हैं। आप क्या करते हो आप हमें बता सकते हो, बस बदलना नहीं है, इसी चैनल पर रहना है, आकाशवाणी रेनबो पर। मैसेज मसाला मिक्स आज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: दोस्तों प्रोग्राम कोई भी हो लेकिन आपका साथ हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारे साथ हैं इस वक्त ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल जी, सीमा जी, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी जी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह जी और सारे लोग हमारे साथ हैं और लगातार हमें सुन रहे हैं, ऐसा उन्होंने मैसेज किया है। अगला मैसेज हमारे पास आया है, नमस्ते फिल्म रेनबो, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम घर से जितना भी बचा हुआ खाना है और जो छिलके सब्जियों के फलों के होते हैं उन सबको इकट्ठा करते हैं और उनको एक थैली में ले जाकर गाय को खाने के लिए दे देते हैं। थैली को हम वापस संभाल कर प्रॉपर एक प्लास्टिक वेस्ट वाले बैग में डालते हैं ताकि वो रिसाइकल हो सके और उसे गाय खाकर बीमार ना हो जाए और गाय को कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार गाय और अन्य जानवरों के लिए फूड की व्यवस्था कर रहे हैं और पर्यावरण को भी बचा रहे हैं, क्योंकि यही चीज अगर कूड़े में

डाली जाती तो ये सड़ता और वेस्ट होता है, इसके बदले गाय से खाकर हमें दूध गोबर देती है। तो ये सारी यूजफुल चीज़ें हमें उससे मिलती हैं और पर्यावरण में भी, वेस्ट डिस्पोजल में भी ये हेल्पफुल हो जाता है। धन्यवाद मनीष शर्मा और दिनेश मीणा दिल्ली फरीदाबाद से लिखते हैं। मनीष जी, दिनेश जी और मीणा जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर हम सब इस बात का ख्याल रखें कि हमें आसपास कोई गंदगी नहीं करनी है, कोई कूड़ा नहीं फेंकना है, तो आप खुद सोचिएगा कि अगर मान लो कोलकाता से कोई आता है या किसी भी बाहर जगह से कोई आता है, राजस्थान से कोई आता है, दिल्ली आता है, या दिल्ली से कोई बाहर जाता है, तो उसको अपना इंडिया इतना साफ मिलेगा, इतना साफ मिलेगा, और उसको सफाई को करने के जिम्मेदार हम खुद होंगे। हम खुद अपने भारत को इतना खूबसूरत बना सकते हैं। अगला मैसेज हमारे पास रंजीत कुमार मंडल जी का सिकटी अररिया बिहार से आया। लिखते हैं कि हमारे विद्यालय की शुरुआत ही साफ सफाई से होती है। हम परिसर और वर्ग कक्षा की सफाई करते हैं, इससे बच्चों के साथ साथ समुदाय में भी स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच आती है। रंजीत कुमार मंडल जी, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांति नगर सोनीपत से लिखते हैं कि ये क्या लिखती हैं, इनका मैसेज काफ़ी नीचे आया हुआ है जी। लिखते हैं कि आपको भी हमारा सादर प्रणाम। लिखते हैं कि साफ सफाई से रहने और घर बाहर को साफ सफाई से रखने का ये संस्कार तो हमें माता पिता से मिलता है, ये संस्कार हम अपने बच्चों को भी देते हैं। और लिखते हैं कि बहुत आगे इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, सोनीपत से इन्होंने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को कि आपने मैसेज किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैसेज हमारे पास जावेद आलम जी मोहम्मद जी का आया है जयपुर से। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है तो मन भी एक खुशी होती है ऐसी कि किसान अपने खेतों को देखकर झूम उठता है, हरे भरे खेत देखकर। ये तो बिल्कुल सही बात कही है आपने, किसान तो झूम ही उठता है, साथ में अगर हम अपने आसपास सफाई रखें ना, तो घर से बाहर कदम रखते ही दिल ऐसे झूमने लगेगा, ऐसा अच्छा लगेगा कि वाओ क्या प्यारी जगह हमने खुद बनाई है। उपदेश शर्मा लिखते हैं जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ से, स्वच्छता में भगवान और दिव्य शक्तियों का वास होता है। बिल्कुल, ये सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन उसे अप्लाई करना भी हम सबका ही फर्ज है। और अगला मैसेज हमें आया है, हमारे पास आया हर्षवर्धन पांडे जी का जिला पन्ना से मध्य प्रदेश से। लिखते हैं आज के टॉपिक स्वच्छता से संबंधित है, हो हमें अपने घर मोहल्ले की साफ सफाई रखना चाहिए। घर मोहल्ले को जितना साफ सफाई से रखेंगे, हमारे घरों में मोहल्ले में बीमारियां नहीं फैलेंगी और हमें बरसात में होने वाली बीमारियां मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया से मुक्ति मिलेगी। हमें मोहल्ले की नालियों की सफाई हर हफ्ते करवानी चाहिए, जिससे नालियों से आने वाली बदबू ना निकले, मैं मिल सके, यही मेरा विचार है। नियमित श्रोता है हर्षवर्धन पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैसेज करने के लिए। देखिए, ये अब तो हम सभी जानते हैं कि ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करके करना चाहिए, लेकिन आप अपनी तरफ से कौन सी पहल करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे दोस्तों ने मैसेज किया कि वो बिल्कुल सफाई करते हैं और जो सब्जियां निकलती हैं वो प्रॉपर ले जाके गाय को या किसी भी जानवर को, किसी भी जीव को देते हैं, जिससे वो प्लास्टिक वेस्ट ना उसके पेट में चला जाए। तो बस हम यही आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी तरफ से क्या पहल होती है। आकाशवाणी रेनबो सुन रहे मैसेज मिसाला मिक्स में, चांद मुखर्जी है आपके साथ, और आज हमने आपसे जानना चाहा है कि बाहर की साफ सफाई में आपकी तरफ से क्या पहल होती है।

0: और दोस्तों आपके बहुत बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर हो जाएंगे आपके मैसेजेस के साथ। आप सुनते रहिए आकाशवाणी, रेनबो चांद है आपके साथ।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: आकाशवाणी का आराधना चैनल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: और दोस्तों, बिंदास बोल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि आप हमारे किन किन कार्यक्रमों से कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। और अभी तो आप हमारे से जुड़े हुए हैं अपने मैसेजेस के जरिए। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और आज हमने आपसे जानना चाहा है कि आप अपने गली मोहल्ले सोसाइटी में किस तरीके से, क्या सफाई की तरफ से, अपनी तरफ से क्या पहल करते हैं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। मुनीश इदरीसी रामपुर बिलासपुर से मैसेज लिखते हैं, मुझको कोई कूड़ा करते हुए दिखता है, उसको मना करता हूँ। खास करके छोटे बच्चों को बहुत प्यार से समझाता हूँ जो वो समझ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा करते हैं मुनीश जी, आप इसी तरह अपने काम में लगे रहिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है कि कैन यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोग्राम, मे बी ट्यूजडे थर्सडे 4 to 5 लिसनिंग फ्रॉम USA। जी पूरी हम कोशिश करेंगे, हमारे जो इंजीनियर्स सर लोग हैं वो सुन रहे होंगे इस बात को और वो ज़रूर इस बात की ओर पहल करेंगे। लिखते हैं मैसेज हमारे पास जो आया है। ओके, अगला मैसेज हमारे पास कौन सा आया है, बहुत ऊपर है, हम जाते हैं। लिखते कि हेलो मैम, आई एम भुवनेश फ्रॉम अशोक विहार दिल्ली, हाउ आर यू। टुडेज टॉपिक, आई वुड लाइक टू से दैट टू मेक माय सोसाइटी बेटर द थिंग विच आई डू इफ दैट आई हैव नॉट ओनली स्टॉप्ड यूजिंग प्लास्टिक वाटर बॉटल्स बट आई टेल एवरीवन अराउंड मी नॉट टू यूज प्लास्टिक बिकॉज एवरीवन नो दैट प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। बिल्कुल आपने सही बात कही है भुवनेश जी, प्लास्टिक बहुत बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम तो तभी इंसान हैं, हम बच जाएंगे, लेकिन वो जो जानवर है जो जानते ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ये खानी चाहिए या मुंह में रखनी चाहिए, उनके लिए बहुत हार्मफुल है। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है इंसान होने के नाते कि जो हम चीज़ समझते हैं उससे हम दूसरों को तो कम से कम बचा लें, है ना। मेरे अंदर तो सफाई का इतना कीड़ा है कि इसी बात से कई बार लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं। कौन है ऐसे, किरण फ्रॉम हरिद्वार से। जी कीड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन आपके इस कीड़े की वजह से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अपनी परेशानी से किसी को परेशान करना ही सफाई नहीं होती। अगर आप सफाई की वजह से दूसरों को सुख मिल रहा है, उसको उनको सफाई दिख रही है, उनकी आंखों को अच्छा लग रहा है, तो इट्स मच मच बेटर देन एनीथिंग। नया पारा भी रही जिला बलोद से बसंत कुमार ठाकुर जी लिखते हैं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी आपको। सावन के महीने का कितना लुहावना मौसम है, प्रकृति भी हरी भरी है, जहाँ तक नज़र फेरो हरी हरी ही नज़र आएगी। बिल्कुल हरी हरी, हरी का नाम भी हम लोग इसी बहाने ले लेते हैं, हरी हरी हरी। और चांद, गुड इवनिंग, कैसे हो आप, हम बहुत अच्छे हैं। हम गली की महिलाएँ अपनी गली को वर्दी साफ सुथरे से रखते हैं, जो कहना होता है, जो भी खाना होता है वेस्ट होता है, हम एक डब्बे में उसको इकट्ठा करते हैं और पशुओं को चारे में रख देते हैं। नाली की सुधी बनी हुई है, जितना भी कूड़ा कचरा होता है हम सभी महिलाएं सड़क पर नहीं डालते, हम अपने आप अपने बोरों में भरकर जिसके गली आती है, जैसे ही गाड़ी आती है हम गाड़ी में लोड कर देते हैं। ना तो गली के अंदर कोई पन्नी मिले, ना कोई कचरा दिखाई देता है। सब बोलते हैं कि आपकी गली सबसे बेस्ट है। दीपा बिजनौर से, क्या बात है दीपा जी। और पता है दीपा जी क्या होता है कि ना, जो घर की लेडीज़ होती हैं उनको तो ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन जो पुरुष हैं जो बाहर ऑफिस में जाते हैं, पता चला कोई चिप्स का पैकेट खाया और खा के यूं ही सड़क पर फेंक दिया। हमने कई बार आंखों से देखा है, हमने कई बार उठा के, आप बिलीव नहीं करोगे, उठा के हमने फेंका भी है डस्टबिन में। और कई बार रास्ते में बीच में बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, उनको भी उठा कि हमने फेंका है कि किसी के लग ना जाए, अंधेरे में कोई देख ना ले। तो बस ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये हम लोग की सबकी कोशिश है एक साथ मिलकर कि हम अपने आसपास के वातावरण को एटलीस्ट अपने देश को किस तरह से सुरक्षित रखें, कैसे सफाई रखें, सुरक्षित

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता

सफाई से, गंदगी से सुरक्षित रखें। मेरी प्यारी पूर्णिमा के चांद को गुड इवनिंग डियर। अंदर की सफाई के साथ बाहर भी डेली क्या दीवार धुलवा देती हूँ। अच्छा जो भी है आप कुछ फिनॉल डलवा देती हैं और आमने सामने वाले भी ऐसे ही करने लगे हैं डियर डियर। अच्छा मोहल्ले में लाइट या पानी की प्रॉब्लम हो या स्वीपर ना आए तो उसी डिपार्टमेंट में फ़ोन करके सॉल्व कर देती हूँ। इतनी आदतों से पूरे मोहल्ले वाले खुश हैं। मिसेस धर्म भाटिया जी रोहतक से ऐसा लिखती हैं। क्या बात है जी, आप ऐसा उद्देश्य ऐसा खुद को दिखा देती हैं कि दूसरे भी बहुत आपसे प्रभावित हो जाते हैं। बहुत बहुत बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस, लेकिन हमें माफ़ कर दीजिए दोस्तों, टाइम नहीं है हमारे पास। सिर्फ एक घंटे के बाद, पूरे घंटे के लिए आपसे मिलने के लिए हम आएंगे। बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर से मैसेज जो दिख रहे हैं कि मैसेज पढ़ लीजिए, लेकिन देखिए दोस्तों टाइम नहीं होता ना। अगली बार आएंगे तो ज़रूर आप सबके मैसेजेस शामिल करेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आप सब हमारे साथ जुड़े रहे और जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे और जुड़े ही रहिएगा, ऐसी आपसे हमारी दरख्वास्त है। और अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। आपसे चांद की मुलाकात होगी सिर्फ एक घंटे के बाद। पूरे घंटे के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: Well, that was Joni singing Remember Me. And coming back, we have a few messages. We have a message from Rollin. He says, hi, nice to be with you again. Love and regards. And he wanted to listen to a program from police. And he says, and Colonel Shiva from Secunderabad says that tuned in to Hits and Memories on the Hiroshima Day. Can we hear Heal the World? And of course, from... And he says more feedbacks and more reality. And also I have a message from Praveen Chauhan from Madhya Pradesh. And he says good evening to all the listeners who are tuned into the program. And let's move on and take a little break and we'll be back with more music.
1: Roz subah savere 7 se 9 ki mulaqat. Thodi gapshap, thodi kaam ki baat. रेनबो की सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ऑलवेज वेयर एवर यू आर 102.6 आपके लिए
2: तो पार्टी शुरू हुई है
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती
5: आज की रात मजा
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा
3: म्यूजिक मस्ती
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ मौका खास है
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM।

नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। क्षमा कीजिएगा, शाम के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्यवाही सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने पर केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा। बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। कोयला मंत्रालय के अनुसार जुलाई में कोयला उत्पादन और प्रेषण बढ़ने से देश में बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति पर्याप्त रही। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएसपी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी। तमिलनाडु विधानसभा में 2026-27 का संशोधित कृषि बजट पेश किया गया। किसानों के लिए नई नई योजनाओं की घोषणा। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए हैं। वस्त्र मंत्रालय कल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में रूस की तेल रिफाइनरियों की निशाना बनाया। ईरान ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सप्ताह समझौते की संभावना जताई। और खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के डिवीजन ए में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश सेमीफाइनल में पहुंचे। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार और आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो हमारे साथ लगातार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के। और हर बार दोस्तों यकीन जानिएगा, जितनी बार भी आपसे मुलाकात होती है, हमारे दिल में इतनी खुशियों के गुब्बारे फूलते हैं कि हम आपको क्या बताएं। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम शुरू हो चुका है म्यूज़िक मस्ती, और इसमें बहुत सारी हम मस्ती करने वाले हैं, और इस मस्तियों का सिलसिला हम शंभू को पुकारते हुए करेंगे, शंभू भोले बाबा को, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे महीने में कांवड़ियों की यात्रा भी लगातार बनी हुई है हमारे आसपास के क्षेत्रों में। और ऐसे में शुरुआत के साथ हम सबका जोश ऐसा बनने वाला है ना कि हम सब मस्ती में झूमने वाले हैं। म्यूजिक मस्ती में आज की शाम आकाशवाणी रेनबो पर चांद चांद मुखर्जी है आपके साथ।

और दोस्तों म्यूजिक मस्ती में लगातार आपका साथ जो बना हुआ है, आपके मैसेजेस जो मिल रहे हैं, सच में आई एम वेरी वेरी वेरी हैप्पी। डांस हम कर ही रहे हैं आपकी तरह।

0: थोड़ी सांस ले लीजिए जनाब, फिर आ जाइएगा, स्टेज आप ही के लिए रहेगा।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
0: आकाशवाणी रेनबो पर म्यूजिक मस्तिया चांद के साथ।

0: मौसम कोई भी हो, मजा हमें तभी आता है जब हमें आपका साथ मिलता है।
1: मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो।

0: सनी बिमला पुहाल अम्बाला कैन से और प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से और भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें लगातार सुन रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम बताएंगे, लेकिन तभी बताएंगे जब आप हमें सुनते रहेंगे म्यूजिक मस्ती में आज की शाम।
1: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
0: आकाशवाणी रेनबो।

0: से मेरे उफ
1: उफ। आप यही रहिएगा, हम भी यही रहेंगे, क्योंकि हम तो आपको छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल
1: तो रेडी हो जाइए।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: म्यूजिक मस्ती आज चांद मुखर्जी के साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, फारूक अली एंड ग्रुप और अब्बासी परिवार ने कस्बा गुन्नौर यूपी से, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से और सनी कपूर जर्मनी से। भाई इतने दूर दूर से लोग हमें सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए।

लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: हम अभी आते हैं, आपकी भी जाने की नहीं हो रही है।
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

दोस्तों, एज चाहे कोई भी हो आपकी, लेकिन अपने बॉडी के मूवमेंट को बनाए रखना ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ऊपर वाले ने ऐसी दी है कि हम इसको जैसा करते हैं ना, ये वैसी वैसी ही उसकी आदत हो जाती है।

दोस्तों नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर सुहासिनी जी आ चुकी है और आपसे हमारी मुलाकात होगी फिर कभी ना कभी कहीं ना कहीं रेनबो के ही किसी न किसी प्रोग्राम में। तब तक आपको क्या करना है, तब तक आपको सुनना है और सुनते ही चले जाना है आकाशवाणी का रेनबो चैनल, और खुश रहना है और अपने आसपास जुड़े लोगों को भी हमेशा हमेशा खुश रखना है। तो क्या बाप का चांद जाए। बाय।

और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी रेनबो चैनल पर अभी तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। मध्यम दूरी के अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा में सफल परीक्षण। कोयला मंत्रालय के अनुसार जुलाई में कोयला उत्पादन और प्रेषण बढ़ने से देश में बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति पर्याप्त रही। झारखंड और केरला में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने पर केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। वस्त्र मंत्रालय कल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में रूस की तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया। ईरान ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर ओमान के साथ समझौते का मसौदा अंतिम चरण में। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी सप्ताह समझौते की संभावना जताई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 6वीं राष्ट्रीय सांसद बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। और खेलों में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रशिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो ये थे अभी तक के रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर आपका हम इस्तकबाल करते हैं, आपका हम स्वागत करते हैं और यकीन मानिए दिल से आपको खुशामदीद कहते हैं। कार्यक्रम लाए हैं आपके लिए, आपकी याद आती रही। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त रेशमा। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम इस प्रोग्राम में यादों के सफर पे चलते हैं, उन यादों को याद करने की कोशिश करते हैं जो हमसे बहुत दूर जा चुकी हैं, बावजूद इससे उनसे मिलने को जी चाहता है, उनके साथ वक्त गुजारने को जी चाहता है, उनके साथ एक मुलाकात करने को जी चाहता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मुलाकात बहुत ज़रूरी हुआ करती है। मुलाकात में ही राज एक दूसरे के पता चल जाते हैं, मुलाकात में ही एक दूसरे से जज्बात शेयर किए जा सकते हैं। लिहाजा इस ज़िंदगी के लिए दोस्त मुलाकात बहुत ज़रूरी है, लिहाजा हम चले आए एक बार फिर आपसे मुलाकात करने के लिए।

एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, बेशक। बात लेकिन यहाँ आ जाती है कि क्या वाकई बहुत ज़रूरी है ये मुलाकात, और अगर हाँ तो क्यों? क्या उससे मिलकर ही दिल को करार आता है? कहते हैं ना, सारा मसला तो उसी सुकून का है, सारा मसला तो उसी सुकून का है जो तुझे देखने के बाद मिलता है। कभी कभी वैसे जिंदगी की सबसे गहरी खामोशी में भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। वो पास ना होकर भी हर पल साथी महसूस होता है। कभी खामोशी में उसकी आवाज़ सुनाई देती है, कभी उसकी मुस्कुराहट का एहसास होता है, और यूं लगता है कि बहुत मध्यम लहजे में उसने कान के पास आकर कुछ कहा है। अजब है ये जिंदगी, क्या ये प्यार है? आखिर ये बेचैनी क्यों होती है? क्यों आखिर इस दिल को करार नहीं आता?

वाकई इस बेचैनी के बाद अगर किसी से मुलाकात हो जाए और वो अपना बन जाए तो फिर बात ही क्या है, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाया करती है। वैसे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं हम सब की ज़िंदगियों में जो दूरियों से नहीं यादों से भी जिए जाते हैं, और ये जो अनकहे एहसास होते हैं, मीठी यादें होती हैं और दिल की धड़कनें होती हैं, ये यादें या फिर वो रिश्ते यहीं कहीं बस जाया करते हैं और अक्सर

अक्सर हम उस शख्स के बारे में सोचते हैं, एहसास करते हैं उसका, कि काश किसी दिन अचानक सी डोर बेल बजे और हम भाग के जाएं, दरवाज़ा खोलें तो वो सामने हो। काश चलते हुए किसी गली में उससे मुलाकात हो जाए जिसके हम उम्मीद करते हैं, कि काश वो मिल जाए। काश किसी चौराहे पर उससे मुलाकात हो जाए। यही है जनाब इस दिल का सफ़र।

आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही। और यकीन मानिए, हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं उन गुजरे हुए लम्हों को जो आज भी हमारे दिल में कहीं ठहर कर सांस लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, जल्द हाजिर होती हूँ, कहीं जाइएगा नहीं। आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपके साथ है।

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम चल रहा है आपकी याद आती रही।

दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सफ़र में जिसमें कई जगह हम मोहब्बत का एहसास करते हैं, इंतज़ार भी हमें नज़र आता है, मिलन की खुशबू और जुदाई का दर्द भी। ज़िंदगी की ये जो एक ख़ास तौर पर आदतें हैं, या फिर ये कह लीजिए ये जो एहसास हैं, अक्सर हमारे साथ ही होते हैं। लेकिन ये बेदर्द ज़िंदगी कहाँ हमें फुर्सत लेने देती है कि इनके साथ हम कुछ वक्त गुजारें। तो आइए, दिल के दरवाजे खोल दीजिए और किसी को दिल से याद करने की कोशिश कीजिए। कौन है वो जिसे आप बहुत दिन से याद तो करना चाहते हैं लेकिन आप याद कर नहीं पा रहे हैं? एक बार एहसास करके देखिए कि आखिर वो कौन है जिसे आपने देखा और फिर आप उसी के होके रह गए।

कमाल है ना, वो नज़र आ जाए तब भी बेचैनी, और अगर वो नज़र ना आए तब भी एक अलग किस्म की बेचैनी रहती है। क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं, क्या इसी को प्यार कहते हैं? न जाने आखिर इस दिल को क्या हो जाता है, वो सामने हो तब भी अजब किस्म के एहसास आते हैं, और अगर वो नहीं है तो बस ना पूछिए इस दिल की हालत। कुछ यादें उम्र भर साथ ही चलती हैं, कुछ लोग दूर होकर भी कभी हमसे दूर हो ही नहीं पाते, वो दिल के पास ही रहते हैं, चाहे हम कितने भी मसरूफ क्यों ना हों, कितने भी बिजी क्यों ना हो जाएं, इस दिल पर अचानक से दस्तक दे जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्यों आते हैं, क्यों दस्तक देते हैं। साथिया, साथिया, मधम मधम तेरी गीली हंसी।

ज़िंदगी के लिए एक साथी का होना वाकई बहुत ज़रूरी होता है, अब चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, क्योंकि हम दिल की बात आखिर किससे कहेंगे। और ये जो सफ़र है ये ऐसे ही चलता रहता है, और ये याद हमेशा हमारे साथ ही रहती है। और इन यादों के साथ ही अगर कोई अपना हो, हम सफ़र हो, तो फिर कहना ही क्या।

ये किसी को अपनाना जानता है? क्या वाकई किसी से ये बहुत मोहब्बत करता है? क्या मौसम के इशारे इस दिल से कुछ कहते हैं?

तक पहुंचाएंगे, बेहतरीन शाहकार आप सुनेंगे। तो बस आपसे इतना ही हम गुजारिश करेंगे कि आकाशवाणी का रेनबो चैनल आप ऐसे ही सुनते रहिएगा। एक बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप ये गीत बहुत ही खूबसूरती के साथ महसूस करेंगे और एहसास करेंगे कि अगर कोई हमसे दूर हो जाए तो फिर इस दिल पर क्या गुजरती है, क्या सोचता है ये दिल, क्या वाकई ये दिल उसको याद करता है, और अगर हाँ तो फिर ये बेचैनी और ये बेकरारी आखिर कब तक रहेगी। चलिए इसी बेकरारी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ, मिलने आऊँगी जल्दी से आपसे रंगे महफिल में। अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।

फिलहाल ये समा तो हमसे ये कह रहा है कि आपसे हम यही इजाज़त लें और वादा करें एक और मुलाकात का, और ये मुलाकात ये समझ लीजिए कि कई दिन के बाद नहीं बल्कि तकरीबन एक घंटे के बाद हम आपसे फिर मिलने आएंगे प्रोग्राम रंगे महफिल में, और रंगे महफिल में आपके साथ हम बातें करने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छी गज़लें आप

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज एंड टाइम इज 2 o'clock, इज 10:02 and 11 seconds। वेलकम टू द वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम ऑल दैट जैज विथ मी सुहासिनी। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस अमेजिंग प्रोग्राम विद फ्यू interesting fun facts about jazz musicians as well as jazz swing and all that is in between.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी रेनबो ऑन द शो दैर इज ऑल दैट जैज विद मी सुहासिनी। एंड वेल, वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट जैज मीन्स सो मच एंड द वर्ल्ड ऑफ वोकल जैज एज वेल। बट व्हेन यू लिसन टू एंड jazz masterpiece, it also reminds us that it requires patience. The greatest musicians spend thousands of hours practicing scales before they ever stood beneath the light stage. And also, life works the same way. Character isn't built overnight, and trust isn't earned overnight as well. And dreams can't be fulfilled overnight. You need to walk to them, you need to work for them, and sometimes you might not get the result that you wanted.

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
10: वेलकम बैक, यू आर ट्यून्ड इनटू प्रोग्राम ऑल दैट जैज विद मी सुहासिनी, एंड वेल लेट्स ऐड टू इट अनदर डायमेंशन ऑफ जैज, एंड दैट इज सोल म्यूजिक। एंड ऑफ कोर्स सोल म्यूजिक इज पार्ट ऑफ जैज दैट ब्लेंड्स अ लिटिल बिट ऑफ गॉस्पल रिदम एंड ब्लूज, एंड दे क्रिएट अ साउंड फुल ऑफ पैशन एंड इमोशन। एंड लेजेंडरी आर्टिस्ट लाइक अरिथा फ्रैंकलिन, स्टीवी वंडर एंड ओटिस रीडिंग हैव हेल्प्ड सोल म्यूजिक famous around the world. We have one new member in that who is also a jazz and soul components in her music. We'll get back to it a little later, but let's move on to Miles Davis, another legendary artist in the world of jazz with It Never Entered My Mind.

और लीजिए आप सुनिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच आज फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। ये विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ। कोयला मंत्रालय के अनुसार जुलाई में कोयला उत्पादन और प्रक्षेपण बढ़ने से देश में बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति पर्याप्त रही। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरला में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने पर केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालेहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो ये थे अभी तक के रेनबो पर मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक मुद्दत से पुकारा नहीं तुमने मुझको, ऐसा लगता है मेरा नाम नहीं है कोई। बस इसी बात पे उकताई हुई फिरती हूँ, तुम हो मसरूफ, मुझे काम नहीं है कोई। और ये जो कहते हैं ना, मुझे काम नहीं है कोई, यकीन मानिए उससे मोहब्बत करना ही बहुत बड़ा काम होता है। इसके अलावा कोई काम जिंदगी में ना भी हो तब भी कोई फिक्र नहीं। तो चलिए आगाज करते हैं प्रोग्राम रंगे महफिल का, आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर हमारे साथ रहिए और खूबसूरत शाहकार आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी।

दोस्तों, जब बात हो मौसीकी की और बात हो जब बारिश की, बात हो सावन की, तो सावन की फुहारें जब जमी को छूती हैं तो सिर्फ मिट्टी ही नहीं महकती, दिल भी भीग जाता है। बारिश की हर बूंद अपने साथ कोई याद, कोई वादा, या फिर कोई अधूरी मुलाकात, या फिर किसी अपने का एहसास लेकर आती है। सावन का मौसम मोहब्बत का भी है, इंतज़ार का भी है, और उन जज्बात का भी जिन्हें अक्सर अल्फाज मिल नहीं पाते। ऐसे में एहसास भी भीग जाते हैं और फिर यूं लगता है कि काश वो साथ हो, काश इस नज़र को जिसका है इंतज़ार वो साथ हो, वो पास हो।

गम इश्क रह गया है गम जस्तजू में ढल कर, गम इश्क रह गया है गम जस्तजू में ढल कर, वो नज़र से छुप गए हैं मेरी जिंदगी बदल कर। न मिला सुराग मंजिल कभी उम्र भर किसी को, न मिला सुराग मंजिल कभी उम्र भर किसी को, नजर आ गई है मंजिल दो कदम ही चल के। कभी यक बयक तवज्जो कभी दफतन तकाफुल, मुझे आजमा रहा है कोई रुख बदल बदल के, मुझे आजमा रहा है कोई रुख बदल बदल के।

कुछ रिश्ते ऐसे हुआ करते हैं जिनमें अल्फाज कम पड़ जाते हैं और खामोशियां आपस में बातें करने लग जाती हैं। कभी किसी अपने का साथ बेहद सुकून देता है और यूं लगता है कि बरसों से रुके हुए आंसू भी अपनी राह ढूंढ लेते हैं। मोहब्बत का असल एहसास शायद वही है जहां दिल को किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, बस एक कंधा ही काफी होता है, उसका देख भर लेना, उसका ये पूछ लेना कि कैसी हो, इतना ही बहुत है दिल को सुकून लाने के लिए।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ।

0: दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का रेनबो चैनल इस वक्त आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम है रंगे महफिल।

बस इतनी बात थी, कहते तो हम तरमीम कर लेते। बस इतनी बात थी, कहते तो हम तरमीम कर लेते। सफ़र को बांट लेते हम, थकन तकसीम कर लेते। अगर हमसे शिकायत थी तो फिर इजहार करना था। अगर हमसे शिकायत थी तो फिर इजहार करना था। माफ़ी मांग लेते हम, ख़ता तस्लीम कर लेते।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: एक बार फिर आप तमाम लोगों का मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ, क्योंकि ये जो कारवां है मोहब्बतों का, ये अभी ऐसे ही रवा दवा रहेगा।

तुम्हें क्या लिखूं, दोस्त लिखूं, हमदम लिखूं, गमगुसार लिखूं या प्यार लिखूं। दिल कहता है दुनिया के तमाम खूबसूरत अल्फाज को यकजा करके, इकट्ठा करके एक प्यारी सी बात लिखूं। और वो बात क्या है कि बस तुम ही हो मेरे साथ, बस तुम ही हो मेरी कुल कायनात,

जनाब आली, ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि आप जो कहना चाहते हैं, आप जो सुनना चाहते हैं, वो कहाँ सुन पाते हैं। ज़िंदगी है, और ज़िंदगी के साथ साथ न जाने ऐसे कितने एहसास हमारे अंदर ही मर जाया करते हैं। ऐसे न जाने कितने एहसास जिन्हें हम अल्फाज देना चाहते हैं, और फिर हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, और उनमें कोई ख़ास भी होता है जिन्हें आप अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन अफसोस कह नहीं पाते। यूँ लगता है कि काश वो समझ जाए, काश उसे एहसास हो जाए।

वाकई किस कदर दर्द का एहसास होता है जब कोई ये कह दे कि उसकी नज़र में हमारा कोई वजूद नहीं, लेकिन भला हम कैसे कहें कि हम उसके तलबकार नहीं। अजब कहानी है जनाब इस दिल की। शायद शायद दिल इसीलिए कहता है कि कभी इस तरह मेरे हम सफ़र, कभी इस तरह मेरे हम सफ़र, सभी चाहते मेरे नाम कर। अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कोई शाम कर। अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कोई शाम कर। मेरे दिल के साए में आ ज़रा, मेरी धड़कनों में क़याम कर। मेरे दिल के साए में आ ज़रा, मेरी धड़कनों में क़याम कर। ये जो मेरे लफ्ज़ों के फूल हैं, तेरे रस्ते की ये धूल हैं। कभी इनसे सुन मेरी दास्तां, कभी इनके साथ कलाम कर।

कभी इनके साथ कलाम कर। यानी जनाब वही है बात कि आखिर इस दिल की बात वो समझे तो सही, काश वो इन जज्बात को एहसास करे कि हाँ तुझी को चाहा है और तुझी को अपना बनाया है, तू ही मेरी कुल कायनात है। चलिए जनाब, ये जो ज़िंदगी के मरहले हैं, ये जो ज़िंदगी के मसाइल हैं, मुझे लगता है मोहब्बत से ही शुरू होते हैं और मोहब्बत पर ही आकर ख़त्म हो जाया करते हैं, क्योंकि ये जो मसले हैं, ये जो दिल है, ये बस उसी की सुनता है, उसी की राह इख्तियार करता है जिसे ये दिल चाहता है। अब चाहे कितने भी मसाइल क्यों ना आ जाएं, ये भला कहाँ पीछे हटने वाला है, ये तो बस मुसलसल आगे बढ़ता ही रहता है। चलिए, बातें आपके साथ और भी करने को जी चाहता है, लेकिन वक्त अब गुंजाइश नहीं देता कि आपसे चंद बातें और की जाएं, लेकिन वादा रहा बहुत जल्द मिलूंगी आपसे, ढेर सारी बातें करूंगी। अपना अच्छा सा ख्याल रखिएगा और हाँ, मोहब्बतों की चिराग ऐसे ही जलाते रहिएगा। गुड नाइट, शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।

आधी रात के 12 बज चुके हैं और अब समय होता है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। उन्होंने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत सिंगापुर विदेशी कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ। कोयला मंत्रालय के अनुसार जुलाई में कोयला उत्पादन और प्रेषण बढ़ने से देश में बिजली क्षेत्र के लिए कोयले की आपूर्ति पर्याप्त रही। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा को कंप्यूटर पर आधारित बनाने पर केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आधी रात के 12:03 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक जीरो आवर शो में, यानी कि सिर्फ बिना रुके गानों को आप एंजॉय करेंगे और इस समय आधी रात हो चुकी है तो गानों की दुनिया में आप ऐसे ही खो जाइए। तो शुरुआत करते हैं तमाशा मूवी के इस गाने के साथ AR रहमान की आवाज में। ये सॉफ्ट गाना एंजॉय कीजिए और ऐसे ही गानों की दुनिया में खो जाइए।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और टाइम हुआ है रात के 12:56 और जीरो आर शो में नॉन स्टॉप गानों का आप मजा ले रहे हैं, तो ऐसे ही गानों का मजा लेते रहिए। कमिंग अप अरिजीत सिंह की आवाज में फ्रॉम द मूवी जीनियस।

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

आई होप आपको मजा आ रहा होगा गानों का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और शो का नाम है जीरो आर शो, जिसमें नॉन स्टॉप गानों का मजा ले रहे हैं। और अभी इस शो का टाइम 1 बजे पूरा हो जाएगा, और लेकिन तब तक आप सुनिए अभी अनुपम रॉय की आवाज में पीकू फिल्म से ये गाना।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। देशवासियों ने कम से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित होगा। द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों की प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किए। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा को कंप्यूटर आधारित बनाने पर केंद्र के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से जवाब मांगा और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालीहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सुहानी रात का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात,

0: रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है, सुना रही आकाशवाणी।

0: गया है बम्बई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बब्बल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रात्रि के 2 बज चुके हैं और अब आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर सुनिए मुख्य समाचार। आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन

नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किए। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल को सुन रहे हैं आप। रात के 2:03 हो चुके हैं और अब ये टाइम होता है भुलाए ना बने शो का, जिसमें आप सुनते हैं वो गाने जो आप कभी पुराने जमाने में सुनते होंगे, और मतलब ज्यादा पुराने भी नहीं, लेकिन उन गानों का मजा अब दोबारा से आप लेंगे नॉनस्टॉप इस आधी रात में। तो इन गानों की दुनिया में आप खो जाइए और स्टार्ट करते हैं माचिस मूवी के इस गाने से।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है रात के 2:30 और आप सुन रहे हैं शो भुलाए ना बने, जिसमें आप वो गाने सुन रहे हैं जो आप कभी भूल चुके थे लेकिन वो गाने आपके फेवरेट थे, हैं और रहेंगे। अभी ये जो गाना आपने सुना ये था कुणाल गाजियावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में यूं होता तो क्या होता मूवी से, और अब आप सुनिए रंजीत बरोट की आवाज में फ्रॉम द मूवी रूबरू, और ऐसे ही नॉन स्टॉप गानों का मजा लेते रहिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के एफएम रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं अब तक के मुख्य समाचार। आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। देशवासियों ने से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ।

विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किए। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ और तन्वी शर्मा, अस्मिता चालीहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

हमारे सभी श्रोताओं का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आप जुड़े हुए आकाशवाणी एफएम रेनबो चैनल के साथ। समय उजला है अगले हमारे प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान।

0: जापान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
9: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: फॉर फ्री।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है,
3: ठीक है।
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो।
5: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है और अब सुनिए हिंदी में मुख्य समाचार। आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किए। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये थे

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4:03 हो चुके हैं और जैसे कि आप रात के 12 बजे से नॉनस्टॉप गाने सुनते ही हैं, वो भी बिना किसी ज़्यादा बातचीत के। तो चलिए इसी तरह अब शुरू करते हैं गानों का सिलसिला। शो का नाम है सारेगामा। तो सिद्धार्थ बसरूर की आवाज़ में शुरू करते हैं इस गाने के साथ।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स।

0: इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बब्बल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेमो झलने के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का मुख्य समारोह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और 2025 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और उसका वीडियो बनाकर साझा करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर प्रतिबद्धता जताई। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी दे दी है। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। लोकसभा ने कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। यह विधेयक विदेशी संस्थागत निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज पर आयकर छूट देता है। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू होगा। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ओडिशा में मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और खेलों में तन्वी शर्मा, अस्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर बैडमिंटन में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेबो चैनल के साथ। समय हो चला है प्रातः के 5:03। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।